नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 अगस्त सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

ये है विविध भारती। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार सुनिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री रक्षा सुरक्षा सहयोग को और मजबूत

0: करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी दो दिन की यात्रा संपन्न कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। 18 से 30 वर्ष के युवा, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, NSS वॉलंटियर और युवा पेशेवर शामिल हैं, युवा संगम के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय ने लखनऊ में हाथी दांत की कलाकृतियों के गैर कानूनी व्यापार में शामिल एक वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में जब्त 54 नकाशीदार चीजें, जिसमें बैल, हाथी जैसे जानवरों की मूर्तियां शामिल हैं, गिरफ्तार 4 लोगों को आगे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग को सौंप दिया गया है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद, BNP नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिन चलने वाले इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता थीम पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को की गोस्तनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। और अब खेल खबरें। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन के खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगी। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडेम में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। इसके अलावा श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को भी 165 रन से मात दी है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देर रात बारिश हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। महात्मा बुद्ध का कथन है, क्रोध एक ऐसी ज्वाला है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए संयम और शांति से हर परिस्थिति से निकलना चाहिए। ये था आज का कथन। लीजिए सुनते हैं वंदनवार में भक्ति रचनाएं।

ये है विविध भारती। झरोका मेले जी, सुनिए आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 286, 6:35 से। 6:45 से सुबह व शाम संगीत सरिता, इसमें इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह तबला वादक, कलाकार पंडित कालीनाथ मिश्र। इस कार्यक्रम का चौथा भाग आज आप सुनेंगे। सात बजे से लेकर आएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 से हम है राही प्यार के। 8:15 और दिन में 2 बजे से त्रिवेणी सुनिएगा। सुबह 8:30 और रात्रि 8:15 से चित्रलोक। आज के फनकार, आज केंद्रित होगा अभिनेता सैफ अली खान पर। समय सुबह व रात्रि 9:30 से।

10 बजे पिटारा में आज के मेहमान अभिनेता निर्देशक पंकज रैना से विधि जैन की बातचीत आप सुनेंगे। ग्यारह बजे से लेकर आएंगे रंग तरंग, 12:05 से यादों की महफिल और 1 बजे से सुरीला सफर। दो बजकर 30 से वक्त होगा सदाबहार नगमे का, दिन में 3 बजे से सखी सहेली, विषय होंगे विलुप्ति की ओर भाषाएं और बोली, कहानी पद्मश्री में चित्रकार गोदावरी दत्त। मुझे कुछ कहना है में जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना, और उपयोगी टिप्स में कपड़ों की उम्र होगी लंबी। चार बजे से पिटारा में हेलो फरमाइश, 5 बजे से सुनिएगा छाया गीत, 5:30 से तराने नए पुराने,

6:35 से लेकर आएंगे संध्या रंजन में भक्ति गीत। सात बजे से वक्त होगा फौजी साथियों के लिए जयमाला का। सात बजकर 7:45 से इंद्रधनुष में इनसे मिलिए। गजल गायिका डॉक्टर रितु जौहरी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग आज आप सुनेंगे। रात 8 बजे सुनिएगा हवा महल में प्रहसन। अभिनेत्री से भेंट, लेखक श्री एन राघवन, निर्देशक मुख्तार अहमद। 9:00 से लेकर आएंगे आपके लिए प्रोग्राम। 10:00 छाया गीत और 10:30 से ढलती जाए रात। ये थे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

युद्ध में मेघनाद पवन पुत्र के घूंसे से क्षण भर के लिए मूर्छित हो जाता है। अन्य प्रकार से उनसे पार पाते न देख मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। ब्रह्मवाण की मर्यादा तो रखनी ही होगी। मूर्छित होकर हनुमान नागपाश में बंध जाते हैं।

0: आपने अभी सुना श्री रामचरितमानस का भाग 286।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: संगीत सरिता की इस कड़ी में श्रोताओं आप सबका स्वागत है। स्वागत है श्री कालीनाथ मिश्रा जी का।
2: नमस्कार। नमस्कार।
1: आज इस कड़ी में मिश्रा जी कौन सा ताल

0: आप प्रस्तुत करेंगे।
1: मैं सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और इस ताल प्रवाह के अगली कड़ी है हमारी तालों का राजा, 16 मात्रा 3 ताल मध्य लय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। खास बात बताना चाहूंगा श्रोता, हमारा जो अंदाज है बनारस घराना है, उसमें हम अपने पिता का धन्यवाद देते हैं पंडित गुरु आचार्य पंडित राखाल मिश्र दास बाबू। वो बहुत बड़े गवैया हुआ करते थे पिताजी हमारे, 102 साल के थे उनका अंत हुआ। और उनकी बड़ी इच्छा रही कि मैं गाना गाऊं, क्योंकि हमारे सारे भाई गाना गाते थे, बड़े भाई दीनानाथ जी भोलानाथ जी सब गाना गाते थे। उनकी इच्छा थी कि मैं गवैया बनूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ताल अच्छा लगता था। शायद वो अगर वो नहीं सीखे होते तो हम आज संगीत सरिता में ताल प्रवाह को लेकर नहीं पहुंचते। तो हम धन्यवाद देते हैं, पिताजी का नाम था पंडित राखाल मिश्र, हमारी माताजी का नाम था चंद्रावती देवी मिश्रा। वो भी हमारे सारे नाना भी गाना गाते थे, दादा दादी भी गाना गाते थे। मैंने ताल को लेकर चुना तो आज हम मध्य लय के ओर बढ़ते हैं 3 ताल की तरफ। तो श्रोताओं से अनुरोध है कि इसका आनंद उठाइए और इसका मैं कुछ एक अलग अंदाज प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं।
0: बहुत

0: बड़ा प्रचलित है धीरे धीरे की रीतक तबले का अंदाज है। तेरे की रीतक धीरे धीरे की रीतक तेरे की रीतक तुन्ना की रीतक तेरे की रीतक तेरे तेरे की रीतक तेरे की रीतक धन्ना की रीतक तेरे की धीरे धीरे धीरे की रीतक तेरे की रीतक तुन्ना की रीतक तेरे की रीतक तेरे तेरे जैसे समंदर में लहर उठता है ना
1: जी
0: धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धी

0: आपको एक बात और बताना चाहूंगा मैं दास बाबू। गुदई महाराज
1: जी,
0: उनका धृकित लाजवाब था
1: जी।
0: गुरु जी का थाप का धृकित किशन महाराज जी का, तो घृणक और धृकित का अंदाज

0: पलटा, जैसे बोलते हैं ना कि आप कैसे बोलों को पलटते हैं
1: जी,
0: पर उसका लहजा अच्छा होना चाहिए, बोलों के साथ उल्टा पलटा करना।

अब इसको हम खत्म कैसे करेंगे इस कायदे को? तो हम तिहाई भी बजा के खत्म कर सकते हैं, टुकड़ा बजा के खत्म कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टुकड़ा है,

0: कालीना जी, आपने पलटे का नाम लिया, इस सिलसिले में मुझे जानने की इच्छा हो रही है, बनारस के कुछ खास पलटे होंगे, अलंकार होंगे, कायदे होंगे, पेशकार होंगे, फर्द होंगे, इसके बारे में कुछ बताएं।
1: दास बाबू, एक्चुअली बनारस ही नहीं, सारे घराने, अजराला घराना हो, लखनऊ घराना हो, फरुखाबाद घराना हो
0: जी,
1: पलटे तो सब में होते हैं। अगर आप कोई कायदा ले रहे हैं
0: जी,
1: उसको जब तक विस्तार नहीं करेंगे तो आप कैसे बजा पाएंगे, उसका विस्तार तो करना पड़ेगा मुझे, उसी को कहते हैं पलटा।
0: अच्छा,
1: रहा फर्द का सवाल, तो फर्द एक अलग अंदाज हो गया, वो मैं अगली कड़ी में बताऊंगा। तो श्रोता, हमने 3 ताल की प्रस्तुति की, और मैंने पहले भी कहा था कि शामता प्रसाद जी गुदई महाराज जी ने बहुत योगदान दिया है फिल्मों के लिए। उनका जन्म के बारे में बता दूं कि बनारस के लाजवाब कलाकार थे, उनका नाम था शामता प्रसाद, लेकिन बाएं का ऐसा स्टाइल था, बाया ऐसा गुदगुदाते थे कि उनका नाम रखे, अनोखे लाल जी का भी नाम रखे और इनका भी नाम रखे विलायत खान साहब, उनका नाम था अनोखा मिश्रा।
0: अच्छा,
1: हाँ, पर उनका नादिन धिन्ना ऐसा था अनोखे लाल जी का कि उन्होंने खान साहब ने, विलायत खान साहब ने झाला में रखा कि यार तुम अनोखे हो एकदम। उसी तरह से कि बाएं का काम ऐसा गुदई महाराज जी दिखाते थे, तो उनका नाम गुदई गुदई गुदई गुदई महाराज पड़ गया। तो एक श्रोता हो, चलिए हम थोड़ा फिल्मों की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि फिल्मी संगीत भी हम सुन लेते हैं थोड़ा उसका अंदाज। तो बड़ा सुंदर गाना है, नाचे मन मोरा मगन धीगना धीगी धीगी, तो एक बार बजा के सुना देता हूँ। नाचे मन मोरा मगन धीगना धीगी धीगी, ये खास गुदई चचा का बोल है।

0: ciudad.
1: ताल प्रवाह इस श्रृंखला की ये थी चौथी कड़ी। जाने माने तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूख लतीफ खान और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

आशा भोसले और तलत महमूद की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे बूट पॉलिश। फिल्म का नाम था, शैलेंद्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में ये गीत शबाब फिल्म से अभी आपने सुना। शकील बदायूनी ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत।

सुबह का तारा ये था फिल्म का नाम। उषा मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। नूर लखनवी ने, माफ कीजिएगा, नूर लखनवी ने इसे लिखा। सी रामचंद्र का संगीत था। इस प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

पातल तू नजर न लगा, तू नजर न लगा ओ बादल तू नजर न लगा मेरा बुलबुल।

फिल्म किस्मत से गीत अभी आप सुन रहे थे आमिर बाई कर्नाटक की और अरुण कुमार की आवाजों में। कवि प्रदीप ने इसे लिखा, अनिल बिस्वास का संगीत।

जाना। अनोखी अदा, ये था फिल्म का नाम। मुकेश की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम भूले बिसरे गीत संपन्न होता है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे, रखवाला फिल्म का नाम था। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।

पर्दे के पीछे ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे पराया धन फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज थी।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: जय एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम है राही प्यार के।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे मेला फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज।
1: एक बात पूछूं।

कठपुतली फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा, माफ़ कीजिए, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम हम हैं राही प्यार के संपन्न होता है।

0: यह है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने लक्ष्य है।
3: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का, टोटल 13

0: 1041 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
0: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्ट्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का 4th संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
3: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
1: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
4: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्टिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल

0: कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
2: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
4: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी जबकि खतरे का निशान 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंद्र और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो कोर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, सीआईडी को सौंपी गई जांच। यूपीएससी जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेंजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए सीएम जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और एफआईएच हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टर्डम में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सद्भावना दिवस हमें ये याद दिलाता है कि किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता, आपसी विश्वास और प्रेम की भावना होती है। अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और विचार होने के बावजूद जब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं तभी एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। ये दिन हमें सिखाता है कि मतभेद होना स्वाभाविक है लेकिन मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। यदि हम अपने व्यवहार में विनम्रता, सहिष्णुता और सहयोग को स्थान दें, तो परिवार से लेकर पूरे समाज तक सौहार्द का वातावरण बन सकता है। सद्भाव ही वो सूत्र है जो लोगों को दिल से जोड़ता है।

आज के समय में जब छोटी छोटी बातों पर दूरियां और गलतफहमियां बढ़ जाती हैं, तब सद्भावना दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये अवसर हमें याद दिलाता है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र से नहीं, बल्कि उसके अच्छे विचारों और व्यवहार से होती है। समाज तभी आगे बढ़ता है जब लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझें, संवाद बनाए रखें और हर परिस्थिति में मानवता को सर्वोपरि रखें। आइए हम ये संकल्प लें कि अपने शब्दों, अपने आचरण और अपने कर्मों से प्रेम, सम्मान और विश्वास का ऐसा वातावरण बनाएं जहां हर व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे।

0: सद्भावना दिवस केवल एक तिथि नहीं बल्कि जीवन जीने की एक सकारात्मक सोच है। यदि हम अपने घर, कार्यस्थल, मित्रों और समाज में परस्पर सम्मान, सहयोग और भाईचारे की भावना को अपनाएं, तो अनेक समस्याएं अपने आप ही कम हो सकती हैं। एक मुस्कान, एक मधुर शब्द और एक छोटा सा सहयोग भी रिश्तों में नई गर्माहट भर सकता है। आइए इस अवसर पर हम ये संकल्प लें कि किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता प्रेम और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। यही सच्ची सद्भावना है और यही एक सशक्त भारत की पहचान भी है।
1: नफरत की

0: हमारे आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।

0: सनम पुरी और नीति मोहन की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से। अन्विता दत्त ने इसे लिखा, विशाल शेखर का संगीत था।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

आदित्य रिखरे की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, परम सुंदरी फिल्म का नाम था, सचिन जिगर ने संगीत दिया। वक्त हो चला है एक छोटी से अंतराल का,

वाजिद अली को अभी आप सुन रहे थे। इस गीत में तेरी मेरी कहानी फिल्म का नाम था। प्रसून जोशी ने इसे लिखा। साजिद वाजिद का संगीत।

डियर जिंदगी ये था फिल्म का नाम। अरिजीत सिंह की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। अमित त्रिवेदी का संगीत और कौसर मुनीर ने इसे लिखा। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: तिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे लक्ष्य फिल्म से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
4: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
5: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
4: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
5: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
4: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
5: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
4: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
5: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, ये जवानी है दीवानी फिल्म से। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत। इसके साथ ही आज का ये सफर चित्रलोक का यहीं संपन्न होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के फनकार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।
1: कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है।
0: कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि आज बातें होंगी एक ऐसे कलाकार की जिनकी बातें करते ही और उनकी एक झलक पाते ही
2: दिल डांस मारे, डांस मारे, दिल ये डांस मारे,
3: ओए हैप्पी इन माय हार्ट, दिल डांस मारे रे।
0: भाई दिल का ये हाल तो होना ही है, क्योंकि रात हो या दिन, उन्हें देखकर सभी कह उठते हैं आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज इस कार्यक्रम में बातें सैफ अली खान की।

16 अगस्त 1970 को देश की मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी और फिल्मी दुनिया की खूबसूरत अदाकारा शर्मिला टैगोर के घर किलकारी गूंजी गहरी आंखों वाले एक शरारती मासूम बच्चे की, जिसका नाम रखा गया साजिद अली खान, लेकिन हम इन्हें जानते हैं सैफ अली खान के नाम से।

0: हुआ।
1: पिता और दादा के नक्शे कदम पर चलकर खेल भावना तो अपने दिल में सजा ली थी यूएसएफ ने, लेकिन कदम बढ़ चले फिल्मी दुनिया की ओर। चुलबुले शरारती नटखट अंदाज से भरे हुए सैफ अली खान को 23 साल की उम्र में पहली फिल्म में काम मिला। ये फिल्म थी यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म परंपरा। लेकिन इस फिल्म को बनने में इतना समय लगा कि तब तक सैफ अली खान की दूसरी फिल्म पूरी होकर लोगों के बीच आ गई। इस तरह उनकी पहली रिलीज फिल्म बनी आशिक आवारा।

दिल लगी। इस फिल्म ने सैफ अली खान के करियर को एक नई उड़ान दी। इसके बाद वो घर घर में पहचाने जाने लगे। शरारती, बेफिक्र, अल्हड़ किशोर के किरदार में जैसे निर्माता निर्देशक सैफ को ही देख पाते, यही हाल दर्शकों का भी था। शरारती मुस्कान के साथ जब सैफ की आंखें चमकती तो पर्दे पर उनका अभिनय सहज लगता। ऐसे में आई अक्षय कुमार के साथ उनकी एक और फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।

दर्शकों के बीच चुलबुले नटखट रोमांटिक हीरो की इमेज कायम कर चुके सैफ अली खान के करियर की गाड़ी कोयला इंजन की गति से बढ़ रही थी। थोड़ी सफलता के बावजूद उनके हाथ पूरी तरह स्टारडम नहीं आया था। उनकी फिल्में पसंद तो की जाती, गाने प्रचलित होते, लेकिन बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट का तमगा उनके नाम नहीं आता। एक वक्त आया जब फिल्म क्रिटिक्स ने ये कह दिया कि सैफ का करियर खत्म हो चुका है, लेकिन सैफ ने हारना नहीं सीखा था। यहाँ पिता से विरासत में मिली खेल भावना काम आई, जिसने सैफ को हार मानने नहीं दिया। वहीं माँ से मिला अभिनय का गुर भी उनके पास था। जरूरत थी तो एक ऐसे जरिए की जिससे वो उसे लोगों के सामने रख सके। बस इसी उम्मीद पर सैफ

सफलता के कच्चे धागे ही अब तक सैफ को मिले थे, लेकिन इस बार इस कच्चे धागे को पक्का कर दिया अगली सुपरहिट फिल्म ने। सैफ के आत्मविश्वास को एक नए जोश से भरने वाली ये फिल्म थी राजश्री बैनर तले बनी मल्टी स्टारर फिल्म हम साथ साथ हैं।

इस फिल्म के बाद सफलता भी सैफ के साथ साथ चलने लगी। साल दर साल सैफ अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे और एक बार फिर एक बड़ी सफलता का स्वाद चखा। ये फिल्म थी फरहान अख्तर की फिल्म दिल चाहता है।

दिल चाहता है। इस फिल्म में सैफ के किरदार सिद्धार्थ उर्फ सिड को सभी ने बेहद पसंद किया। सच्चे प्यार की तलाश में भटकते युवा के किरदार को सैफ ने जीवंत कर दिया था। वैसे वो इस वक्त तक अपने एक ही तरह के किरदार से ऊब चुके थे और कुछ बदलाव चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। लेकिन बाद में डिंपल कपाड़िया, जो इस फिल्म का हिस्सा भी थी, उन्होंने सैफ को

वक्त था जब सैफ को लगातार सफलता मिल रही थी, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये बातें होने लगी कि सैफ हर फिल्म में किसी न किसी दूसरे हीरो के साथ होते हैं। सवाल उठने लगा कि क्या सैफ अली खान अपने दम पर कोई फिल्म चला सकते हैं? इन सवालों का जवाब देने में वक्त बर्बाद न करते हुए जवाब दिया अपनी एक फिल्म के जरिए। ये फिल्म थी हम तुम।

परिणीता के बाद सैफ अली खान की इमेज तो बदल गई थी। वो अब सिर्फ नटखट चुलबुले रोमांटिक हीरो नहीं रह गए थे, बल्कि उनके अंदर के गंभीर अभिनय की एक झलक लोगों के सामने आ चुकी थी और इस एक झलक ने ही सभी को प्रभावित कर दिया। पर अभी सैफ लोगों को और चौंकाना चाहते थे और ये काम किया शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक ओथेलो पर आधारित विशाल भारद्वाज की फिल्म ओमकारा ने।

खान के फिल्मी करियर से अलग हटकर अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखने वाले सैफ आमतौर पर लोगों से बेहतर व्यवहार करते हैं, किसी भी विवाद से दूरी बनाकर ही रखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित हो चुके सैफ का कहना था कि वो खुद को इस काबिल भी नहीं मानते थे और उन्होंने इस सम्मान को लेने से मना करने का विचार किया था, लेकिन जब उनके पिता ने उन्हें समझाया तो उन्होंने इसे सिर माथे रखकर स्वीकार किया।

बार माइल्ड हार्ट अटैक से गुजरने के बाद सैफ ने धूम्रपान पूरी तरह से छोड़ दिया और अपनी सेहत को पूरी तरह काबू में कर लिया। इसका श्रेय उनके अनुशासन और दृढ़ निश्चय को जाता है। 48 साल की उम्र में भी सैफ अली खान अपने फिटनेस का इतना ध्यान रखते हैं कि एक 25-30 साल के युवा का किरदार आसानी से निभा जाए।

एक मुकाम बना चुके सैफ अली खान को सिर्फ अभिनय से ही संतोष नहीं था, वो कुछ और करना चाहते थे। वो कई अलग तरह की फिल्में हिंदी सिनेमा में देखना चाहते थे, उसमें काम करना चाहते थे और उनकी चाह ने उन्हें फिल्म निर्माता बनने पर मजबूर किया। बतौर निर्माता उनकी पहली फिल्म थी लव आजकल।

लव आजकल के बाद बतौर निर्माता उन्होंने कुछ और फिल्मों का निर्माण किया है। ये फिल्में हैं गो गोवा गॉन, लेकर हम दीवाना दिल, हैप्पी एंडिंग, बदलापुर, एजेंट विनोद और

सैफ अली खान ने अपने जीवन को सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं किया है। उन्हें अलग अलग जगह घूमना, किताबें पढ़ना और परिवार के साथ वक्त बिताना पसंद है।

क्योंकि उनके लिए ढेर सारी फिल्में करने से ज्यादा जरूरी है अच्छी फिल्में करना। सैफ ने बीते कुछ सालों में लीक से हटकर फिल्में की हैं। इन फिल्मों की फहरिस्त में ये नाम शामिल हैं: वो गोवा गॉन, फैंटम, रंगून, कालाकांडी, बाजार और शेफ। शेफ फिल्म के लिए सैफ ने एक 5 सितारा होटल में ट्रेनिंग की। बदलते दौर के साथ चलते हुए सैफ अली खान वेब सीरीज का हिस्सा बन चुके हैं। उनकी अभिनीत वेब सीरीज सेक्टर गेम लोगों ने खूब पसंद की है। सैफ अली खान अपने अलग अलग अंदाज, सहज अभिनय से लोगों के दिलों में अपनी वो जगह बना चुके हैं जो उन्हें हमेशा हासिल रहेगी। अपनी व्यक्तित्व और मेहनत से फिल्मी दुनिया में अपना मुकाम हासिल करने वाले सैफ अली खान को विविध भारती परिवार की ओर से हम उनके स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। सैफ अली खान इसी तरह अलग अलग विषयों पर फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों को जीतते रहें, यही हमारी कामना है।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं डायरेक्टर, एक्टर और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना से विधि जैन की बातचीत।
1: हमारे सामने है एक बहुत बेहतरीन कलाकार जिनके हाथ में सब कुछ है, सारी रेखाएं हैं कला की, और उन्हीं रेखाओं में से रेखाएं चुनने की बारी आई तो हम भी थोड़ा परेशान हो गए, किस विषय पे बात की जाए। तो हम आपसे ही पूछ लेते हैं पंकज जी कि आप क्या ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप एक एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, वॉइस ओवर डायरेक्टर भी हैं, और आपकी आवाज में भी बड़ा दम है जो अभी लोग सुनने वाले हैं। इसलिए विविध भारती में आपका स्वागत करते हैं बहुत हृदय से, बहुत प्यार से, और पहला प्रश्न हम आपसे पूछ चुके हैं, स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विविध भारती के सारे दर्शकों को और विविध भारती से जुड़े हुए सारे लोगों को मैं मेरा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया, याद किया और कहा कि हम कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे
1: जी।
2: और जैसे आपने कहा कि मैं एक्टर भी हूं, सिंगर भी हूं, डायरेक्टर भी हूं, प्रोड्यूसर भी हूं, वॉइस ओवर डायरेक्टर, हाँ
1: जी,
2: एज ए डबिंग डायरेक्टर मैंने तकरीबन 18-20 फिल्में की हैं
1: जी।
2: और अलग अलग विषय पे जो की हैं। तो आपने मुझे पूछा कि आपको कौन सा वाला सब्जेक्ट इसमें से पसंद है, तो मुझे सारे ही पसंद है। जब जब जो मेरे पास सामने जो प्रोजेक्ट होता है
1: जी,
2: मैं उसको बहुत आनंद से, बहुत अंतरात्मा से करता हूँ
1: जी,
2: बहुत सिंसेरिटी से करता हूँ, ताकि इसमें मेरी जितनी भी कैपेबिलिटी जो भी है
1: जी,
2: वट एवर आई एम कैपेबल ऑफ, मैं उसको अच्छी तरह से कोशिश करके बहुत अच्छी तरह उसको प्रस्तुत करूं।
1: तो चलिए हम इसको और सरल बना देते हैं पंकज जी। छोटे वाले पंकज ने जो बहुत छोटा सा था उम्र में, वहां पे उस पंकज ने सबसे पहले क्या किया था?
2: ये बात जाती है बहुत पीछे जाती है, व्हेन आई वाज इन कश्मीर
1: जी।
2: असल में मैं कश्मीरी पंडित हूँ, पंकज रैना, रैना से नाम तो समझ ही आया होगा आपको कि हम कश्मीरी पंडित हैं
1: जी।
2: कश्मीर में रहते थे, जवाहर नगर हमारा अपना घर था, और हमारा जो घर था वो एक कल्चरल हब जैसा था।
1: अच्छा,
2: ये पूरा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है
1: जी,
2: पंडित महेंद्र नाथ रैना, जो आत्मा से अंदर से बहुत अच्छे लेखक और शायर थे
1: जी।
2: वैसे वो J&K असेंबली में काम करते थे, कार्यरत थे, लेकिन उनके अंदर की जो आत्मा थी वो एक कवि की थी और लेखक की थी
1: जी।
2: तो उनकी वजह से जो मेरे जो बाकी भाई बहन थे वो भी कला क्षेत्र से जुड़ गए थे।
1: अच्छा,
2: पिताजी वैसे बहुत सारे पेपर्स के भी एडिटर रहे हैं जो हमारे J&K में हुआ करते थे, लेकिन हमारे घर में जैसे मेरे एक भाई, बड़े भाई थे भुवनेश, वो पेंटर स्कल्प्टर थे, पेंटिंग में स्कल्पचर का काम था उनका, उनको स्कल्पचर और पेंटिंग का शौक था। तो हमारा नीचे एक कमरा था जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर वाला डेडिकेटेड था, उसमें पत्थर पे भी स्कल्प्टर बनते थे, लकड़ी पे भी बनते थे, ऑयल पेंट भी होता था, ये सब चीज़ हम बहुत छोटे छोटे थे।
1: अच्छा।
2: तो हमारे बड़े भाई थे, उनसे बड़े भाई थे जो फिजिक्स के डीन प्रोफेसर हुए हैं, वो मेरे पहले गुरु थे, जो प्रोफेसर तेज रैना, जिन्होंने कभी किसी संगीत सीखा नहीं, जिन्होंने उस तरह को कुछ किया नहीं, लेकिन मैं जब 10 साल की उम्र में था तो उन्होंने मुझे पहली एक गजल सिखाई थी इसकी, फैज अहमद फैज की, तो मैंने वो बच्चों के कॉम्पिटिशन में गा के मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई।

0: तो दूरदर्शन नया नया आया था
1: जी
0: 1972 में कश्मीर में, तो फिर वहां से मैं बच्चों के प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाने
1: मैं
0: लगा।
1: आपको यहाँ रोक रही हूँ। आपको फैज अहमद फैज की एक गजल गाने पर फर्स्ट प्राइज मिला था, तो हमारा अधिकार बनता है कि वो गजल हम भी सुने जिस पे आपको प्रथम पुरस्कार मिला था, और वो हमारा हमारे श्रोताओं का अधिकार तो बनता है। तो अगर आप कुछ गुनगुना दे उसके कुछ हिस्से
0: वो तो
1: तो
0: मेरी, लेकिन बच्चों जैसी आवाज कैसे आएगी?
1: अब इस उम्र की उसी आवाज में सुना दीजिए, हम सुनना चाहते हैं।

0: क्या बात है।
1: दोनों जहान तेरी।
0: आ खूबसूरत आवाज है। इतना तो विश्वास है कि हमारे श्रोता तालियां जरूर बजा रहे होंगे सुनते सुनते। अब हम आगे बढ़ेंगे कि वो जो बच्चा है वो रेडियो पे जा रहा है ना गाने के लिए या।
1: टेलीविजन पे और रेडियो पे, फिर टेलीविजन में बच्चों का प्रोग्राम होता था
0: जी
1: 1972 में, तो मैं वहाँ जाने लगा। तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं छोटा सा था, तो मैं गाता भी था। उससे पहले भी मैंने एक, जो हमारे प्रोफेसर साहब थे, तो उनका एक एनुअल फंक्शन में मैंने ऑन द स्पॉट कहा था कि मैं भी गाऊंगा। उनका वो 15 अगस्त का प्रोग्राम था,
0: जी
1: तो मैंने वो बच्चों की आवाज़ में ही 8 साल की उम्र में ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था। मैंने कहा था मैं भी गाऊं, जिद की मैंने,
0: जी जी
1: और चारों तरफ लोग खड़े थे। बहुत पुरानी बात है, इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 70 की
0: हाँ
1: बात कर रहा हूं मैं। और लोग उस वक्त, उस तरह का स्टेडियम बना भी नहीं था, तो उस तरह के लोग आसपास खड़े थे, सब सबकी आंखों में आंसू थे। मैं, मेरी आवाज एकदम लता जी जैसी थी, बच्चों की आवाज थी, ऐ मेरे वतन
0: हाँ
1: के लोगों गा रहा था। तो यहां से एक तरह से, जैसे बोलते हैं ना, वो समझ आने लगा कि हाँ इसकी आवाज बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलने लगा।
0: जी
1: फिर वो होते होते फिर वो बच्चों का प्रोग्राम आ गया दूरदर्शन का, फिर रेडियो में सुनने लगे। आकाशवाणी और विविध भारती का मेरे
0: जी
1: जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बचपन से, जो कि तब तो टेलीविजन था नहीं, नया नया आया था, घर में एक रेडियो होता था, चाहे मर्फी का या फिलिप्स का, लेकिन वो तार से जुड़ा होता था, इलेक्ट्रिसिटी, वो चलता था, और गीत और तरह तरह के प्रोग्राम आते रहते थे, हम सब सुनते थे।
0: जी
1: भाषा उच्चारण सीखने में तो काफी योगदान रहा है विविध भारती का और आकाशवाणी का, तो हम इनके हमेशा से शुक्रगुजार रहे हैं, अब हम भी रहते हैं। आज भी बहुत सौभाग्य है कि आकाशवाणी में आके हम कुछ चर्चा कर पा रहे हैं आकाशवाणी और विविध भारती के बारे में।
0: जी
1: तो इनका बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में, जबकि कहते हैं कि देखिए, हर प्रांत, हर राज्य का एक अलग भाषा होती है, हर राज्य के एक अलग डायलेक्ट होता है। हम जाते हैं तो वो दिखता है जब कोई बात करता है, लेकिन इन सब चीजों पे हमने जब वर्क किया, तो हमें, क्योंकि अगर आप कश्मीरी, नॉर्मल एक कश्मीरी से बात करेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कश्मीर
0: कश्मीर का
1: का
0: है।
1: रहने
0: जी
1: वाला है,
0: जी
1: या ये चेन्नई का रहने वाला है, या
0: जी
1: ये कलकत्ता का रहने वाला है।
0: जी
1: हमने लेकिन भाषा और उच्चारण पे बहुत काम किया कि ताकि हमें एक नॉर्मल, एक जनरलाइज्ड, एक हमारी भाषा हो, ताकि हम एक, जिसको देवनागरी हिंदी में जब बात करें तो लगे कि हिंदी बोल रहे हैं, कश्मीरी हिंदी नहीं बोल रहे हैं,
0: जी
1: बंगाली हिंदी नहीं बोल रहे हैं।
0: जी
1: तो इसमें हमारा आकाशवाणी और विविध भारती का बहुत बड़ा हमारे जीवन में योगदान रहा है, मैं हमेशा आभार व्यक्त करता हूँ।
0: विविध भारती के और आकाशवाणी के पुराने उद्घोषक जो रहे हैं उनकी बात बहुत निराली है और उनसे सीखकर हम भी
1: हमारे
0: बने हैं।
1: शिक्षक रहे
0: और
1: हैं,
0: जी
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, तो उन सबको हम सविनय प्रणाम करते हैं और
1: बिल्कुल
0: धन्यवाद
1: करते
0: देते
1: हैं,
0: हैं कि ये बात सुनने को मिल रही है और हमें भी बहुत अच्छा लग
1: बिल्कुल।
0: रहा
1: मैं
0: है।
1: हमेशा इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, और मैं आज भी आकाशवाणी और विविध भारती का एक, मतलब, ये श्रोता हूँ, मैं
0: जी
1: सुनता हूँ। जब भी ड्राइव करते करते कहीं जाते हैं लंबे सफर में, तो आई विल ऑलवेज प्रेफर कि मैं 102.8
0: एट जी जी
1: सुनूँ,
0: जी
1: या एक और है 107. जो जैसे आकाश में
0: आप
1: गोल्ड
0: जहां
1: है,
0: जहां शहर
1: हाँ
0: बदलेंगे हमारे नंबर्स
1: जी
0: बदल
1: जी
0: जाते हैं,
1: नंबर्स
0: इसलिए
1: बदल
0: आपको
1: जाते
0: अलग
1: हैं,
0: अलग शहर में अलग अलग दिखाई
1: लेकिन
0: दे
1: मुझे
0: जाते हैं।
1: इनके ही प्रोग्राम सुनना अच्छा लगता है, बिकॉज
0: जी
1: एक तो मर्यादा में बोलते हैं, भाषा रेस्पेक्टेबल भाषा में बात करते हैं,
0: जी
1: और कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत ही सुंदर एकदम, मतलब, प्रसारण होता है।
0: जी
1: मैं माफी चाहता हूँ उस बात के लिए, लेकिन मैं FM सुनता नहीं आजकल के, क्योंकि वहाँ ना उच्चारण है, ना भाषा है, ना कोई उसका अंदाज है। लेकिन आकाशवाणी ने और विविध भारती ने हमेशा से वो कंटिन्यू रखा है कि किस तरह से एक भाषा को एक रेस्पेक्टेबल वे में प्रस्तुत किया जाए।
0: जी हम हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता और हमारे इतिहास को संभालने का विविध भारती प्रयास कर रहा है, और आप सब लोगों जैसे लोगों का साथ रहता है तो
1: हम
0: अच्छा
1: हमेशा
0: चलता
1: साथ
0: जाता
1: हैं,
0: है।
1: हम
0: जी
1: हमेशा साथ,
0: तो अब हम वापस आपके
1: मेरे
0: जीवन
1: बचपन
0: पे
1: में
0: आ जाते
1: चलते थे।
0: हैं।

0: फिर मेरे एक ब्रदर है चंद्रशेखर,
1: जी
0: वो हमारे थिएटर भी हमारे यहाँ होता था, हमारे कश्मीर में एक हॉल होता था जहाँ एक ही हॉल था, टैगोर हॉल,
1: जी
0: अब भी है वो, जहाँ
1: जी
0: पे प्लेज होते थे, म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते थे। तो हमारे घर में चूंकि इस तरह का वातावरण था ही, तो हम बच्चों छोड़ते थे, हम भी फॉलो अप करते थे, तो इस तरह से ये क्रिएट हुआ।
1: जी
0: घर से हमारे उस वक्त चीजें ले जाते थे जो सेट डेकोरेशन
1: सेट
0: करने के
1: लगाने
0: लिए,
1: के लिए जी
0: लगाने
1: है
0: के लिए। और आकाशवाणी का भी, विविध भारती का भी योगदान था, ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर का भी बहुत योगदान था। वो वक्त वक्त पे बड़े बड़े पंडित और उस्ताद लोगों को वहाँ, उनके प्रोग्राम्स होते थे, जैसे शिव कुमार शर्मा जी का, इनके हरि प्रसाद जी का, और बहुत अच्छे अच्छे परवीन सुल्ताना, ये बड़े बड़े जितने भी दिग्गज संगीत के जो मार्तंड हुए हैं, उन लोगों का प्रोग्राम आकाशवाणी प्रस्तुत करवाती थी। और कभी आकाशवाणी में होता था, कभी हॉल में होता था, तो हम लोग देखते जाते थे, क्योंकि हमें बड़ा शौक था, हम लोग इस तरफ इंक्लाइंड थे, झुकाव
1: जी
0: था हमारा।
1: जी
0: तो हमने वहां से ही शुरुआत की है, वहीं से शुरुआत हुई है, उस तरह के ही वहां से असर पड़ा है। तो फिर धीरे धीरे हम लोग, फिर मैं और मेरी बहन प्रेरणा, हम लोग अपना म्यूजिक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स था जे
1: हाँ
0: एंड के अकेडमी का, वहां जाके हमने सारे गामा सीखना शुरू किया, छोटे
1: जी
0: छोटे थे
1: जी
0: तब। तो फिर हमें थिएटर में उतना मिलता नहीं था मौका,
1: जी
0: लेकिन गीत संगीत की तरफ पूरा ध्यान जाता था।
1: जी
0: फिर धीरे धीरे वहां थिएटर करना शुरू किया हमारे, क्योंकि घर में ही था। जितने भी अच्छे अच्छे कलाकार, इतने बड़े बड़े जिन्होंने नाम किया बाद में, तो वो हमारे थिएटर ग्रुप में भी थे कश्मीर में, और उनकी वजह से हमें बड़ा आनंद होता था कि इन्होंने बॉम्बे जाकर और दिल्ली जाकर इतना नाम कमाया, इतनी ख्याति पाई। तो देखा जाए तो बचपन से ही इसकी नींव पड़ी थी, जो आज तक चली जा रही है। नाउ आई एम ए सीनियर
1: बीच
0: सिटीजन, इट्स बीन लॉट ऑफ टाइम आई हैव बीन विद म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट ऑलवेज।
1: ये जो बीज सही पड़ा था, ये बीज आगे बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते एक होता है ना कि अभी तक तो आप सीख रहे हो या मजाक मस्ती में कर रहे हो या शौक के लिए कर रहे हो, प्रोफेशनली या कहा जाए जैसा शायद पूछा भी जाता है सामान्यतया, ये हालांकि मजाक का विषय लिया जाता है, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं गायक हूं तो उससे उसका होने वाला ससुर पूछता है पर खाने के लिए क्या करता है। तो इसी विषय के नाते मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इसको अपने दाना पानी का विषय यानी अपने प्रोफेशन का विषय कब बनाया और कैसे बनाया?
0: वो थोड़ा बाद में बनाना पड़ा, बिकॉज जब मैं बहुत ही अर्ली एज से, क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम में जाता था, फिर हमारे रेडियो कश्मीर में युववाणी की स्थापना हुई,
1: जी
0: और युववाणी में जब हम टीनेजर थे, 16-17-18 साल के थे, 16-17 साल, 15-16-17 साल के ही थे, तो तब हमें वहां पे हमें मौका मिला कि हम प्रसारण कैसे करें, उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया सिखाया।
1: सिखाया
0: तो फिर वो शामे गजल और आपकी फरमाइश, इस तरह के प्रोग्राम हम युवानी में प्रस्तुत करने लग गए।
1: अच्छा
0: फिर हमारे वहाँ ड्रामा प्रोड्यूसर थे प्राण किशोर कौल साहब,
1: जी
0: तो फिर उन्होंने बोला तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम आओ, तुम ड्रामा का भी ऑडिशन दो,
1: जी
0: मैं प्लेज करते रहता हूँ, रेडियो प्लेज
1: हाँ हाँ
0: जो होते थे। तो हमारा फिर ड्रामा के लिए ऑडिशन हुआ रेडियो का, तो उसमें हम अच्छी ग्रेड में हुए, तो फिर हम
1: पास हो
0: उसमें
1: गए
0: प्लेज करते थे।
1: जी
0: तो वहां से कुछ न कुछ, शुरू शुरू में कभी ₹15 का चेक मिलता था, फिर बाद में धीरे धीरे ₹50 का हुआ, ऐसी
1: हाँ
0: शुरुआत हुई। तो यहां से तो आना शुरू हुआ ही था एकदम, कोई ना
1: जी
0: कुछ। लेकिन पिताजी की वजह से हमें इस तरह का वो नहीं था, उनका हम आज भी धन्यवाद करते हैं, बहुत करते हैं, कि उन्होंने कभी हमें सप्रेस नहीं किया, दबाया नहीं,
1: जी
0: कि उन्होंने हमें खिलने दिया जैसे हम खिलना चाहते थे।
1: जी
0: तो उन्होंने हमेशा कहा कि बेटा, उन्होंने सिखाया कि हाँ, ये अब चेक मिला है तो कहाँ रखे, ₹15 का चेक मिला है, छोटे छोटे थे। तो पिताजी अपने साथ बैंक ले गए, उन्होंने बोला कि ये अकाउंट खुलवाया तो इसमें चेक डाल दो। फिर जब वो पैसे जमा होते थे, तो हम कभी वो हमारे लिए कभी कभी शूज लेके आते थे,
1: हाँ
0: जाते थे, कभी वो लाते थे। तो उस तरह का उन्होंने सिखाया शुरू से, बचपन से,
1: जी
0: कि कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इकोनॉमिक जब से कुछ पैसे कमाए हैं तो उनको कैसा उपयोग होना चाहिए। फिर होते होते मैं घर से निकल पड़ा था, एक्चुअली सच बताएं तो मेरे
1: निकल
0: भाग्य
1: पड़े थे,
0: में
1: मतलब
0: ऐसा था कि
1: भाग पड़े
0: मैं,
1: थे या निकल पड़े थे?
0: नहीं, घर वालों की सहमति से ही आया था, ऐसा नहीं, भाग
1: अच्छा
0: के नहीं आया।
1: जी
0: तो मैं 1980 में दिल्ली आया, और दिल्ली में मैंने भारतीय कला केंद्र में एडमिशन लिया, और मैं थिएटर भी करता था, और मैं पंडित अमरनाथ जी से म्यूजिक भी सीख रहा
1: संगीत भी
0: था।
1: सीखा
0: और वो भारतीय कला केंद्र दिल्ली मंडी हाउस में बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है जो श्री राम लोगों का है, तो वहाँ हमने म्यूजिक क्लास में मुझे एडमिशन मिला अमरनाथ जी के यहाँ। तो पीछे हॉस्टल में रहने की व्यवस्था भी थी, और बाकी टाइम सब, हर वक्त क्लास नहीं होता था, लेकिन बाकी टाइम 1-2 घंटे निकाल के मैं और हम, मेरे कुछ साथी थे, उनके साथ हम थिएटर वगैरह, प्लेज पढ़ना, प्लेज की
1: जी
0: रीडिंग करना और प्ले करना। तो वहाँ पे श्रीराम सेंटर, कमानी ऑडिटोरियम, फिक्की ऑडिटोरियम,
1: जी
0: बहुत सारे ऑडिटोरियम मंडी हाउस में थे। तो वहाँ हम कभी कभी फिर नाटक करते थे, और कभी कभी यहाँ छोटे ही थे, आई वॉज आई थिंक ऑलमोस्ट टीनेज की एंड ही था मेरा कुछ ऐसा, जब मैं दिल्ली
1: 18,
0: आ गया था,
1: 20 इयर्स का एज होगा,
0: हाँ
1: 18,
0: 19
1: 20
0: बीस
1: साल।
0: साल की उम्र थी। तो वहाँ मैं 5 साल दिल्ली में रहा, वहाँ पे उस दौरान फिर मैंने कुछ वहाँ भी रेडियो में मैंने म्यूजिक में ऑडिशन दिया, तो मैं मुझे पास हुआ था दिल्ली रेडियो से, मैं
1: जी
0: सिंगिंग में बी हाई ग्रेड में
1: मतलब
0: पास
1: रेडियो
0: हुआ।
1: का साथ छोड़ा
0: रेडियो मेरे साथ में
1: नहीं।
0: हमेशा रहा है,
1: जी
0: और मेरी बहन का तो ये था कि हमारे एग्जाम्स होते थे ना,
1: हाँ,
0: तो उसका रेडियो चलता रहता था, गीत भी चलते रहते थे, वो
1: और
0: प्रिपेयर भी
1: पढ़ते भी
0: करती
1: रहते
0: रहती
1: थे।
0: थी,
1: जी जी जी
0: मुझसे ऐसा नहीं होता था, उससे हो जाता
1: जी लड़कियां मल्टी टैलेंटेड होती
0: था।
1: हैं।
0: तो मेरी ट्रेनिंग ही इस तरह की रही है,
1: जी
0: लेकिन कभी उस तरह की वो रही नहीं डेस्परेशन कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कहीं नौकरी करनी है, ऐसा नहीं रहा। लेकिन मुझे लगता है ट्रेनिंग ऐसी होती रही, उसके साथ में इंटेलिजेंस वैसी होती रही, जैसे कि जैसे म्यूजिक भी था, थिएटर भी था, और अपनी भाषा पे और उच्चारण पे तो शुरू से ही ध्यान देते थे, तो आवाज़ का भी कुछ एक समझ आया कि आवाज़ को कैसे इस्तेमाल करना है।
1: जी
0: कुछ वहाँ दिल्ली में प्रोग्राम करने का मौका मिलता, तो एंकरिंग करने का मौका मिला,
1: जी
0: तो इस तरह की सारी चीज़ें होती रही अपने आप ही, सच बताएं तो।
1: मतलब आपके लिए अपने आप ही सब हो रहा था, और उसी अपने आप में आपने ना आवाज की बात के बारे में कई बार बोला,
0: जी
1: उच्चारण के बारे में कई बार बोला, तो मैं आपके जीवन की जो परिधि पे हम चल रहे थे, उस परिधि पे 1 मिनट के लिए रुक के एक बात पूछना चाहती हूँ। आप वॉइस ओवर डायरेक्टर हैं, हमारे श्रोताओं में कई सारे बच्चे हैं जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, शायद उनको मॉड्यूलेशन भी आता है खुद से अपने आप से, और वो ऐसा सोशल मीडिया पे कई चीज़ें करके भी डालते होंगे, पर वो चाहते हैं कि वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाएं, तो उसके लिए वो क्या करें? अगर आप थोड़ा सा बीच में कुछ सिखा दें, फिर हम आपकी यात्रा पे वापस आ जाएंगे।
0: मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर कोई वॉइस ओवर या डबिंग करना चाहता हो या
1: जी
0: वॉइस एक्टर बनना चाहता हो,
1: जी
0: उसे सबसे पहले तो अपनी भाषा पे और उच्चारण, जो मैं बार बार कह रहा हूँ,
1: जी
0: क्योंकि ये आजकल सबसे ज़्यादा कमी अगर मुझे कहीं महसूस होती है, कहीं ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट सुनने में, तो ये बहुत तकलीफ होती है
1: जी
0: कि लोग, उनका भी शायद कितना दोष है, उनके शिक्षक वैसे हैं क्या, ये मुझे
1: जी
0: मालूम नहीं है, लेकिन हाँ उच्चारण पे बहुत ध्यान देना चाहिए, वॉइस क्वालिटी पे देख, उनकी वॉइस, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी आवाज में बेस कैसे आएगा,
1: हाँ,
0: ऐसा नहीं
1: ये
0: हो, मुझे
1: प्रश्न
0: कई लोग सवाल पूछते हैं कि हमारी आवाज ऐसे कैसी होगी,
1: जी
0: आपके जैसे हमारी आवाज कैसी होगी,
1: हाँ
0: लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की एक आवाज, एक अपनी क्वालिटेटिव आवाज, वो नेचर से मिलती है,
1: जी
0: उसमें थोड़ा सा हम लोग एनहांसमेंट कर सकते हैं अगर हम उसका थोड़ा रियाज करें, जैसे हम खरज का रियाज करें मॉर्निंग में उठ के, वो संगीत
1: खरज का
0: की
1: रियाज
0: जैसे
1: कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा?
0: वॉइस को थोड़ा सा नीचे के टोन, जैसे ऑक्टेव्स हैं, जैसे सप्तक है,
1: हाँ
0: मंदर सप्तक है, मध्य सप्तक है और तार सप्तक है, तीनों ऑक्टेव्स जो हैं उसमें मध्य सप्तक से आपको मॉर्निंग में, चूंकि आप नींद से उठते हैं तो उसके बाद आपके पास थोड़ी सी बैठी होती है,
1: बेस
0: मतलब
1: काफी
0: बेस वहां
1: अच्छा
0: होती है,
1: होता
0: तो
1: है।
0: उसमें आप
1: हाँ,
0: नीचे की तरफ
1: सा
0: सा
1: के बाद
0: नी, हाँ
1: नी।
0: नीचे
1: जी
0: आए,
1: जी
0: आ नीचे की तरफ जितना जाएंगे,
1: जी
0: और कहते हैं कि जितना नीचे जाएंगे उतना ऊपर छू सकते हैं,
1: अच्छा
0: हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है कि वेन यू, आप जब खरज का रियाज करते हैं तो तार सप्तक में आपकी आवाज और भी आगे
1: खुलती
0: जब
1: है
0: खुलती है,
1: जी।
0: तो इस तरह का मुझे लगता है वॉइस क्वालिटी में अगर थोड़ा बदलाव लाना है तो थोड़ा आपको खरज का रियाज करना पड़ेगा, चाहे आप संगीत का करें या
1: जी
0: आ करके ही कर सकते हैं,
1: जी
0: लेकिन हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की, हर एक स्त्री की अपनी अपनी एक वॉइस क्वालिटी है जो नेचुरली होती है, तो उसको ही कैसे अच्छा इस्तेमाल करना है वो आपको ढूंढना है। अगर आपका उच्चारण सही है, अगर आपकी आवाज अच्छी है, तो आपको उच्चारण पे पढ़ के आपको पढ़ाई बहुत करनी है,
1: जी
0: किताबें बहुत पढ़नी चाहिए आपको, और थोड़ा सा लाउडली पढ़नी चाहिए, जैसे आप अकेले अगर हो तो किताबें पढ़ना चाहिए उसको,
1: किस तरह की किताबें पढ़नी
0: कोई भी,
1: चाहिए?
0: जैसे उपन्यास हो कोई भी हो,
1: अच्छा
0: जिसमें अगर आपको, क्योंकि भाव की भी जरूरत होती है,
1: जी
0: आवाज के साथ में उच्चारण के साथ में भाव भी चाहिए,
1: जी
0: तभी आप अच्छे आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं,
1: जी
0: जब आपको मालूम, क्योंकि मेरे संगीत के योगदान ने मुझे उसमें एक अलग तरह का, एक मेरे जीवन में योगदान किया है, कि क्योंकि मैंने बेसिकली थोड़ा म्यूजिक भी सीखा है, बहुत ज्यादा मैं उस्तादी म्यूजिक नहीं सीखा है, मैंने
1: जी
0: बेसिक म्यूजिक सीखा है, जो
1: जी
0: मैंने संगीत सीखा है उस वजह से मेरे डायलॉग डिलीवरी में, या मैं जब डबिंग करवाता हूं किसी से, तो मैं उनको वो गाइड कर सकता हूं कि इस सेंटेंस का भाव ऐसा है और किस शब्द को आपको कितना पुश करना है, कितना सॉफ्ट करना है, और उसको कैसे साथ में लेके चलना है,
1: जी
0: तो वो मैं इसलिए बता पाता हूं क्योंकि मेरा संगीत से मेरा जुड़ाव है, संगीत की मेरी सोल है,
1: जी
0: मेरी म्यूजिक की सोल मुझे वो जो सुरों की जान पहचान

0: की वजह से मुझे लगता है कि जो डायलॉग को हम किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं
1: जी
0: वाइल एक्टिंग या रेडियो एक्टिंग या फिल्म की एक्टिंग या टेलीविजन की एक्टिंग करते हैं, तो वो भाव उसमें आना बहुत अनिवार्य होता है, आवश्यक है।
1: ठीक है
0: तभी तो आपके सेंटेंस में वो एक वो कन्वे होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं।
1: जी
0: तो उसमें उच्चारण के साथ साथ, वॉइस के साथ साथ आपको भाव पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
1: जी
0: और जैसे आजकल तो बहुत सारे एपरेटस हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, उसमें रिकॉर्डर होता है, उसमें कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। दो एक छोटा पैसेज रिकॉर्ड कर लिया, फिर आपने उसको सुन लिया। तो अगर आप जेन्युइनली एनालिटिकली अपने उसको जो आपने रिकॉर्ड किया उसको सुनेंगे और समझेंगे कि कहीं त्रुटि है, कहीं गलती तो नहीं हुई है, कहीं कुछ ऐसा हुआ तो नहीं, तो आप उसको दोबारा से कर
1: खुद
0: सकते
1: खुद
0: हैं
1: के गुरु भी बन सकते
0: खुद।
1: हैं।
0: क्या और वैसे भी बहुत सारी कुछ लोगों की क्लासेस चलती हैं जो वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस एक्टिंग, ये सब चीज़ें और ब्रॉडकास्टिंग के बारे में सिखाते हैं, काफ़ी लोग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो वहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा उसका मंत्र जो है कुछ करने के लिए, दीवानापन और दीवानगी होनी चाहिए। अगर
1: जी
0: आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है,
1: जी
0: इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: जी तो वो पागलपन चाहिए, अगर पागलपन है तो
0: हाँ,
1: आप
0: वो
1: वहां पहुंच
0: दीवानापन
1: सकते हैं।
0: चाहिए।
1: और कुछ शिक्षाएं तो इसमें दी गई हैं, तो आप उन शिक्षाओं का भी ध्यान
0: जी
1: रखें,
0: जी बिल्कुल, बिना
1: उच्चारण
0: गुरु के
1: और
0: ज्ञान तो मिलता
1: जी
0: नहीं है।
1: जी
0: और
1: जी
0: गुरु आपको बनाना पड़ेगा किसी को गुरु, कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं
1: हाँ
0: इनसे सीखूं,
1: जी
0: तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही।
1: जी
0: तो हम बचपन में गए ना वापस।
1: नहीं अभी बचपन में नहीं जाते
0: हाँ
1: एक काम करते हैं, हम वापस आते हैं, और वापस आके जब आपने इतनी अच्छी शिक्षा दी और आपने कहा कि संगीत ने आपका बहुत साथ दिया,
0: जी,
1: आपने बहुत अच्छे से दिल्ली में सीखा भी संगीत, तो अगर आप हमें एक कोई गीत गाकर सुना दे ताकि वही गीत हम हमारे श्रोताओं को सुना पाएं।
0: ठीक है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, पता
1: जी
0: नहीं आपका दिल चाहे तो मतलब
1: नहीं स्वागत है, स्वीकार है जी
0: मैं चूंकि संगीत से मेरा बहुत पुराना साथ है, मेरा इट
1: जी
0: हैज बीन माय फ्रेंड ऑलवेज, मेरा साथी हमेशा संगीत रहा है, अकेलेपन का भी बहुत साथी रहा है।
1: जी
0: बीच में तो काफी साल मैं एक्टिंग करता रहा, 1987 में मैं पहली बार मैंने बॉम्बे में सीरियल किया था। एक्टिंग करते करते करते मैं डबिंग करता रहा, वॉइसिंग करता रहा, फिर डबिंग डायरेक्टर बना करते करते, उसके बारे में बाद में तो बात करूंगा आपसे। तो उसके साथ साथ मैं अभी एक प्रोग्राम करने वाला हूँ, मैं एक ट्रिब्यूट दे रहा हूँ हमारे बहुत बड़े आइकॉन फिल्म इंडस्ट्री के रहे हैं धर्म जी, धर्मेंद्र,
1: जी
0: उनको ट्रिब्यूट देने का मेरा बड़ा दिल किया, तो मैं उनको एक ट्रिब्यूट दे रहा हूँ। प्यार ही प्यार बेशुमार
1: क्या
0: टाइटल
1: बात है,
0: रखा है मैंने प्रोग्राम का, और आई थिंक अगले अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास मैं सेंट एंड्रयूज ऑडिटोरियम में वो शो कर रहा हूँ। उसमें एक गीत मुझे बहुत पसंद है, धर्म जी को मैंने डेडिकेट किया। उसमें
1: जी
0: गाने तो बहुत सारे हैं, हमने तकरीबन बहुत सारी लिस्ट बनाई है, उसमें एक गाना है जो मुझे बहुत बेहद पसंद है, उसकी दो लाइनें आपको सुनाता हूँ,
1: जी
0: चूंकि
1: स्वागत है।
0: आपने मुझे कहा है कि दो लाइनें सुना दीजिए।

0: ये खूबसूरत गीत आपने गाया और हमने हमारे श्रोताओं को सुनाया, मतलब हमारे श्रोताओं की भूख बढ़ गई है कि अब जो भी गीत आप चुनेंगे वो उस गीत को आप गाकर सुनाएंगे और फिर हम आगे सुना देंगे।
1: वाह वाह, मेरा
0: ये
1: सौभाग्य,
0: है
1: मेरा
0: ना, ये
1: सौभाग्य।
0: होता रहेगा। पर अब आपने बताया कि 1987 में आप मुंबई आए थे और पहला
1: 1986 में आया था,
0: 1986 में।
1: इनफैक्ट जनवरी 20-40 साल हो गए तकरीबन बंबई में।
0: ऐसा बताने से उम्र पता चल जाती है
1: मुझे कोई गम नहीं है उसका।
0: पर आप 1986 में मुंबई आए और यहाँ पर आके आपने अपना एक नया कदम, एक नया पायदान चढ़ा, एक नई सीढ़ी चढ़ी यहाँ से आपने। तो अब जरा उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें थोड़ा।
1: ऐसा सुनने में आया था कि बॉम्बे में बिना गॉडफादर के कुछ होता नहीं है, तो
0: अच्छा।
1: ये बात एक तरह से वाजिब भी है, अच्छी भी है, सही भी है। लेकिन अब जब मेरा कोई था ही नहीं बॉम्बे में, तो मुझे तो खुद ही अपनी पगडंडी बनानी थी, अपने रास्ते खुद बनाने थे। तो मैं उससे पहले भी कई बार, एक बार ऐसे छुट्टियां होती थी मेरे कॉलेज में, तो वो सब दिल्ली में भाग भाग के आता था, क्योंकि बम्बई अपनी तरफ खींचता था मुझे हमेशा शुरू से। फिर फाइनली मुझे बॉम्बे आना ही पड़ा। मुझे बहुत लोगों ने वहाँ दिल्ली में कहा कि आप दिल्ली में क्यों रहते हैं, आप बॉम्बे जाना चाहिए, आपको बॉम्बे में इतना अच्छा आपके टैलेंट का विकास होगा, आपको बहुत सारे अच्छे मौके मिलेंगे। तो मैं बॉम्बे आया, तो उसके बाद फिर मैंने इधर उधर कुछ, मैंने एक फोटो सेशन करवाया था। उस वक्त के बेस्ट फोटोग्राफर जो थे, स्टिल फोटोग्राफर, उनका नाम था गौतम राजाध्यक्ष,
0: जी जी
1: अब वो
0: जी
1: है
0: जी
1: नहीं,
0: जी जी
1: लेकिन मैंने बड़ी बहुत जद्दोजहद करी, बहुत मेहनत करी, तो मैंने उनका पता ढूंढा। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे फोटो सेशन कराना है तो सिर्फ आपसे करवाना है।
0: बड़े महंगे हुआ करते थे उस समय।
1: लेकिन बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे
0: जी
1: थे वो,
0: जी
1: बहुत
0: बिल्कुल।
1: ही अच्छे। एंड ही वॉज द बेस्ट पोर्ट्रेट फोटोग्राफर, बहुत बड़े
0: यस
1: बड़े लोगों का करते थे। एंड ही अग्रीड टू डू माई फोटो सेशन फॉर दैट टाइम। एंड तो फिर उनके घर पे उन्होंने मुझे, बाबूलनाथ मंदिर के पास में उनका घर था ह्यूज रोड पे, तो वहाँ उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, बोला यू कम ऑन सैटरडे वी विल शूट। तो उन्होंने खट खट खट खट मेरी तस्वीरें लेते गए वो, और कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने दी। तो फिर मेरे पास जब वो उस जमाना वो था, तो कुछ फोटोग्राफ्स तो दिए थे, तो मैंने बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में मैंने
0: अप्लाई
1: वो
0: कर दिया।
1: दिया उनका अपना पीछे। अच्छा, उस वक्त ऐसा जमाना था कि फोन भी नहीं होता था सबके पास में, सबके मतलब केयर ऑफ नंबर होते थे। मेरे भी एक अंकल रहते थे बांद्रा में, तो पीछे उनका केयर ऑफ नंबर देके हम लोग रखते थे नाम और केयर ऑफ नंबर। कभी कभी वो फोन करते भी थे और मैसेज मिस भी हो जाते थे। और
0: हाँ
1: मेरी आंटी घर पर रहती थी, वो बोलती थी अरे बेटा किसी का फोन आया था, वो कोई अच्छा सा था, नाम भी अच्छा सा था, कुछ क्या कुछ बताती नहीं, कोई कोई
0: भूल
1: मैसेज मिलता नहीं
0: गई
1: था,
0: भूल गई।
1: लेकिन हाँ वो भूल जाती थी। तो इस तरह का भी वक्त देखा है। तो फिर बहुत सारे लोगों से मिलना होता था। उस वक्त मुझे एक एड फिल्म मिली थी ब्रूक बॉन्ड की, 3 रोज़ेस चाय,
0: अच्छा।
1: आई थिंक दैट वाज फॉर कुछ साउथ के लिए था।
0: हाँ।
1: उसमें एक मॉडल थी राधा और मुझे उन्होंने लिया था। ज्योति ठाकुर डायरेक्टर थे उस एड के,
0: जी
1: बहुत
0: ठाकुर
1: बड़े
0: जी जी जी
1: एड फिल्म मेकर थे ज्योति
0: जी
1: ठाकुर।
0: जी
1: तो उस एड में मुझे काम करने का मौका मिला था, ब्रूक बॉन्ड की 3 रोज़ेस चाय। फिर मैंने जिंगल गाया, एक बन फूल आयुर्वेदिक तेल का जिंगल मुझे गाने का मौका मिला। मैं बहुत, मतलब मैं जितनी मुझसे कोशिश खुद से हो सकती थी मैं करता था, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर था नहीं, मुझे कोई लॉन्च करने वाला था नहीं, तो आई हैड टू डू माई ओन थिंग्स। तो आई यूज टू बी इन टच, मैं पृथ्वी थिएटर में अक्सर जाता था, वहाँ लोगों से मिलना होता था, वहाँ बहुत लोग मिलते थे। कुछ मैंने उस पहले आके इप्टा के साथ में भी एक उनके साथ फंक्शन किया था इप्टा डे का, तभी वो बहुत अच्छे अच्छे लोग हुआ करते थे। इकबाल कुरैशी साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे, कुलदीप सिंह जी थे, तो एम एस सत्यू साहब, ये लोग बहुत पुराने इप्टा के
0: बड़े
1: लोग थे।
0: लोग थे जी।
1: तो इन लोगों के साथ में भी इप्टा डे में भी मैंने गाया भी था, एक्टिंग भी किया था। तो इस तरह से मुझे जितने जितने मुझे जो भी मौका मिलता था मैं कर लेता था।
0: जी
1: आई थिंक आई यूज टू, मुझे लगता है अपने आप को मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ,
0: जी
1: शायद रिफाइन कर रहा हूँ। तो इनिशियली वैसे ही काम चलता रहा।
0: जी
1: फिर ये 1987 में दूरदर्शन में एक सीरियल आता था अधिकार, उसमें मेरा उसमें हुआ था, तो
0: जी
1: मैंने उसमें एक्टिंग की। फिर उनका ही नेटवर्क 7 का ही मंजू सिंह, जोत सिंह का एक कहानी, उसमें मैंने एक्टिंग की। फिर उसके बाद तरह तरह के करता रहा। फिर मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, मैं आपको बताऊं,
0: जी
1: मैं जो मैंने शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं है, मैंने प्यार किया फिल्म की कास्टिंग हो रही थी,
0: हाँ
1: तो मैंने प्यार किया कास्टिंग के लिए मुझे किसी ने मुझे मुझे भेजा था, बोला उनको जरूरत थी उस वक्त एक्टर्स की। तो उन्होंने शायद सलमान खान और भाग्यश्री का सिलेक्शन हो चुका था,
0: जी
1: उसमें किरदार था जीवन का,
0: जी
1: उसके लिए मुझे उन्होंने स्क्रीन टेस्ट किया। सूरज जी से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया था, और उस स्क्रीन टेस्ट में सलमान खान भी मौजूद थे और भाग्यश्री भी। वो एक प्रॉपर सीन शूट हुआ राजश्री प्रोडक्शंस की सीढ़ियों में, जहां पे वो लिफ्ट है और वहाँ सीढ़ियों से उतरते मैं एकदम सूटेड बूटेड आता हूँ और नीचे आके सलमान और भाग्यश्री खड़े हैं, उनके साथ मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उस फिल्म के लिए। वो एक डायलॉग था, वाह सुमन वाह, पराए अजनबी घर में पराए लोगों से इतना दोस्ताना, ये सब डायलॉग्स थे। तो सलमान आके मेरा कॉलर पकड़ते हैं, सूट पकड़ते हैं, तो मैं ऐसे, फिर वो डायलॉग बाजी थी, वो मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उसमें। और हमारे दो लोगों का, मेरा हुआ था और एक और लड़के का, तो मेरा सिलेक्शन मुझे मालूम पड़ा हुआ था। लेकिन फिर वो फाइनली दैट रोल वेंट टू अप टू टू मोनिश बहल। तो वहां से थोड़ा मेरा लगा था कि हाँ सचमुच जो लोग कहते हैं कि गॉडफादर होता है तो गॉडफादर होना चाहिए। लेकिन मेरी कोशिशें एकदम बरकरार थी, चालू थी, मैं हमेशा कोशिशें करता रहा, करते करते करते फिर टेलीविजन में करते रहे, बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए। महाराणा प्रताप मेरा एक तरह से लास्ट सीरियल, उसके बाद मैंने फिर टेलीविजन नहीं किया।
0: जी
1: महाराणा प्रताप था, अदालत, बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए, कागज की कश्ती
0: जी,
1: तो अब तो नाम भी याद नहीं रहते कितने, उस
0: इतने
1: जमाने
0: सारे
1: में 80s
0: सीरियल्स कर लिए, गाने तो याद रहते हैं। अब आपने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि जिंदगी में जो कुछ आता जा रहा है वैसे ही चलता जा रहा है,
1: जी
0: तो एक गाना अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ सुना दें और उनको एक डेडिकेट कर दें तो बड़ी खुशी होगी श्रोताओं को भी और हमको भी।
1: लेकिन मैं दो ही लाइनें गाऊंगा, उसके बाद आप ओरिजिनल गाना चलाइएगा।
0: जी ओरिजिनल जो गाए हैं वो गा देंगे। आप दो पंक्तियां।
1: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर

0: बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला
1: क्या
0: गया।
1: बात है, मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत बहुत खूबसूरती से आपने गाया, और अब सुनते हैं यही गीत।
2: मैं जिंदगी

0: तो ये गाना तो आपने सुना दिया और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हमसे बात करने के लिए बुलाया है या गाना गाने के लिए। तो विविध भारती की एक बात है कि यहाँ पर अगर कोई हुनरबाज आता है तो हम सारे हुनर का आनंद उठाते हैं और सब में बांटते हैं। तो ये
1: नहीं,
0: प्रेम
1: मुझे
0: हम
1: भी
0: बांट
1: खुशी
0: रहे
1: है
0: हैं कहाँ।
1: बिल्कुल आपके साथ, जिस तरह हम जो वार्ता कर रहे हैं, जो भी एक चर्चा कर रहे हैं,
0: जी
1: मेरे बारे में चर्चा हो रही है, मेरे सफर के बारे में चर्चा हो रही है, उसमें मेरा साथी तो आकाशवाणी विविध भारती है ही, और विविध
0: जी
1: भारती के श्रोताओं को
0: जी
1: खासकर, उनको भी तो गीतों का आनंद मिलना चाहिए, उनको भी हमारी
0: जी
1: बातों का आनंद आना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। तो अब जब बातों का आनंद चल रहा है तो अभी तक तो आप मुंबई आए, फिर से दूरदर्शन यानी प्रसार भारती ने आपका हाथ पकड़ लिया, आपको बहुत सारे नाटकों का, धारावाहिकों का हिस्सा बनने का मौका मिल
1: जी
0: गया।
1: जी
0: अब आपने धारावाहिक कर लिए, उन्हें छोड़ दिया, लेकिन साथ साथ में कुछ फिल्में भी आपके हाथ में आ रही हैं और आप उन फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, एक
1: जी
0: एज ए एक्टर काम कर रहे हैं। तो वो जमाना कैसा था, आप काम करते थे तो कैसा लगता था और आपने किन-किन जगहों पर क्या-क्या किरदार किए, ये बड़े प्यारे से प्रश्न है जिनका उत्तर हम जानना चाहते हैं।
1: असल में शुरुआती दौर में बेसिकली मेरे जहन में ऐसा बैठा था कि एज मैटर्स अ लॉट। जैसे मैं 20s में था तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी मुझे अगर लीडिंग कैरेक्टर्स मिल जाएं, फिर मुझे वो लीडिंग कैरेक्टर ही चाहिए थे। उसके बदले में मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ भी दी उस वक्त, क्योंकि शायद मेरा गाइड या मेंटोर या गॉडफादर कोई था नहीं, या जो मुझे मतलब समझा सकते थे। मैं खुद ही अपनी एनालाइज करके अपनी डिसीजंस लेता था।
0: जी
1: जैसे मुझे मैंने प्यार किया नहीं मिली तो मेरा दिल थोड़ा सा दुख
0: टूटा
1: गया था।
0: होगा।
1: तो
0: हाँ
1: देवानंद साहब से मैं बहुत मुतासिर था, बहुत उनसे प्रभावित था, तो उनसे मुझे मेरे मित्र ने मिलवाया था, देव साहब से, वो उनके असिस्टेंट चीफ असिस्टेंट थे। तो देव साहब बहुत प्यार करते थे, मुझे कश्मीरी करके बुलाते थे, ए
0: जी
1: कश्मीरी कम हेयर, कम कम व्हेन हैव यू कम, उस तरह से बहुत स्टाइल से बात
0: आप
1: करते
0: थोड़ा और इसको क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात करते
1: थे
0: समय देव साहब यहाँ पर आए थे, तो देवानंद को सुनना हम चाहते हैं, अगर थोड़ा और सुना
1: मैं
0: दें।
1: उनके अंदाज में बताऊंगा जो उन्होंने मुझे जवाब दिया
0: जी जी
1: था,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि एक फिल्म बन रही थी उस वक्त, अव्वल नंबर,
0: जी
1: देव साहब का ऑफिस खीरा नगर सेंटाक्रूज में भी था,
0: जी
1: जहां मैं कई बार उनसे मिला भी था,
0: जी
1: उनका आनंद डबिंग भी था,
0: जी
1: और महबूब स्टूडियो में वहां भी एक उनका कमरा था जहां पे वो अक्सर बैठते थे बैंड्रा में। मुझे उन्होंने सूचना मिली तो मुझे उन्होंने वहां बुलाया था। वो शायद उसके बाद वो कहीं लंदन जाने वाले थे, लेकिन
0: जी
1: उससे पहले उन्होंने अव्वल नंबर फिल्म की उन्होंने बातचीत चल रही थी, तो मुझे भी उन्होंने वहां मिलने के लिए बुलाया। तो मैं वहां गया था तो मुझे उन्होंने एक रोल ऑफर किया जो एक पुलिस वाले का रोल था।
0: अच्छा
1: तो वो मैंने उनसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहा, मैंने कहा देव साहब मुझे पुलिस वाले का रोल नहीं करना है, इट्स द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, तो मैं एक पुलिस वाले का रोल करके मतलब
0: उसी
1: इट इज
0: लूप
1: नॉट
0: में
1: मुझे
0: फंस
1: मुझे हाँ ऐसा लग रहा
0: जाएंगे।
1: था। उस फिल्म में आमिर खान साहब कास्ट हुए थे, और उन्होंने मुझे कहा रायना आई एम रोल रियली सॉरी आई कांट गिव यू दैट। मैंने उनको कहा था कि वो जो सेकंड लीड रोल है, जो नेगेटिव रोल था, तो मैंने कहा था वो मुझे आप दे दीजिए ना इस फिल्म के लिए, तो मुझे वो पुलिस वाला रोल नहीं करना है। कहता आई एम सो सॉरी रायना, आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस आदित्य अबाउट दैट रोल।

0: money I have to give it to him. I cannot go back on my promise. So, well, you better do that one. That's a good role of a policeman. So, तो मैं बहुत उनका फैन था, बहुत जबरदस्त फैन रहा हूँ उनकी फिल्मों का भी. तो इस तरह से उन्होंने मुझे जवाब दिया. तो मैं फिर थोड़ा सा मेरा, मैंने कहा ये पुलिस वाला रोल मुझे नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो मैंने कहा कोई बात नहीं देव साहब, मैं आपके साथ में नेक्स्ट फिल्म में ही काम करूंगा. इस फिल्म में पता नहीं ये क्या था, मुझे मालूम नहीं, ये मेरी अब मैं अगर को कहूँ गलतियां थी, लेकिन उस वक्त मुझे सही लगता था. मुझे लगता था कि मेरा करियर का बिगिनिंग है, मेरा कोई है नहीं, मुझे वन ऑफ द लीडिंग रोल करना चाहिए, चाहे नेगेटिव रोल में. नेगेटिवली मेरा बहुत अच्छा एक शौक था कि मैं नेगेटिव रोल्स करूं. मेरी आवाज और मेरी पर्सनालिटी और मेरी आंखों की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि नेगेटिव रोल विल सूट मी. तो उन्होंने जब वो कहा कि मुझे आदित्य को प्रॉमिस किया है, तो मेरा फिर दिल थोड़ा सा वो हो गया,
1: फिर से टूट गया,
0: फिर थोड़ा सा वो हो गया कि हाँ, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आपका कोई होना चाहिए. देर हैज टू बी सम सपोर्ट. जैसे आप तो जानती हैं, इतिहास भी जानती हैं कि बहुत सारे लोगों को लॉन्च उनके घर वालों ने ही किया हुआ है. मैं किसी का नाम नहीं ले रहा
1: जी,
0: लेकिन किया तो है ना हमारा, मेरा ऐसा कोई था नहीं. कुछ लोगों को लेकिन भाग्य के अंतर्गत मिला भी है, जिनका कोई गॉडफादर नहीं था उनको भी मिला है
1: जी.
0: लेकिन मेरे साथ में ऐसा हुआ. फिर उसके बाद देव साहब से अक्सर मिलना होता था, मुझे कश्मीरी बुलाते थे, कश्मीरी. जो कि म्यूजिक से भी मेरा रिलेशन था, तो इसलिए मैं म्यूजिक के प्रोग्राम भी करता रहता था, मैं शोज भी करता रहता था.
1: अच्छा,
0: जैसा आपने अंदाजा लगा एक्टिंग, और किशोर कुमार साहब हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं, तो इसलिए जैसे वो एक्टिंग और सिंगिंग दोनों करते थे, तो ऐसा ही हमारा भी कुछ वैसा ही था
1: जी.
0: लेकिन अब अच्छी अच्छी फिल्में कुछ, मैंने वीर ज़ारा, मुझे यश चोपड़ा जी के साथ में काम करने का मौका मिला. और उस कव्वाली में उन्होंने अपने किसी मित्र से कहा था कि मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए जो जिसको म्यूजिक का नॉलेज हो. तो मेरे साथ में यश जी के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स की गई फिल्म सिटी में. तो वहाँ उन्होंने मुझे, आई वॉज कॉल्ड 10 बजे, मुझे उन्होंने फिल्म सिटी बुलाया था. तो मैं वहाँ ड्राइव करके आया, तो वो भी आए मेरे साथ में. तो यश जी से उन्होंने मुलाकात करवाई, तो उन्होंने मुझे पूछा अच्छा कश्मीर के हो, अच्छा अच्छा म्यूजिक आता है वो ये. तो फिर उन्होंने मुझे वो उस वीर ज़ारा में उन्होंने मुझे कास्ट किया. उस कव्वाली है बहुत अच्छी, अहमद हुसैन मोहम्मद हसन की गाई हुई, आया तेरे दर पे दीवाना, ये सुना सकते हैं
1: थोड़ा सा आप गा के? नहीं, आप थोड़ा, वही मैं कहने आई थी, आप थोड़ा गा के सुना दें, तो आगे वो कव्वाली हम हमारे श्रोताओं तक पहुंचा देंगे.
0: जो बन

0: तो इस पे मैंने एक्टिंग की है, तो मुझे खुशी तो इस बात की थी कि यश चोपड़ा जी मेरा नाम लेके मुझे एड्रेस करते थे, रहना चलो अब तुम्हारे शॉर्ट्स ऑन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। सरोज जी वहां से कोरियोग्राफ कर रही थी, तो हाँ पंकज जी रहना जी चलिए अब आपकी शॉर्ट्स लेने, तो इस तरह से नहीं ये लोग जब मुझे एड्रेस करते थे आई यूज टू फील रियली गुड अबाउट इट। एंड तो वो कवाली हुई उसमें, उस पर मैंने एक्टिंग की। उसके बाद कई और फिल्में, अभी मेरी एक फिल्म आने वाली है आमिर खान प्रोडक्शंस की, बंटवारा 1947, जिसका
1: अच्छा
0: नाम पहले लाहौर 1947 था,
1: अच्छा
0: अब उसमें सनी देओल और शबाना जी हैं, राजकुमार संतोषी डायरेक्टर हैं,
1: जी
0: आमिर खान प्रोड्यूसर है, मेरा भी बहुत अच्छा है उसमें किरदार है,
1: जी
0: सनी के साथ बहुत सारे अच्छे हमारे साथ के रोल्स हैं। वो 14 अगस्त को रिलीज हो रही है, वो देखिएगा। और एक मेरी वेब सीरीज ऑन एयर है जियो हॉट स्टार पे, लुटेरे,
1: अच्छा
0: और तनाव भी एक वेब सीरीज जो सुधीर मिश्रा ने की है, वो हंसल मेहता की प्रोडक्शन है।
1: जी,
0: तो इस तरह की इस सेटअप में मेरे कुछ चीज़ें
1: आपको
0: हैं
1: आने
0: अवेलेबल।
1: वाली फिल्म और सीरीज के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई।
0: बहुत बहुत
1: और
0: शुक्रिया।
1: जी, अभी है ना, हमारे बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, गढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हमारे सामने जो इतना बड़ा आर्टिस्ट बैठा है, जिसके पास में संगीत का भी ज्ञान है, आवाज का भी ज्ञान है, जिनके पास दिग्दर्शन का भी ज्ञान है तो निर्देशन का भी ज्ञान है,
0: जी
1: जिनको पता है कि किस तरह से किस अभिनय को करना है, जो नेगेटिव किरदार
0: बिल्कुल
1: भी कर सकते हैं, जो मस्ती भरे माहौल में भी जी सकते हैं, इस सब का निचोड़ एक कुछ ऐसा हमारे श्रोताओं के लिए मिल जाए आपकी बातों से, आपके जज्बात से, ताकि हमारे जो श्रोता हैं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वो आपकी उन बातों का सहारा लेकर आगे बढ़ सकें। तो एक कोई संदेश, एक कोई बात, एक कोई सीख हमारे आगामी पीढ़ी के लिए, या जो श्रोता भी इस राह में संघर्षरत हैं वो भी ये काम कर सके।
0: मैंने जैसे पहले भी आपसे जिक्र किया कि ये जो कला क्षेत्र है, इसमें ये तो एक तपस्या की तरह है।
1: जी
0: कला क्षेत्र में जब तक इंसान तपस्या भाव से इस फील्ड में नहीं आता, तो वो भाग्य के द्वारा हो भी सकता है, बन भी सकता है, लेकिन है तो तपस्या।
1: जी
0: आपकी चीज़ों का सराहा तभी जाएगा जब आप उस तरह का एक्ट करेंगे, उस तरह का गाएंगे, उस तरह का संगीत निर्देशन करेंगे।
1: जी
0: और उन सब चीज़ों के लिए तो स्टडी और दीवानगी की जरूरत तो होती है। आपको
1: बिल्कुल
0: मीडियम का कितना ज्ञान है, उसमें आपकी कितनी दीवानगी है,
1: जी
0: आपने अपने आप को उसमें कितना
1: ढाला है
0: एनग्रॉस किया हुआ है, उसमें
1: जी
0: ढाला है, तो वो सब तो नए लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए तो ऐसा ही है कि वो दीवानगी की तरह से ही करेंगे, तब जाके होता है, तब
1: जी
0: जाके आपको सराहा जाएगा। अदरवाइज
1: अगर वो
0: भाग
1: हारते हैं, टूटते हैं तो क्या करें?
0: नहीं, हारना टूटना नहीं होता। देखिए अगर आप सोच लेते हैं कि दीवानगी मतलब एक चीज ये करनी है तो करनी ही है,
1: जी
0: अब उसका निष्कर्ष कुछ भी निकले, उसको जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये एक श्लोक है,
1: जी
0: इसका एक्चुअल अर्थ ये है कि मेरा काम है कर्म करना, फल की इच्छा भी नहीं करना।
1: जी
0: तो हमको कर्म लगातार करने हैं, बिकॉज ये एक इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ वन जन्म। मुझे
1: जी
0: लगता है जन्म जन्मों की तपस्या के बाद अमिताभ बच्चन बनते हैं,
1: जी
0: जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद इतने बड़े बड़े महान कलाकार बलराज सहनी जैसे होते हैं,
1: जी
0: जो मतलब अपनी छाप छोड़ जाते हैं सदियों तक।
1: जी
0: तो वो एक इट्स नॉट, अगर 13 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को इंडियन कैप मिलेगी, तो वो जन्मों जन्मों के कर्म होते हैं।
1: जी
0: ऐसा कौन सा चीज उन्होंने सीख लिया कि वो सचिन तेंदुलकर बन गए? लता जी 11 साल की उम्र में उनको
1: जी
0: सक्सेस मतलब गाने का मौका
1: बिल्कुल
0: मिला और वो आगे बढ़ी और सारा जीवन 94-95 की एज तक गाती रही।
1: जी
0: मुझे लगता है कि इट्स ए कर्मा, इट
1: जी
0: इज द डेडिकेशन विच मैटर्स अ लॉट। आप अपने आप को निखार सकते हैं, कुछ चीजें बना सकते हैं, कुछ चीजों की त्रुटियों को खत्म कर सकते हैं,
1: जी
0: बट बेसिकली वो डेडिकेशन और वो जुनून जब तक नहीं होगा आप में, तो और आपने

0: उसके लिए कुछ वैसा सेक्रीफाइस नहीं किया होगा ना, तो
1: जी
0: होता नहीं है। तो इट हैज टू बी डन विद द डेडिकेशन, टोटल डेडिकेशन।
1: बहुत मेहनत करनी
0: टूटना
1: पड़ेगी,
0: नहीं होता है।
1: टूटना नहीं है जी। तो जब आपका इतना अच्छा विचार हमारे श्रोताओं तक जा रहा है, तो एक कोई बात, एक कोई बड़ा सुंदर सा किस्सा और एक गीत, इतनी अपेक्षा तो हम आपसे कर सकते हैं।
0: चलिए मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से, जैसे मैंने बताया कि मेरे घर का माहौल बिल्कुल कल्चरल हब जैसा था, पेंटिंग
1: जी
0: भी थी, म्यूजिक भी था, शायरी भी थी, ये सब था।
1: जी
0: मैं जब रफ़ी साहब और किशोर कुमार और मुकेश जी, जो तीन बड़े जो
1: दिग्गज
0: स्टॉलवॉर्ट्स हैं,
1: कहा
0: मतलब
1: जी
0: इतने
1: उनको।
0: बड़े दिग्गज
1: जी
0: जो मेल सिंगर्स हुए हैं,
1: जी
0: उन तीनों का मेरे जीवन पे बहुत असर रहा है। बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग देयर म्यूजिक, और मैंने उनकी सिंगिंग की स्टाइल्स और अदायगी पे, जो लटके खटके झटके सब सबको मैंने शुरू से मैंने शोध किया, उस पर रिसर्च किया कि उनका क्या क्या कैसे कैसा स्टाइल है। फिर इस दौरान एक बीच में, ये तो गुरु हैं ही हमारे तीनों, और मेहदी हसन साहब भी बहुत अच्छे हैं,
1: जी
0: उनका भी, वो भी हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं। एक और शख्स बीच में आए जिनका नाम था भूपेंद्र। तो
1: जी
0: भूपेंद्र पहले वो भी आकाशवाणी में कार्यरत थे,
1: अच्छा जी
0: दिल्ली रेडियो में काम करते थे ये, और
1: जी
0: 12 स्ट्रिंग एकॉस्टिक गिटार बजाते थे। और
1: अच्छा
0: मदन मोहन जी एक बार दिल्ली गए थे, तो उन्होंने उनसे मुलाकात करके उन्होंने बम्बई बुला लिया भूपेंद्र को।
1: अच्छा
0: तो चेतन आनंद साहब की फिल्म थी हकीकत, उसमें भूपेंद्र को उन्होंने एज ए म्यूजिशियन उन्होंने गाया भी है,
1: जी
0: वो हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, उसमें पहला
1: हाँ
0: अंतरा भूपेंद्र ने गाया है।
1: अच्छा
0: मैं बड़ा प्रभावित हुआ था भूपेंद्र की आवाज़ से, बहुत ही अलग तरह की आवाज़ थी,
1: जी
0: बहुत ही अलग तरह का उनका एक टोनल क्वालिटी थी,
1: जी
0: और एकदम बेस वाली और कमाल की आवाज़ थी। तो
1: जी
0: मैं पता नहीं क्यों शुरू से जब छोटा ही था तो बहुत प्रभावित हुआ उनकी आवाज़ से, उनके गीत गाता था उन दिनों, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात
1: क्या
0: दिन,
1: बात है
0: मौसम फिल्म का गाना
1: जी।
0: उनका आया, गरौंधा का एक अकेला इस शहर में, इस तरह के कई गाने उनके, भूपेंद्र जी के उन दिनों आते थे। तो मैं सब पिकअप करता था, सब सुनता था, गाता भी था। एक बार बड़ी चाहत हुई, मैं बॉम्बे आया तो मैं भूपेंद्र से मिलूं।
1: जी
0: तो वो उस वक्त पाली हिल बैंड्रा में रहते
1: जी
0: थे, हाईलैंड बिल्डिंग का नाम था।
1: जी
0: तो मैं उनसे मिलने एक बार आ गया, तो मिलने आया तो मैं लिफ्ट के बाहर खड़ा हूँ, तो लिफ्ट खुली तो अंदर से भूपेंद्र बाहर आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो आपसे ही मिलने आया हूँ। बोले कहाँ से आए? मैं बोला कश्मीर से आया हूँ।
1: जी
0: तो बोला चलो चलो चलो ऊपर। फिर
1: मिलने की
0: ऊपर
1: चाहत ने मिला
0: नहीं,
1: दिया,
0: मैं मिलने गया ही था उनसे, तो देखा
1: पर
0: तो वो अंदर से
1: लिफ्ट
0: आ,
1: में ही मिल
0: लेकिन वो
1: गए।
0: नीचे ही मिल गए।
1: जी
0: तो
1: जी
0: फिर उनके साथ ऊपर उनके घर पे गए, तो वहां पे फिर बोला अच्छा बताओ क्या क्या है वो, ये बातें बातें हुई। फिर उन्होंने गिटार उठा ली, तो साथ में हम लोग, मैं और भूपेंद्र जी, मैं उनको सुनाता रहा उनके गाने,
1: जी
0: तो बहुत खुश हुए। बाद में वो बहुत मिलते थे, अक्सर उनसे मिलना होता था। राम लक्ष्मण जी ने से भी, उनसे भी मिलना होता था। राम लक्ष्मण जी ने भी कहा मेरे पास नया भूपेंद्र आ गया है, इस तरह की बातें। तो मेरे जीवन में इस तरह के कुछ अच्छे किस्से हैं जो
1: जी
0: महान महान लोगों से मिले भी हैं।
1: जी
0: तो बॉम्बे जब आए थे शुरू शुरू में, तो हमारी कश्मीरी पंडित एसोसिएशन है यहाँ पे,
1: जी
0: तो उनका फंक्शन था, तो मुझे उन्होंने कहा कि एक गाना सुनाओ जैसे आप कह रही हैं।
1: हाँ
0: तो मैंने पहला गीत यही गाया था,
1: तो
0: जो
1: जरा
0: मैं दो लाइन आपको सुना के।

0: श्री पंकज रैना जी हमारे समक्ष हैं और उनके जीवन की बहुत सारी बातें हमने सुनी, संघर्ष को भी सुना और जीत को भी सुना, बहाव के साथ बहने को भी सुना और जीतने को भी सुना, और जहां नहीं जीते वहां अडिग खड़े रहने को भी सुना। ये सब सुनने के बाद जब पंकज जी हमारे सामने आए हैं, विविध भारती तक आए हैं, तो बहुत बड़ा परिवार है पंकज जी विविध भारती का।
1: जी
0: इसमें केवल उद्घोषक नहीं है, उद्घोषकों के साथ में बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पीछे से परोक्ष में रहकर बहुत सारा काम करते
1: जी जी
0: हैं,
1: जी मैं अंडरस्टैंड
0: और
1: करता
0: इन
1: हूँ।
0: सब के साथ बहुत सारे श्रोता हैं जिन्हें हम गिन नहीं
1: वाह,
0: सकते। तो उस बड़े से परिवार की तरफ से हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप यहां तक आए, इतना साथ दिया, और बहुत आभार व्यक्त करते
1: मैं
0: हैं।
1: अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे याद किया और मैं यहाँ चला आया, और मुझे अपनी जड़ों से, अपने रूट से, अपने कश्मीर से, अपने दिल्ली की यात्रा से और बम्बई की यात्रा से मुझे कुछ कहने का, साझा करने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत दिल से, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे आज इस जगह पे मुझे बुला के बहुत ही एकदम आत्मविभोर कर दिया। मैं
0: बहुत
1: बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ।
0: धन्यवाद।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डायरेक्टर, एक्टर और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना से विधि जैन की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज

रंग तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी और आप सभी को हमारा नमस्कार। सबसे पहले अलका याग्निक और हरिहरन की आवाजों में ये गाना, जावेद अख्तर के बोल, संगीत राजू सिंह का, एल्बम तुम आए।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जगमोहन सुरसागर की आवाज में ये गीत एल्बम द बेस्ट ऑफ जगमोहन।

रंग तिरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अदनान सामी की आवाज में तेरा चेहरा। इस एल्बम का गाना समीर के बोल, संगीत है अदनान सामी का।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: तिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: पंकज उधास की आवाज, शब्दकार शेवन बिजनोरी, संगीत पंकज उधास का, एल्बम मुस्कान।

0: रंग तरंग।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल। शायर हैं अमीर मिनाई, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम खामोशी।

काले वस्त्र पर मिलने के सवाल, मिलने की जब रिक्वेस्ट की, डेट मांगी कि लेट्स मीट समवेयर, सवाले वस्त्र पर उनको उदू, उदू है आपका राइवल जो है, कंपटीटर, हर फिल्म में एक जो विलन होता है वो उदू होता है, दुश्मन को भी कहते हैं उदू, सवाले वस्त्र पर उनको उदू का खौफ है इतना।

0: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में ये गाना समीर के बोल संजीव दर्शन का संगीत एल्बम तलाश।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत पोहनकर की आवाज में ये गीत। एल्बम का नाम पिया बावरी, गीत और संगीत अजित अभिजीत पोहनकर का।

0: विमलेश का प्यार भरा
1: और
0: नमस्कार।
1: अजीत का भी जोहार और नमस्कार। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
0: सूर्य बिना कुछ मांगे हमें प्रकाश देता है, नदी बिना भेदभाव जल देती है, वृक्ष पत्थर खाने पर भी फल देते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने दिया, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है।
1: बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है।
0: जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, इसी प्रकार प्रकृति भी हमें बस देती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का।
0: शेरी वर्नेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
1: और केंद्र पाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक।
0: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी जी ने लिखा है।
1: उन्होंने लिखा है, धैर्य रखें, कठिन समय भी सरल हो जाएगा।
0: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन और ईशांत देवांगन।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। स्वागत एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, भूगोल, इतिहास और अनेकों ज्ञान की शाखाओं की मनोरंजक जानकारियाँ।
1: तो विमलेश जी, आज हमारी बातचीत का विषय क्या रहेगा?
0: अजीत जी, मैं सोच रही थी जानकारियाँ तो हम इस श्रृंखला में देते ही रहते हैं, लेकिन पिछले सप्ताह प्राप्त संदेशों से पता चलता है कि हमारे श्रोता प्रेरक प्रसंग भी बहुत पसंद करते हैं।
1: जी हाँ, ये तो है।
0: तो क्यों न आज और कल कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए जाएं?
1: नेकी और पूछ पूछ, विमलेश जी आपने बिल्कुल सही कहा। जीवन में प्रेरक प्रसंगों से भी हमें बहुत सहायता और संबल मिलता है। तो बताइए जरा श्रोताओं को कि हमारा आज का प्रेरक प्रसंग क्या रहेगा?
0: अजी जी, आज बात करते हैं एक तितली के संघर्ष की।
1: वाह क्या बात है, एक तितली के संघर्ष की।
0: श्रोताओं, आज हम आपको एक छोटी सी तितली की कहानी सुनाने जा रहे हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, ये कहानी लंदन की प्रसिद्ध बाल पत्रिका किड्स वर्ल्ड में छपी थी। शीर्षक था द बटरफ्लाई एंड द कुकून। ये कहानी केवल एक कीट की नहीं बल्कि हम सबके जीवन की कहानी है।
0: जी
1: श्रोताओं, कहानी कुछ इस प्रकार से है।
0: एक दिन एक व्यक्ति अपने बगीचे में टहल रहा था। उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर लटके एक छोटे से कुकून पर पड़ी, यानी रेशम के कोए पर पड़ी। उसने देखा कि कुकून के भीतर एक प्यूपानुमा तितली बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी।
1: श्रोता, वो व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगा।
0: जी
1: उसने देखा कि वो तितली एक बहुत छोटे से छेद से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार जोर लगाती और फिर रुक जाती। कुछ देर के बाद फिर पूरी ताकत से प्रयास करती। ये संघर्ष कई घंटों तक चलता रहा। विमलेश जी, आगे क्या हुआ?
0: जी जी जी जो हुआ वो बहुत ही अजीब हुआ। उस व्यक्ति ने सोचा कि तितली थक गई है, वो बेचारी अब बाहर निकल ही नहीं पाएगी। उस व्यक्ति का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा, बेचारी तितली कितना संघर्ष कर रही है, यदि मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं तो इसका कष्ट समाप्त हो जाएगा।
1: श्रोताओ, ऐसा सोचता हुआ वो अपने घर गया, एक छोटी सी कैंची लाया और बहुत सावधानी से कुकून का छेद थोड़ा सा बड़ा कर दिया।
0: जी
1: अब वो तितली बिना किसी कठिनाई के बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उस व्यक्ति ने देखा उसका शरीर फूला हुआ था और उसके पंख छोटे और सिकुड़े हुए और बहुत ही कमजोर थे।
0: उसे लगा कि बस कुछ देर की ही तो बात है, कुछ ही देर में पंख फैल जाएंगे और तितली उड़ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तितली जमीन पर ही रेंगती रही, वो कभी उड़ न सकी और कुछ ही दिनों में उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई।
1: जी हाँ श्रोताओं, उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने एक और कुकून देखा जिससे तितली निकलने का प्रयास कर रही थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी
0: जी।
1: बार बार प्रयास करती पर थक कर रुक जाती। अब की बार इस व्यक्ति ने सोच लिया था कि वो तितली की कोई मदद नहीं करेगा।
0: कई घंटों के बाद जब वो तितली बाहर आई तो उस व्यक्ति ने देखा कि वो शानदार रंगों वाली एक बेहद सुंदर तितली थी। वो थोड़ी देर रेंगी, फिर पंख फैलाकर उड़ गई।
1: श्रोताओं, उस व्यक्ति ने अपनी कहानी में लिखा, मुझे अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि प्रकृति ने तितली के लिए यह संघर्ष जानबूझकर रखा था।
0: जी।
1: जब तितली उस छोटे से छेद से बाहर निकलने का प्रयास करती है तब मेहनत के कारण तो उसके शरीर का द्रव उसके सिकुड़े हुए पंखों में पहुंचता है। इस द्रव को हीमोलिम्फ कहते हैं।
0: और यही द्रव

0: पंखों को मजबूत और उड़ने योग्य बनाता है। यदि तितली संघर्ष न करे तो उसके पंख कभी विकसित ही नहीं हो सकते।
1: तो विमलेश जी, इस घटना का सारांश क्या बनता है?
0: अजीत जी, जिस दया को उस व्यक्ति ने सहायता समझा था, वही तितली के जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गई। एक विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो रातों की मेहनत, असफलताओं का डर और लगातार अभ्यास, यही संघर्ष उसे सफल बनाता है।
1: और ठीक इसी प्रकार विमलेश जी, जब एक खिलाड़ी रोज घंटों पसीना बहाता है तो वही संघर्ष, वही अभ्यास उसे विजेता बनाता है।
0: एक किसान तपती धूप में खेत जोतता है तभी उसकी फसल लहलहाती है। जी हाँ श्रोताओ, खासकर अपने विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति का नियम है, बिना संघर्ष के न शक्ति मिलती है न सफलता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है वही महान बने हैं।
1: श्रोताओं, आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में जानते हैं। उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष किया, लेकिन हार नहीं मानी।
0: जी
1: हेलेन केलर ने जीवन भर दिव्यांगता का सामना किया, लेकिन संघर्ष के कारण वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।
0: हम सभी नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं। उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए, लेकिन उनका संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक बन गया।
1: जी हाँ विद्यार्थी मित्रों, यदि इन लोगों के जीवन से संघर्ष निकाल दिया जाए तो शायद दुनिया इन्हें कभी याद भी न रखे।
0: जी
1: तो प्रिय मित्रों, यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, यदि लगता है कि बार बार असफलता मिल रही है,
0: तो निराश मत होइए। हो सकता है शायद जीवन आपको उड़ने के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखिए, कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और तितली संघर्ष करके ही उड़ना सीखती है।
1: तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। श्रोताओं, हमारा आज का प्रश्न है, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो प्रारूप में यानी ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं तो जाइए NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और इसी ऑफिशियल चैनल पर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों को सुन सकते हैं। श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल चक्र की कहानी।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय नट और नटी के तुकांत नाट्य प्रारूप में जल चक्र की कहानी को कविता और ताल वाद्य की मजेदार संगत से बताया गया है और बच्चों को जल संरक्षण की प्रेरणा दी गई है।
1: पानी रे पानी, जल चक्र पर कविता।

0: सोनी जल्दी उठ जा बेटी, भीड़ हो जाएगी।
1: मम्मी सोने दो ना, ये भी कोई समय है उठने का? अभी तो सुबह के 3:30 ही बजे हैं।
0: अरे बेटी, 2 दिनों से पानी नहीं आया है। हमारे सामुदायिक रेडियो पर मैसेज आया था कि मोहल्ले में आज सुबह 4 बजे टैंकर से पानी दिया जाएगा। चल तैयार हो जा, मैं भी बाल्टी ले लेती हूँ।
1: माँ भैया को भी ले चलते हैं ना?
0: अरे उसे सोने दे, भैया थका हुआ है। इन दिनों स्कूल में फुटबॉल मैच चल रहे हैं ना, कसरत करने भी तो जाता है कितनी।
1: माँ मैं भी तो स्कूल जाती हूँ और आपके साथ साथ घर का सारा काम भी कराती हूँ, क्या भैया ही थकता है बस?
0: ओहो अब चल भी, बहस मत कर।
2: नहीं माँ, इस बार मेरी बारी, अगली बार भैया की बारी, ठीक है?
0: ठीक है बाबा ठीक है, अब चल भी बहस मत कर।
1: ठीक है चलो।
0: अरे तू कहाँ से आ गई?
3: तो साथियों, ऐसा दृश्य थोड़े बहुत अंतर के साथ दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिल जाएगा। आए दिन अलग अलग समाचार माध्यमों से सूचनाएं मिलती हैं कि जलाशय सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं।
0: जी हाँ, इसी तरह सोनी के मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में अक्सर पानी की समस्या बनी रहती थी और हर बार वही क्रम चलता रहता था। वही क्रम यानी सोनी शाम को रेडियो सुन रही थी।
4: नमस्ते, हमारे कम्युनिटी रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट गौहर परवेज। शनिवार को संध्या 7 बजे हरित नगर कम्युनिटी हॉल में आप सबका रहेगा इंतजार। हम लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए एक बेहद खास प्रोग्राम, पानी रे पानी। बेहद खास इसलिए कि उस दिन आप मिल पाएंगे अपने चहेते रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी से। तो आइएगा जरूर।
0: बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि प्रोग्राम में आ रहे थे उनके प्रिय रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी। इनका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है।
5: अरे आ गए, देखो।
0: अरे देखो, आ गए।

0: तो प्यारे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी
1: और मैं हूँ झुमरू।
0: नमस्कार।
1: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
1: किस पर?
0: पानी पर।
1: पानी पर? क्यों?
0: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
1: हाँ, बड़ी तो है। अब देखो ना, इन बच्चों को सुबह सुबह 3-4 बजे पानी लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्यों बच्चों, है ना यही बात?
2: हाँ, ये बात तो है,
3: पानी की समस्या तो है, हम तो परेशान हो गए हैं।
1: तो बच्चों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा जल चक्र।
2: जल चक्र?
1: हाँ, तो आज हम खेलेंगे भाषा का खेल, जिसमें आपको करना है शब्दों का मेल।
0: तो चलो शुरू करें।
1: चलो झुमकी।
0: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ। सूरज निकला चमचमाया, धूप ने फिर जल को तपाया, आगे जोड़ो झुमरू जी और वो भी ताल में।
1: हाँ हाँ, जोड़ता हूँ मैं, ये लो बात ध्यान से मेरी सुन लो। नदियों तालों का जल उड़ाया, पाप बन जल ऊपर आया।
0: झुमरू जी ने तो कमाल कर दिया। अब ये भी लीजिए, जब भाप बनी तब बादल छाए, नील गगन में झूले खाए, जब लग गए बूंदों से बादल, भारी हो गए तब बादल। तालियां।
1: रिमझिम रिमझिम वर्षा आई, चहुं ओर हरियाली छाई।

0: नदियों में बह पानी जल चक्र की है ये कहानी।
1: इसके बाद क्या हुआ झुमरू जी?
0: बताते हैं सुनिए। पानी फिर से सागर जाता, बार बार यही क्रम दोहराता।
1: क्या बात है। सूरज भाप बादल वर्षा का जल चक्र यूं चलता जाता। सभी बोलेंगे जल चक्र यूं चलता जाता।
0: तो बच्चों कैसा लगा भाषा का ये खेल?
2: बहुत अच्छा।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी जल चक्र की कहानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो बारिश का दिन।
4: ये कार्यक्रम एक रोचक नाटक के द्वारा वैज्ञानिक खोज की जानकारी देते हुए बताता है कि ज्वर मापी यंत्र थर्मामीटर का आविष्कार कैसे हुआ।
5: तनु माँ के साथ छुट्टियों में नाना जी के पास आई हुई है। तनु के नाना जी आजकल तनु के साथ छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, पर अब रिटायर हो चुके हैं और सुबह शाम कुछ समय के लिए घर पर ही मरीजों को देखते हैं। नाना जी के साथ तनु रोज सैर करने जाती है, पर आज बारिश के कारण दोनों घर में बैठकर कैरम खेल रहे हैं।
6: ये मारा। हरा दिया, हरा दिया।
7: वैसे तनु, हाँ बारिश ने तो हम दोनों को घर पर ही रोक रखा है।
8: जी,
7: पर कैरम का खेल खूब जमा। न जाने कितने समय के बाद कैरम बोर्ड को हाथ लगाया आज मैंने, फिर भी एक खिलाड़ी को हरा दिया।
8: नाना जी, मैं तो हार कर भी जीत गई हूँ।
7: ये कैसी अजीब बात है।
8: देखिए ना, आप चाहे हारे या जीते, हर बार आपको मुझे कहानी सुनाने का इनाम तो देना ही पड़ता है।
7: ये बात तो है। अच्छा ठीक है, ये बताओ आज कौन सी कहानी सुनोगी, परियों की या जादूगर की?
8: ना परियों की ना जादू वाली, मुझे तो वैसी ही कहानी सुनाइए जैसे हर दिन सुनती हूँ मैं आपसे।
7: अच्छा बेटा तनु, तेरे डॉक्टर नाना के पास तो बीमारी, रोगी और उनके स्वस्थ होने की कहानियाँ ही है बस।
8: लेकिन एक बात तो है, आपकी कहानियाँ परियों की कहानी से अधिक रोचक और मजेदार होती हैं।
7: अच्छा।
8: हाँ और क्या, तो सुनाइए ना, जल्दी सुनाइए।
7: हाँ बेटा सुनाता हूँ। अरे सोचने तो दो,
8: जल्दी
7: सोचिए। मैं किसकी कहानी सुनाऊं देखो।
8: अरे जीवन काका।
7: अरे अरे आओ जीवन, क्या बात है भाई?
9: बाबूजी, आज सुबह से बुखार सा लग रहा है, सिर में भी दर्द है।
7: बुखार? अरे भाई बारिश में भीग तो नहीं गए कहीं? आओ आओ अभी देखता हूँ, आओ इधर आओ।
9: जी
7: यहाँ लेट जाओ।
9: जी
7: लग रहा है बुखार। अरे बेटे तनु,
8: जी
7: जरा अंदर से थर्मामीटर तो ले आओ।
8: जी अभी लाई।
7: हाँ हाँ खांसी भी है तुम्हें, जरा जबान दिखाओ तो।
9: जी
7: पेट भी गड़बड़ है तुम्हारा तो। एक मिनट देखो, ये बारिश की वजह से हुआ है
9: जी।
7: पहली बारिश में थोड़ा सावधान रहा करो।
9: जी जी जी जी।
7: अरे बदलते मौसम का असर तो होता ही है ना भाई जीवन।
8: जी जी नाना जी।
7: हाँ ला बेटा ला। जीवन
9: जी
7: जरा मुंह खोलो, लो इसे जीभ के नीचे रख लो।

डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देखा तो हल्की हरारत थी। उन्होंने जीवन काका को

0: दबा दी और आराम करने के लिए कह दिया। जीवन चला गया। नाना जी को लगा जब वो थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देख रहे थे तो तनु कभी उन्हें और कभी थर्मामीटर को ध्यान से देख रही थी।
1: अरे तनु
2: जी,
1: क्या बात है, कोई कहानी सोच रही है अपने नाना को सुनाने के लिए है?
2: नाना जी, मैं सोच रही थी जब पुराने समय में थर्मामीटर नहीं थे तो डॉक्टर मरीज का बुखार कैसे नापते थे?
1: बेटी तनु
2: जी,
1: ये समझ लो कि इसका उत्तर अपने आप में एक मजेदार कहानी है।
2: तो फिर आज वही कहानी सुनाइए ना।
1: सुनो
2: जी,
1: जब थर्मामीटर नहीं था ना, तब डॉक्टर रोगी को छूकर ही उसके ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे।
2: लेकिन अनुमान से शरीर में कितना डिग्री बुखार है ये पता लगाना तो कठिन होता होगा।
1: एकदम ठीक बात कही तूने बेटा।
2: दुनिया का सबसे पहला थर्मामीटर किसने बनाया था
1: ये जानने के लिए तो तुम्हें लगभग 400 वर्ष पीछे इतिहास में जाना होगा। और बिटिया, वो भी अपने देश से दूर विदेश में।
2: तो चलिए ना, मैं तो तैयार हूँ इस इतिहास यात्रा के लिए।
1: चलो। ये यूरोप के एक देश इटली की घटना है बेटा। तब वहाँ एक चिकित्सक थे डॉक्टर सेक्टोरियस
2: जी।
1: दुनिया का सबसे प्रथम थर्मामीटर बनाने का श्रेय उन्हीं को दिया गया है।
2: अच्छा।
1: हाँ, पहला थर्मामीटर देखने में इतना विचित्र था कि जब डॉक्टर इससे किसी रोगी का बुखार देखते तो हंसी आ जाती थी।
2: नाना जी, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे कैसा था उनका बनाया थर्मामीटर?
1: बेटे, एकदम अलग आकार था।
2: अच्छा।
1: बिल्कुल अलग आकार का था ये पहला थर्मामीटर।
2: जी,
1: उससे बुखार देखने के लिए डॉक्टर को पानी में उड़ते बुलबुले गिनने पड़ते थे।
2: अच्छा।
1: अर्थात ज्यादा बुलबुलों का मतलब होता था तेज बुखार। कम बुलबुले हो तो थोड़ा बुखार।
2: लेकिन पानी में उठने वाले हवा के बुलबुलों का बुखार से क्या संबंध हो सकता है?
1: बिटिया रानी, वही मजेदार बात सुनो। वो थर्मामीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था जो बीच में कई जगह मुड़ी हुई थी।
2: अच्छा।
1: हाँ बेटा, उसके एक छोर पर शीशे का एक छोटा सा ग्लोब था।
2: अच्छा।
1: हाँ, और नली का दूसरा छोर खुला हुआ था।
2: वाह, शीशे के ग्लोब वाला थर्मामीटर। लेकिन बुखार कैसे देखते थे उस थर्मामीटर से?
1: बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो
2: जी,
1: जिसे बुखार होता
2: जी,
1: डॉक्टर उसके मुंह में नली का ग्लोब वाला भाग रखते
2: जी।
1: उसके बाद नली का दूसरा छोर एक खुले बर्तन में भरे पानी के अंदर डाल दिया जाता।
2: फिर
1: मुंह में रखा ग्लोब शरीर के तापमान से गर्म होने लगता
2: जी।
1: अब ग्लोब गर्म होता तो उसमें मौजूद हवा भी गर्म होकर फैलने लगती।
2: अच्छा।
1: और नली के मुड़े हुए हिस्से में से होकर दूसरे छोर पर पानी से भरे बर्तन में पहुंचने लगती।
2: लेकिन बुखार?
1: ओहो बेटा, बताता हूँ बताता हूँ, सांस लेने दे बूढ़ा आदमी। सुन ध्यान से
2: जी।
1: तो बेटा, तुम तो जानती हो कि हवा पानी से हल्की होती है ना
2: जी,
1: इसीलिए वो बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर निकलती जाती
2: जी।
1: शरीर का तापमान जितना अधिक होता उतने ही ज्यादा बुलबुले बनते, और डॉक्टर उन बुलबुलों को गिनते रहते।
2: अच्छा।
1: और बुखार का अनुमान लगा लेते। हाँ, लेकिन एक बात।
2: क्या?
1: देखो, पहले प्रयोग के समय देखा जा चुका था
2: जी,
1: कि सामान्य तापमान वाले व्यक्ति के मुंह में ग्लोब से पानी में कितने बुलबुले निकलते थे।

0: बुलबुलों की संख्या जितनी अधिक होती रोगी का बुखार उतना ही तेज होता।
1: बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक।
0: लेकिन बात तो तब भी अनुमान पर ही टिकी होती ना।
1: हाँ बेटा, ये तो बात सही है, क्योंकि तापमान नापने का कोई तरीका तो तब था नहीं।
0: हाँ जी,
1: इस तरह ग्लोब और बुलबुलों वाला थर्मामीटर
0: जी
1: दुनिया का पहला थर्मामीटर माना गया।
0: अच्छा।
1: हाँ बेटा, आधुनिक थर्मामीटर जैसे आकार वाला थर्मामीटर फ्रांस में सन 1654 में बना।
0: जी,
1: समझ गई ना।
0: जी,
1: पर इसमें पारे के स्थान पर अल्कोहल भरा होता था।
0: जी,
1: और तापमान नापने के लिए उस पर मोती लगे होते।
0: अच्छा।
1: आज ऐसे निशान नहीं होते थे बेटा।
0: वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर।
1: नहीं बेटा, वो सच्चे मोती नहीं होते थे, मोती जैसे होते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ बेटा, और फिर 19वीं सदी के आते आते आज के उपयोग में आने वाला थर्मामीटर बना लिया गया।
0: अच्छा।
1: आजकल बिना पारे वाले थर्मामीटर बन गए हैं।
0: जी,
1: इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं।
0: अच्छा।
1: डिजिटल थर्मामीटर से बुखार कितना है ये जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बेटा।
0: जी,
1: लगाते ही डिजिटल थर्मामीटर सही तापमान बता देता।
0: अरे वाह।
1: हाँ। पर बेटा, डिजिटल थर्मामीटर महंगे होने के कारण अभी भी ज्यादा चलन में नहीं है।
0: हाँ, और इस बार जब किसी को बुखार होगा तो हम डिजिटल थर्मामीटर से ही देखेंगे।
1: हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं बेटा। और बेटे, अब नेत्रहीन लोगों को बोलकर बुखार बताने वाला थर्मामीटर भी बन गया है।
0: वाह, क्योंकि नेत्रहीन तो थर्मामीटर पर आई रीडिंग को नहीं पढ़ सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये थर्मामीटर तापमान दिखाता नहीं।
0: जी,
1: बोल कर बतला देता है।
0: नाना जी।
1: हाँ?
0: मैंने देखा है कि छोटे बच्चों का बुखार देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लगातार अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं।
1: सही कह रहे हैं बेटा, लेकिन एकदम छोटे शिशु का बुखार देखने के लिए भी विशेष प्रकार का थर्मामीटर बना लिया गया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, इसे क्या करते हैं कि बच्चे के कान में लगाकर बुखार कितना है ये जान लिया जाता है।
0: अरे वाह।
1: हाँ, और शिशु को जरा भी परेशानी नहीं होती।
0: वाह, ये तो बड़ी मजेदार जानकारी दी आपने नाना जी।
1: है ना
0: जी।
1: अरे बेटा, नाना किसका हूँ।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम वो बारिश का दिन, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना
2: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आपने सुना NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए गृह प्रवेश, इस फिल्म का गाना भूपिंदर की आवाज, बोल गुलजार के संगीत है कनू रॉय का।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

0: गृह प्रवेश फिल्म का ये गाना आपने सुना भूपिंदर सिंह और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में, बोल गुलजार के संगीत कनु रॉय का।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुँचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: हम पंछी एक डाल के, इस फिल्म का गाना आशा भोसले और साथियों की आवाजें, पीएल संतोषी का लिखा हुआ गाना, संगीत एन दत्ता का।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल, और अब किनारा फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाजें, बोल गुलजार के हैं संगीत आरडी बर्मन का।

आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, कण कण में भगवान। इस फिल्म का गाना महेंद्र कपूर की आवाज, भरत व्यास के बोल और संगीत है शिवराम का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

सबसे पहले आज की जो इबारत है जो हमने फेसबुक पर पोस्ट की है वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। कहना है आज तुमसे कुछ कहना है, हाँ मुझे कुछ कहना है। तुम्हारी झुकी झुकी नज़र कहती है तुम मेरे थे और मेरे ही हो। आज तक जो कहा तुमने कहा, फिर दिल ने भी तो दिल से जाने क्या कहा। मैंने तो फूलों से कहा था और चंद्रमा से कहा था कि जाओ उनसे कह दो, पर जाने क्या मैंने कही और जाने क्या उसने सुनी। बात बस कुछ कहने की नहीं है, बात यह है कि हम क्या कहते हैं। हमारे कहने की कुछ सीमाएं हैं, सोच समझ कर कहें। कहे हुए शब्द वापस नहीं आते, उतना ही कहें जिससे आपसी सद्भावना बनी रहे। माँ ने भी यही कहा था, कभी दिल किसी का न तोड़ो। अब ये न कहना कि हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ था अगर कहने पे आते। ये आज की इबारत है या टेक्स्ट है जो हमने विविध भारती का जो फेसबुक पेज है उस पर पोस्ट किया है। बहुत सारे श्रोताओं ने इसे पढ़ा है और बहुत सारी बातें भी लिख भेजी है। एक साथी हमारे लिखते हैं कि कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो दिल के किसी कोने में बहुत देर से चुपचाप बैठी होती है, किसी से कह भी नहीं पाते। कभी लगता है कह दूं तो बोझ हल्का हो जाएगा, कभी डर लगता है कि सुनने वाला समझ पाएगा या नहीं। पर सच ये है कि जो बातें हम नहीं कहते वही हमें सबसे ज्यादा थकाती है। कितना कहना है, किससे कहना है, मन इसी उथल पुथल में रहता है। लेकिन कहना जरूरी हो तो उतना ही कहें जितने से दिल हल्का हो जाए। कही गई बातों के शब्दों की गिनती मायने नहीं रखती, मायने रखती है उन शब्दों की सच्चाई और गहराई जो सुनने वाले पर असर कर जाए। इसलिए आज इतना ही कहूंगा कि जो महसूस होता है उसे दबाइए मत, जो दिल से अपने लगे उन अपनों को बताइए। थोड़ा हंसिए, थोड़ा रोइए और दिल की सुनिए, क्योंकि जिंदगी छोटी है, कहने के लिए कल का इंतजार मत कीजिए। बहुत सुंदर बात आपने लिखी है। एक हमारी साथी ये भी लिख रही हैं कि शब्दों का खेल भी अजीब है, कभी आंखें सब कह देती हैं तो कभी जुबां भी खामोश रहती है। लेकिन बात सिर्फ कहने की नहीं, मर्यादा की है। सोच समझ कर बोले गए शब्दों शब्द दिलों को जोड़ते हैं, जबकि बिना सोचे समझे कही गई बात बरसों के रिश्ते तोड़ सकती है। बड़ों ने हमेशा यही सिखाया है कि वाणी में मिठास रखो और किसी का दिल मत दुखाओ। इसलिए उतना ही कहें जिससे आपसी प्यार बना रहे। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब गाने सुनने की ओर हम रुख करते हैं। कार्यक्रम का जो पहला गाना है ये पड़ोसन फिल्म का गाना है। किशोर कुमार की आवाज से राजेंद्र कृष्ण के बोल है, सुनील दत्त सायरा बानू पर फिल्माया गया है, साथ में किशोर कुमार भी इसमें दिखाई देते हैं। संगीत किसका है ये आपको बताना है। कुछ हमारे आज के जो सवाल हैं वो हम आपसे इस गाने के बाद पूछेंगे।

इस गाने में कहने का जो अंदाज है वो आपने देखा ही होगा, और बड़ा लुभावना अंदाज है कि एक व्यक्ति जो गीत अच्छे से गा नहीं सकता लेकिन उसका दोस्त पीछे से गाता है, और पहला जो दोस्त है वो सिर्फ होठ हिलाता है और इस तरह से बात बन जाती है कहने की। आरडी बर्मन का ये बड़ा ही प्यारा सा संगीत आपने सुना, और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब भी हमें लिख करके भेज दिए। एक हमारी साथी लिख रही कि पहले हमारी दादी माँ कहती थी कि तुम्हारे मन में जो भी बात है तुम वह लिखकर भगवान जी के सामने रख दो चिट्ठी में, भगवान जी तुम्हारे मन की सुन लेंगे, क्योंकि बहुत सी बातें हम किसी से नहीं कह पाते हैं और मन बड़ा भारी रहता है, तो ऐसा करने से मन भी हल्का हो जाता है और एक मन से सोच भी निकल जाती है। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि कहना यानी शब्दों का सफर, दिल की धड़कन की रवानी, कभी कभी मौज मस्ती प्यार की बोली मस्तानी, तो कभी खामोशी से बोली आंखों की जुबानी, मन की फुसफुसाहट की निशानी, तो कभी बुलंद आवाज में की गई देशभक्ति की वो पुकार रूहानी, मुलायम लफ्जों में सांत्वना देती सहानुभूति की निशानी, तो कभी कभी ओजस्वी विचार जो समाज को दे रोशनी। इस तरह कहते कहते बन जाती है जीवन कहानी।

0: बातों को माना भी हो और उन बातों का सामने वाले पर इतना असर हुआ कि उसकी दुनिया है। और बाद में उसने आपसे आकर के धन्यवाद कहा कि आपने इतनी अच्छी बातें मुझसे कही थी और उसकी वजह से हमारे में बहार आई। अगर ऐसी कोई घटना आपको याद आती हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बॉबी फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। इसमें दो आवाज़ें हैं, एक तो लता मंगेशकर की आवाज़ है और दूसरी आवाज़ किसकी है यह आपको बताना है। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया पर फिल्माया गया ये गाना आपको सुनवाते हैं।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम।
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ।

लता मंगेशकर के साथ जो दूसरी आवाज़ है वो शैलेंद्र सिंह की आवाज़ है। आपके सही जवाब हम तक पहुंच गए हैं। एक साथी की ये बात है कि आज की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में सबको बहुत कुछ कहना है पर सुनने का किसी के पास वक्त नहीं है और धीरज भी नहीं है। एक साथी हमारी लिख रही है कि शब्दों का भी तापमान होता है, ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। किसी के बात करने का अंदाज़ इतना मृदुल, इतना मधुर होता है कि लगता है उनका हर शब्द शहद जैसा हो और उनके होठों से शब्द फूलों जैसे झड़ते हैं। मन करता है बस वो कहते ही जाए, कहते ही जाए और हम अपलग से उनको सुनते रहें। वहीं दूसरी तरफ कर्कश व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से हर कोई बात करने से कतराता है क्योंकि उनके शब्द तीर की तरह चुभन देने वाले होते हैं। अतः बात करने का तरीका भी एक कला है कि आप किस तरह अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं जिससे कि मकसद भी जाहिर हो जाए और संबंधों पर भी कोई आँच न आए। जी हाँ, कहने की जो मर्यादा होती है या तरीका होता है बहुत मायने रखता है। हमने आपसे पूछा कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जिससे आपने बहुत कुछ अच्छी बातें कही हो, उसने आपकी बातें मानी हो और उसके बाद उसका जीवन बदल गया हो और उसने आपको आकर के कहा हो कि बहुत धन्यवाद, आपने हमें मुझे इतनी अच्छी जो बातें कही थी उसे मैंने अपनाया। ऐसा कोई उदाहरण है आपके सामने तो हमें बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी और ख्वाब इस फिल्म का गाना, सुमन कल्याणपुर की आवाज़, मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गाना है। गीत और संगीत किसका है आप बताइए हमें।

जिंदगी और ख्वाब फिल्म का ये गाना प्रदीप का लिखा हुआ, दत्ताराम का संगीत। एक हमारे साथी की ये बात कि कहना हमारे हाथों में होता है, पर उन्हीं शब्दों का अर्थ अलग अलग लोग अलग अलग लगा लेते हैं। कहना हमारे हाथ में है, पर उसका सही अर्थ समझना दूसरे के हाथ में है। यही समझ गए तो ठीक, वरना मन मुटाव ही हो जाता है। एक साथी ये भी लिख रही है कि कहना तो सबको होता है, पर सुनने वाला कोई प्यारा सा दोस्त हो तो फिर क्या कहना। कहने को बहुत सारी मस्ती हो सकती है, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा से सब बिगड़ भी जाता है और फिर उदासी आ जाती है हमारे हिस्से में। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि ज़िंदगी में हमेशा बड़े काम ही याद नहीं रहते, कभी कभी किसी के कहे गए दो शब्द भी उम्र भर साथ रहते हैं। इसलिए जहाँ मौका मिले किसी का हौसला बढ़ाइए, किसी की बात सुन लीजिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दीजिए। क्या पता आपकी यही छोटी सी अच्छाई किसी के मुश्किल दिन में थोड़ी सी रोशनी बन जाए। जी हाँ, ऐसा ही होना चाहिए कि कभी कोई मुश्किल में है तो हमारे हौसले से भरे हुए दो शब्द, प्यार के दो शब्द उसके लिए मरहम की तरह काम करते हैं और उसका जीवन संवर जाता है। तो ऐसा भी होता है। हमने आपसे पूछा कि ऐसा कोई उदाहरण हो तो आप हमें बताइए, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपने नहीं लिखा है। चलिए हम आपसे एक अगली बात ये पूछते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बहुत साफ दिल से कोई बात कही हो लेकिन उसे वो बात चुभ गई हो, या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बात कही हो और उस बात ने सामने वाले व्यक्ति को इतनी खुशी दे डाली कि उसका जीवन ही बदल गया। ऐसी कोई बात हो तो आप हमें बताइए। चलिए अगला गाना अब आपको हम सुनवा रहे हैं। ये गाना है मुकेश और आशा भोसले की आवाज़ों में, शैलेंद्र के बोल हैं, एस एन त्रिपाठी का संगीत है। आपको बताना है फिल्म का नाम। जी हाँ, कौन सी फिल्म का ये गाना है ये बताइए।

ये जिस फिल्म का गाना है उस फिल्म का नाम है कुंवारी, और 1966 की यानी कि 1966 की ये फिल्म है। कुछ श्रोताओं ने इस बारे में सही जवाब हमें लिख करके भेज दिए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि यूं तो अपनी बात सभी कह देते हैं, पर दूसरे की गलती पर या सच बात को मौके पर और किसी के मुंह पर कहना हर एक के बस की बात नहीं होती। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि कहना जितना सहज है उतना ही उत्तरदायित्वपूर्ण भी। सुकरात ने कहा था कि बोलिए ताकि मैं आपको देख सकूं। कथन की सत्यता, स्पष्टता और मिठास ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सच्चा परिचय देती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कहना भी एक कला है और चुप रहना भी। कुछ बातें शब्दों की मोहताज नहीं होती, आंखें कह देती है, खामोशी समझ लेती है, और कभी कोई फूल या चांद हमारी तरफ से वो बात कह जाता है जिसे हम कह नहीं पाते। मगर रिश्तों में शब्दों की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। होठों से निकला हर लफ्ज सामने वाले के मन में कहीं ठहर जाता है। रिश्तों की गरिमा और मिठास बनाए रखने के लिए हर बात कह देना जरूरी नहीं, कुछ जज्बातों को दिल की तहों में महफूज रख देना ही ठीक होता है। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। शाम तेरे कितने नाम, इस फिल्म का गाना। हेमलता की आवाज है, अनजान के बोल, रविंद्र जैन का संगीत। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आपको बता

सचिन और सारिका पर फिल्माया गया ये गाना आज तक जो कहा तुमने कहा। जी हाँ, हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं या हमारे आसपास होते हैं या हमारे दोस्तों में या ऑफिस में या घर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब तक कहते हैं हम सुनते हैं, लेकिन जब हम अपनी कोई बात कहने जाते हैं तो वो तुरंत ही उस बात को वहीं पर समाप्त कर देते हैं, काट देते हैं और अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। क्या आपके जीवन में भी या आपके आसपास या आपके दोस्तों में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला है कि जिनको बहुत कहने की आदत है पर सुनने की आदत बिल्कुल भी नहीं? और जब ऐसा होता है तब आपको कैसा लगता है, क्या महसूस होता है कि सामने वाला बोले जा रहा है, कहे जा रहा है, लेकिन आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं? तो ऐसे लोगों के बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि कहने की बात यह है कि मंजू जी आज कुछ कम सुने सुंदर नायाब गीत आप सुनवा रही हैं तो ये भी हमें अच्छा लग रहा है। एक हमारी साथी ने ये बात लिखी है कि मुझे कुछ कहना है कि जब मेरे पतिदेव इस दुनिया में नहीं रहे तब मेरे पापा ने एक बात कही थी और आज तक मुझे याद है। पापा ने कहा, बेटा जब तक तुम सच को स्वीकार नहीं करोगी, भ्रम में रहोगी और पीछे मुड़कर देखोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी। आगे देखो, वो बात आज तक याद है और यही बात मैं अपने जैसी जो भी मेरी दोस्त है जिन हालातों से वो गुजर रही हैं उन्हें मैं ये बात कहती हूँ या सलाह देती हूँ। धन्यवाद आपका। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि ये रचना यानी कि इस टेक्स्ट के बारे में इन्होंने लिखा है कि ये संदेश देती कि जब जुबान पर लगाम और दिल में रिश्तों के लिए सम्मान हो तो खामोशी भी कड़वे शब्दों से ज्यादा असरदार और गरिमामय होती है। बोलने की आज़ादी के साथ एक सीमा भी जुड़ी होती है। कहे गए शब्द कभी वापस नहीं लौटते, इसलिए भाषा में सद्भावना और संतुलन होना जरूरी है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। रखवाला फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है यह आप बताइए।

रखवाला फिल्म का गाना आपने सुना, धर्मेंद्र और लीना चंदावरकर पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी की ये बात के कहने में तो सिर्फ 3 शब्द समाए हैं, मगर अक्सर लोग नहीं जानते जो कुछ भी हम कहते हैं वो हमारे प्रतिबिंब बन जाते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो भी कहो सोच समझ कर कहो, क्योंकि एक बार मुंह से निकले लफ्ज फिर वापिस नहीं आते। कोशिश करें कि हम हमेशा कहने में सुंदर कहें और सुनने में धीरज बरतें, क्योंकि आपके कहे कटु शब्द में दांत तो नहीं होते, पर वे शब्द काट लें तो उनके जख्म कभी नहीं भरते। कहने में बड़ी शक्ति है, हाँ शब्दों के चयन ही आपकी असल पहचान होते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मिली फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़, मिली फिल्म का गाना है ये। लता मंगेशकर की आवाज़ है, एस डी बर्मन का संगीत है, गीत किसने लिखा है ये आप बताइए।

योगेश का लिखा हुआ ये गाना जो अभी आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि जी हाँ, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी बात सुनाने में सदा उत्सुक रहते हैं, मगर सामने वाले की बात सुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखते। बात पूरी भी नहीं होने देते और अपनी बात सुनाना शुरू कर देते हैं। कई बार तो ये कहना पड़ता है कि प्लीज सुनिए, पहले हमारी बात सुन लीजिए, ऐसा कहना पड़ता है। एक साथी ये भी लिखते हैं कि कौन सुनेगा, किससे कहें हम, इसलिए चुप रहते हैं। जी हाँ, सही बात है कि जब तक कोई सुनने वाला ना हो तब तक कुछ भी कहना बेमानी है। अक्सर लोग ऐसा ही सोच लिया करते हैं और सवाल भी बहुत उम्दा है, लेकिन सांसारिक झंझावातों में उलझा मन ये समझ ही नहीं पाता कि ये संसार तो एक दिखावा है और असली कहने की नहीं अपितु सुनने वाला कोई और नहीं अपितु स्वयं हमारे ही अंदर है और उसे हमें पहचानना है। धन्यवाद आपका। चलिए, भरत मिलाप इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें, भरत व्यास के बोल, संगीत वसंत देसाई का।

भरत मिलाप फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि सबका बात करने का तरीका अलग अलग होता है, कहते हैं इसी जीभ से विष और रस दोनों निकलते हैं, लेकिन चुनना तो हमारा स्वभाव है, कही हुई बात कभी वापस नहीं आती, इसलिए सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहूँ शीतल होए। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, एक झिझक सी होती है और कह नहीं पाते कि क्या सोचेंगे, दिल की बात दिल में ही रह जाती है, मन में कई विचार उठते हैं, कभी कभी मुंह से निकली हुई बात दूसरों पर बुरा असर डाल सकती है, कुछ बातें ऐसी होती है जो समय पर बोल देना चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि जो लोग ज्यादा बोलने के आदि होते हैं उनको अक्सर याद नहीं रहता कि उन्होंने पिछली बार कौन सी बात कही थी और कौन सी नहीं, वो याद रखने के मामले में असफल होते हैं, कारण कि वो धैर्य से कभी कोई बात ना सुनते हैं और ना कहने के मामले में भी वो अधीर ही नजर आते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अदालत फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, ये खूब

मदन मोहन का संगीतबद्ध किया और नरगिस पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। और एक साथी की ये बात कि जब दिल में जज्बात बहुत गहरे हों और अपनों से बात ना हो पाए तो खामोशियां भी एक भाषा बन जाती है। ये एहसास बहुत खूबसूरत और थोड़ा दर्द भरा होता है, जहां उम्मीद और तन्हाई साथ साथ चलती है। दिल की बातें और उम्मीद चांद तारों का सहारा होता है। जब कोई अपना दूर होता है तो आसमान और कुदरत ही हमारे हमराज बनते हैं और अनकहे जज्बात कुछ बातें जुबान पर आने से पहले ही आंखों और दिल में बस जाती है। ये उम्मीद होती है कि जो दिल को संभाले रखती है कि एक दिन बात जरूर पहुंचेगी। चलिए अगला गाना प्यासा फिल्म का, ये गाना गीता दत्त की आवाज में।

आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, ये गाना हम आपको पूरा तो नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन जितना जो हम सुनवा पाएंगे वो आपको जरूर सुनवाएंगे, एक छोटी सी बात के साथ कि हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि खुशियां बांटने के लिए हमेशा बहुत कुछ नहीं चाहिए, कभी कभी एक अच्छा शब्द ही काफी होता है। चलिए, चाचा भतीजा फिल्म का ये गाना, शैलेंद्र सिंह की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है बताइए।

0: रहा था।
1: रणधीर कपूर और योगिता बाली पर फिल्माया गया ये गाना यही था आज के कार्यक्रम का आखिरी गाना। अब इजाजत दीजिए, आप सभी को मंजू द्विवेदी का नमस्कार।

सद्भावना दिवस हमें ये याद दिलाता है कि किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता, आपसी विश्वास और प्रेम की भावना होती है। अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और विचार होने के बावजूद जब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं तभी एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। ये दिन हमें सिखाता है कि मतभेद होना स्वाभाविक है लेकिन मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। यदि हम अपने व्यवहार में विनम्रता, सहिष्णुता और सहयोग को स्थान दें तो परिवार से लेकर पूरे समाज तक सौहार्द का वातावरण बन सकता है। सद्भाव ही वो सूत्र है जो लोगों को दिल से जोड़ता है।

बढ़ाना साथ दे। आज के समय में जब छोटी छोटी बातों पर दूरियां और गलतफहमियां बढ़ जाती हैं, तब सद्भावना दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये अवसर हमें याद दिलाता है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र से नहीं, बल्कि उसके अच्छे विचारों और व्यवहार से होती है। समाज तभी आगे बढ़ता है जब लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझें, संवाद बनाए रखें और हर परिस्थिति में मानवता को सर्वोपरि रखें। आइए हम ये संकल्प लें कि अपने शब्दों, अपने आचरण और अपने कर्मों से प्रेम, सम्मान और विश्वास का ऐसा वातावरण बनाएं जहां हर व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे।

0: सद्भावना दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक सकारात्मक सोच है। यदि हम अपने घर, कार्यस्थल, मित्रों और समाज में परस्पर सम्मान, सहयोग और भाईचारे की भावना को अपनाएं, तो अनेक समस्याएं अपने आप ही कम हो सकती हैं। एक मुस्कान, एक मधुर शब्द और एक छोटा सा सहयोग भी रिश्तों में नई गर्माहट भर सकता है। आइए इस अवसर पर हम ये संकल्प लें कि किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता प्रेम और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। यही सच्ची सद्भावना है और यही एक सशक्त भारत की पहचान भी है।
1: नफरत

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तमिलनाडु के कोवलम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमे ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमे और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
1: हमारी मैरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इंपरेटिव भी है।

0: इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है। इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
1: श्री कोइजुमे ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है, जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्र विरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह

0: ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण का रास्ता अपना रही है।
1: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में ही विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के 3rd सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
2: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70 लाख पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
0: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
3: एक पेड़ मां के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है। हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
0: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
4: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की सातवीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
0: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577 जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला जो गीत है ये जिंगारो फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और साथियों का गाया हुआ। प्रेम धवन के बोल, संगीत है SN त्रिपाठी का।

लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, संगीत एस मोहिंदर का, फिल्म का नाम है जरक खान।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गाना आपको सुनवाते हैं, ये दिल किसको दूं। इस फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाज है, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, संगीत रवि का।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में लीजिए अब सुनिए प्यार का बंधन, इस फिल्म का गाना। कमर जलाल आबादी के बोल, संगीत है रवि का।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: पहलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना मुझे जीने दो इस फिल्म से है। आशा भोसले की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है जयदेव का।
1: न दिन

0: संसवतिया हाय संसवतिया नलो शाम पैया परू संसवतिया नलो।
1: लीजिए अब सुनिए राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, फिल्म का नाम शराबी।

0: कन्हैया
1: आज की सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना रुस्तम सोहराब। इस फिल्म का गाना सुरैया की आवाज, कंवर जलालाबादी के बोल, संगीत है सज्जाद हुसैन का। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, बस कुछ पलों का इंतजार कीजिए।

0: सखी सहेली
1: हमारे सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम सखी सहेली लेकर हम आ चुके हैं और आज मेरे साथ हैं इस मंच पर आरती श्रीवास्तव। आपको भी नमस्कार आरती।
2: चंचल जी आपको और साथ ही सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो नमस्कार के बाद हम बताते हैं कि आज हम क्या बातें करने वाले हैं, मतलब किन विषयों पर बात करें।
2: तो आज हम लेकर आए हैं विषय विलुप्ति की ओर भाषाएं और बोलियां, जो

0: तो कुछ खास शैली इनकी है,
1: बिल्कुल
0: उसके बारे में अगर आप नाम से वाकिफ हैं गोदावरी दत्त के तो समझ गए होंगे, नहीं तो बस थोड़ी देर का इंतजार कीजिए जब हम बात करेंगे गोदावरी के बारे में। और मुझे कुछ कहना है तो क्या कहना है?
1: मुझे कुछ मत कहो इस बारे में, क्योंकि हो सकता है ये चीजें मेरे लिए ही हो, क्योंकि इसमें लिखा है जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना, मुझे खाना बहुत पसंद है जैसे हाँ। कि आप जानते हैं, और सारी सखियां सब सखा सब जानते हैं कि मुझे खाना बहुत पसंद है।
0: तो हम सब जीते हैं, जीने के लिए खाना वाकई में बहुत जरूरी है। अगर हमें एक सेहतमंद जीवन यापन करना है तो उसके लिए खाना क्या होना चाहिए इस बारे में सोचना जरूरी है। लेकिन जब हम खाने के लिए जीना शुरू करते हैं ना, तो अनाप शनाप किसी भी समय कुछ भी खाते हैं, और खाने के जो बहुत शौकीन लोग होते हैं वो बहुत सारी चीजें खाते हैं, सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं ऐसा लगने लगता है।
1: अलग अलग तरीके की चीजों का स्वाद लेना उन्हें अच्छा लगता है, चटोरापन कह सकते हैं।
0: हाँ, चटोरेपन के बारे में हम पहले भी बातें कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि खाने के लिए अगर जब आप जीना शुरू कर देते हैं तो किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है।
1: बिल्कुल,
0: तो जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना, इस पर हमारे श्रोताओं के क्या विचार हैं?
1: बिल्कुल, अपने विचार एकदम ईमानदारी से लिखिए आप। हाँ। कि आपको क्या लगता है कि आपको मतलब कभी कभी खाना चाहिए ये चीजें, या फिर हमेशा ही इस तरह से कि आपको हर दूसरे दिन खाना है, ये चीजें आप बताइए।
0: ये सेगमेंट है मुझे कुछ कहना है, तो हमारे श्रोताओं का क्या कहना है इस बारे में वो जरूर कहिए। और कुछ उपयोगी टिप्स हम बताएंगे, जिसमें कपड़ों की उम्र किस तरह बड़ी की जा सकती है इसके बारे में बात होगी। और आज क्योंकि 20 तारीख है, आज है सद्भावना दिवस।
1: बिल्कुल, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो क्योंकि देखिए सद्भावना का मतलब क्या होता है, सद और भावना, यानी कि अच्छी भावना, अच्छी भावना से किया हुआ कार्य।
0: 20 अगस्त यानी कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की जयंती का ये खास मौका होता है जिस दिन, इस दिन को हम आयोजन करते हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि पूरे देश में प्रेम हो, आपसी भाईचारा हो, शांति हो, एकता हो, और सौहार्द की भावना जो है वो बनी रहे।
1: बिल्कुल, और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि विविधताओं का देश है भारत, यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं रही हैं, यही विविधता हमारी ताकत भी है। और सद्भावना दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए।
0: और इस अवसर पर बहुत सारे जो संस्थाएं हैं वहां पर सद्भावना प्रतिज्ञा भी दिलाई जाती है। जो स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, वहां पर उन संस्थानों में भाषण, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कई तरह की जागरूकता की गतिविधियां भी होती हैं। कुल मिला के सिर्फ यही संदेश दिया जाता है कि देश में एकता बनी रहे, सद्भावना बनी रहे,
1: बिल्कुल शांति बनी रहे, जिससे कि सब एक दूसरे के लिए सोचें, अच्छी भावना से काम करें।
0: और ये खाली एक संदेश देने की बात नहीं है, संदेश देने का दिन नहीं है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होनी चाहिए ये बातें आरती। और हम सबको मिलकर ये चीज बड़ी दृढ़ता से संकल्प ले लेना चाहिए कि हम सब एक दूसरे के प्रति सम्मान रखेंगे, प्यार रखेंगे, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, और इसी तरह तो मिलजुल कर देश एकता और अखंड रहेगा, मजबूत बनेगा।
1: बिल्कुल, और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जहां पर प्रेम है, सद्भावना है, वहीं पर शांति भी है और प्रगति भी है।
0: तो अब गाने में थोड़ा सा आगे बढ़े, प्रगति करें,
1: गीत सुनते हैं।

0: तुम्हें ध्यान है जो गांवों में घर होते हैं वहां बहुत सारे चित्र बने होते हैं, तो जब ये मैं गाना सुन रही थी ना, बच के शिकारी शिकार करना, तो जानवरों के या किसी जानवर को उसके साथ खेलते हुए, उनका शिकार करते हुए, उनको पालन पोषण करते हुए, इस तरह के भी भित्ति चित्र बनाए जाते हैं।
1: हाँ, वो घर इतने सुंदर दिखते हैं ना, इतने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे रंगों से जब वो उनको चित्र बने हुए होते हैं उसके ऊपर, हाँ, बहुत सुंदर लगते हैं।
0: और सबसे खास बात ये होती है आरती कि प्राकृतिक जो चीजें हुए उनका इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह का, जैसे बहुत सारी पेंटिंग में हम ऑयल पेंट या इस तरह के पेंट देखते हैं ना कि उनका इस्तेमाल किया जाता है, कुछ केमिकल्स भी होते हैं, लेकिन ये जो गाँव में भित्ति चित्र बनाए जाते हैं या जो वहां रंग रोगन किया जाता है वो सिर्फ प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। और आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो हैं गोदावरी दत्त, जो ऐसे ही रंगों का इस्तेमाल करके अपनी कूची से बड़े खूबसूरत चित्र बनाती हैं, और मधुबनी जो शैली है चित्रकला की उसमें इन्हें महारत हासिल है।
1: बिल्कुल,
0: हमारे श्रोताओं से हमने कहा था कि वो पहचाने की नहीं, लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने यह अनुमान लगाया और इनके बारे में बहुत सारे संदेश भी हमें भेजे हैं गोदावरी दत्त के बारे में।
1: बिल्कुल, और जब भी मधुबनी शैली की चित्रकला का जिक्र होता है तो लोगों के जहन में गोदावरी दत्त का नाम शीर्ष पर आता है। और गोदावरी दत्त का जन्म हुआ था बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर गांव में 7 नवंबर 1930 को। उस समय मधुबनी पेंटिंग की कोई खास पहचान नहीं थी और ना ही उसको लेकर लोगों में ज्यादा जिज्ञासा ही थी।
0: बिल्कुल, ज्यादा जिज्ञासा नहीं थी, केवल जो शादी ब्याह के मौके होते थे, कोई खास त्योहार है, पर्व है, तो उस अवसर पर जो घर की महिलाएं होती थी बस वही ये पेंटिंग बना दिया करती थी। अलग से कोई कारीगर भी नहीं आते थे, घर की महिलाएं ही बड़ी होशियार हुआ करती थी और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो सिलसिला था वो चलता रहा। तो इसी तरह से महिलाएं जो घर की थी बड़ी लगन से चीजों को सीख लिया करती थी, अलग से कोई किसी क्लास में जाकर नहीं सीखती थी। अपने घर की जो बड़ी बूढ़ी महिलाएं होती हैं, जो अपने आगे जो वो जो लोग काम कर रहे थे उन्हीं को देखते देखते वो सीख जाती हैं और होश संभालते बड़े होते, माँ मौसी चाची दादी उनको देख कर घर की जो महिलाएं हैं वो भी चित्र बनाने लगी और इसी तरह से ये उनकी पाठशाला हुआ करता था।
1: बिल्कुल, संयुक्त परिवार होते थे उस समय, तो सब साथ में होते थे, तो कोई कोई भी सिखा देता था, है ना, तो सब आपस में सीख लेते थे जब ये सब चीजें। तो गोदावरी दत्त जब बहुत ही छोटी थी तब उनके पिता रास बिहारी दास का निधन हो गया और माँ सुभद्रा देवी मधुबनी पेंटिंग की दक्ष कलाकार थी। उन्होंने पूरी लगन से अपनी बेटी को इस कला की बारीकियां सिखाई और जल्द ही गोदावरी की उंगलियां ब्रश पकड़ने में सिद्धहस्त हो गई और वो दीवारों पर चित्र बनाने लगी।
0: और गोदावरी की औपचारिक शिक्षा जो है वो बहुत ही कम हुई, शायद 8वीं-9वीं तक ही हो पाई उनकी शिक्षा, और बहुत छोटी सी उम्र में उनकी शादी भी कर दी गई उपेंद्र दत्त के साथ में। लेकिन इनका जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत अच्छा नहीं रहा। इनके तो जो पति थे उन्होंने इन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली, लेकिन उस वक्त तक वो एक बेटे की माँ बन चुकी थी।
1: बिल्कुल, और वो इस संकट की घड़ी से घबराई नहीं और अपनी माँ से बचपन में सीखी कला को ही उन्होंने अपनी जीविका बनाने का फैसला किया। इस विपरीत परिस्थिति में भी मधुबनी पेंटिंग गोदावरी दत्त के जीवन का सहारा बनी।
0: और जैसे कि हमने कहा ना, बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, तो छोटी उम्र में बचपना भी था उनके अंदर, तो उनके जो वो किस्से बताती हैं, उन्होंने बताया कि एक बार उनके यहाँ बायोस्कोप दिखाने वाला आया और घर के सारे बच्चे बायोस्कोप देखने लगे, तो उनको भी लगा कि भाई

0: बायस्कोप देखना चाहिए, उन्होंने जिद की। लेकिन उनकी जो सास थी वो बड़ी अच्छी थी, उन्होंने इस बात को अन्यथा नहीं लिया और वहां से सारे पुरुषों को हटाया और भाई अपनी बहू को बायस्कोप देखना है इसके लिए वो दिखाने ले गई। और बायस्कोप में उन्होंने देखा कि माता यशोदा गाय को दुह रही हैं और जो कृष्ण छोटे से बालक हैं वो वहां बस एक गिलसिया लिए खड़े हैं दूध पीने के लिए अपना इंतजार करते हुए।
1: और वो बताती हैं, गोदावरी दत्त बताती हैं कि रात भर बायोस्कोप का वो चित्र उनके मन मस्तिष्क में घूमता रहा, उनसे रहा नहीं गया और लकड़ी के संदूक में से एक कागज निकालकर उस पे उन चित्रों को उन्होंने जो देखा था वो उकेर दिए, फिर उसे छुपाकर वहीं रख दिया। कुछ दिन बाद उनके जो जेठ जी थे वो आए, वो जमीन से जुड़े एक दस्तावेज की तलाश कर रहे थे जो कहीं मिल नहीं रहा था, सब परेशान थे। गोदावरी से पूछा गया तो अचानक उन्हें याद आया, उन्होंने अपने संदूक से निकालकर उन्हें दिखाया तो वो वही कागज था,
0: बिल्कुल जिस पर उन्होंने वो चित्र बना दिए थे। और गोदावरी बहुत खुशी के साथ और मासियों में इसके साथ इस बात को बताती हैं कि सब लोग जब उस दस्तावेज पर जो उन्होंने चित्रकारी की थी उसे देखकर बहुत खुश हुए, उनकी बहुत प्रशंसा भी की। और भूलवश गोदावरी ने उस जो दस्तावेज था उसे कोई सादा कागज समझकर उसके ऊपरी हिस्से पर वो पेंटिंग बना दी थी। और जब भी वो उस घटना को याद करती हैं तो आज भी जो कहते हैं ना कि एक हंसी मुस्कुराहट या प्रसन्नता वो उनके चेहरे पर आ जाती है।
1: तो वो बताती हैं कि उस समय गांव घर में जनेऊ, शादी ब्याह और गृह प्रवेश के अवसर पर घर दरवाजों पर मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती थी। उन दिनों परिवारों में शादी ब्याह के अवसर पर दो कोहबर, एक कमलदह, एक दशावतार और बांस का चित्र बनाने की परंपरा थी।
0: तो भाई हमारे कार्यक्रम की परंपरा क्या है, हम बात करते करते गाने भी सुनते हैं, तो सुन ले।
1: हाँ।

0: तो हम बात कर रहे थे गोदावरी दत्त के बारे में। आरती, आपने बताया कि किस तरह के चित्र बनाने की परंपरा थी, क्या चित्र बनाए जाते थे शादी ब्याह के अवसर पर, और ये ऐसा दौर था जब मिथिलांचल में ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को घर की दहलीज लांघने तो बहुत दूर की बात हो गई, पुरुषों से बात करने तक की इजाजत भी नहीं दी जाती थी। उस समय मधुबनी में वस्त्र मंत्रालय का एक कार्यालय खुला, तब ए ग्रेड की पेंटिंग के 10 रुपए और बी ग्रेड की पेंटिंग के 7 रुपए और सी ग्रेड की पेंटिंग के 5 रुपए मिला करते थे। इस तरह से पेंटिंगों को अलग अलग उनके स्तर के हिसाब से बांटा गया था। और गोदावरी जी जो थी वो पेंटिंग बनाने में जुट गई, तो उनके चित्र जो थे वो भी बिकने लगे। एक विदेशी कलाकार ने उनकी पेंटिंग के 25 रुपए दिए, मतलब इतने महंगे दाम में उस वक्त खरीदा, और उसके बाद जगह जगह उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगने लगी। पटना, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चित्तौड़, रांची, त्रिवेंद्रम, सूरजकुंड, दिल्ली हाट, यानी कहाँ कहाँ तक उनके जो चित्र बनाए गए थे उनकी प्रदर्शनियां लगने लगी, और खूब सराहना होती थी, खूब बिक्री भी होती थी उनके चित्रों की।
1: बिल्कुल, और उन्हें पारंपरिक और मिथकीय विषयों के साथ साथ प्रकृति को सहजता से मधुबनी पेंटिंग में उकेरने में दक्षता हासिल है। वो शुद्ध रूप से भारतीय लोकाचार, संस्कृति और रीति रिवाज की कलाकार हैं, और अपने विषय पौराणिक आख्यानों एवं प्रकृति से प्राप्त करती हैं। वो प्रकृति के जो जुड़े हुए होते हैं उसमें वो अपने जो विषय होते हैं उनको लेती हैं। मधुबनी पेंटिंग की कचनी शैली के अनुसार उनमें धैर्य भी है, जिससे वो अपने चित्रों में उत्कृष्ट पूर्णता और इच्छित प्रभाव उत्पन्न करती हैं। उन गोदावरी दत्त की कला की विशेषता रेखाओं की स्पष्टता में है। रेखाएं एकदम से सही और एक दूसरे से आबद्ध होकर चित्रों में एक तिलिस्म सा पैदा करती हैं। जब बिल्कुल अच्छी तरीके से उन चीजों को उकेरा जाए तो वो कला में जादू असर पैदा हो जाता है।
0: बिल्कुल सही,
1: बिल्कुल। अपनी सुस्पष्ट सोच और तल्लीनता से रेखाओं में वो मानो प्राण फूंक देती हैं। इनकी एक और विशेषता है कि वो अपने चित्रों में पर्याप्त विश्राम देकर जो प्रत्येक आकृति है उसको उभरने का पूरा मौका देती है।
0: तभी तो उन्हें इतनी अलग से पहचान मिली है।
1: बिल्कुल, ये रंगों का प्रयोग कम से कम करती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर कागज या कपड़े पर खाका बनाकर उसके मध्य में बांस की सीख में बंधे कपड़े या धागे से अपेक्षित रंगों को भरने में भी इन्हें महारत हासिल है कि जहां पर बहुत जरूरी होता है वहीं पे ये रंगों का उपयोग करती हैं। और देश विदेश में गोदावरी दत्त के चित्रों की अब तक अनगिनत प्रदर्शनी लग चुकी है। इन्होंने अब तक हजारों महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, उनकी सहायता भी की है, उनके कई शिष्यों को राष्ट्रीय सम्मान और पहचान मिल चुकी है। उन्होंने कागज के अलावा रेडीमेड वस्त्र, शाल और कुशन कवर और साड़ी और जैकेट आदि पर, ये इतनी सारी जो चीजें, इन सब पर उन्होंने मधुबनी पेंटिंग के चित्र को बढ़ावा दिया है, बनाया है,
0: और बहुत सारे सम्मान भी इसके लिए वो पा चुकी हैं। देश विदेश में अलग अलग संस्थानों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राज्य स्तर पर भी कई पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो चुके हैं, और 2019 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। और बिल्कुल, ये जो मधुबनी पेंटिंग है सचमुच धरोहर है जो उन्होंने बनाकर हमें सहेज कर दी है।
1: बिल्कुल,
0: और अब सुने एक गाना,
1: एक गीत।

0: तो भाई गीत के बाद में अब हम बात करेंगे उन भाषाओं की, उन बोलियों की जो कि अब विलुप्त हो रही हैं। और हमने शुरू में ही बताया था कि हमारा देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है, यहाँ बहुत सारी भाषाएं, बोलियां, संस्कृति हैं यहाँ की जो सालों से चली आ रही हैं, और ये हमारे देश के समृद्ध इतिहास का परिचय भी करवाती हैं आरती, और जीवंत समाज के बारे में बताती हैं। लेकिन बहुत अफसोस है इस बात का कि इनमें से बहुत सारी भाषाएं अब गायब हो रही हैं, और कुछ गिने चुने लोग हैं जो इन भाषाओं के बारे में जानते हैं या इन्हें बोलते हैं। और बताऊं आरती, तुम्हें जानकर ये हैरानी भी होगी कि 19,000 से ज्यादा भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और जैसे हम अभी गीत सुन रहे थे, कितना प्यारा सा गीत था ना, तो ये भी भाषा के जरिए ना हम तक पहुंचा। और हर भाषा का अपना अपना गीत है, संगीत है, पूरी एक समझ लीजिए पूरी सभ्यता ही है इसको लेके चलती है। जो
0: कहते तो हैं कि कोस कोस पे पानी बदले तीन कोस पे पानी।
1: इन जो 19,000 से बताया आपने जो भाषाएं हैं, उनमें से 121 ऐसी मातृभाषाएं हैं जिन्हें 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं। और इन 121 भाषाओं में से 22 ऐसी हैं जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भाषा का दर्जा भी दिया गया है, जो है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषा, ये संविधान में सूचीबद्ध है।
0: ये तो तुमने उन भाषाओं के नाम बताए जो सूचीबद्ध भाषाएं हैं, लेकिन बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनको कोई सूचीबद्ध नहीं किया गया, उनकी अपनी कोई लिपि नहीं, कोई शैली नहीं, लेकिन फिर भी उन भाषाओं को सुरक्षित तरीके से रखने की जरूरत है ताकि लोग उनके बारे में जानें। और ये हो सकती है जैसे अंगिका, बंजारा, बाजिका, भोजपुरी, भोटी, भोटिया, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, कोड़वा, काकबुराक, शोरसैनी, सिरकी, निकोबारी, पाली, राजस्थानी, नागपुरी, मुंदारी, मगही, तुलू, ऐसी बहुत सारी भाषाओं की ये भी एक लंबी लिस्ट है।
1: बिल्कुल, हो भाषा भी देखी, कितनी भाषा ऐसी है जो हमने कभी सुनी ही नहीं था।
0: हाँ,
1: हो भाषा है, कचाची है, कातमपुरी है, कार्बी, खासी, कोडवा, कुकबरा,
0: नाम भी शायद हमने सुने नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं कि विलुप्त हो रही हैं ये भाषाएं।
1: ये कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनके बारे में शायद हमें इतना पता भी नहीं है। तो अगर कुछ ही बोलने वाले जो बचे हैं, तो अगर इनके हमने इनको संरक्षित नहीं किया तो फिर ये हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी।
0: बिल्कुल, और ये बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो इस समय संकट में हैं, और ये जो विविधता का संसार है ना, ये छोटा हो रहा है, सिमट रहा है। भारत में भाषाओं के लुप्त होने का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं आरती, कि करीब 4-5 भाषाएं तो ऐसी हैं जो लुप्त हो रही हैं, और कुछ भाषाएं लुप्त हो गई हैं। भाषाओं में खासतौर पर उनकी भाषाओं को जल्दी विलुप्त होने को खतरा है जिनके पास अपनी कोई लिपि नहीं होती है। अगर लिपि नहीं से है, हम उनको संरक्षित करके रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे कि भारत में अरुणाचल प्रदेश की कोरो भाषा को बोलने वाले बस अब कुछ 100 लोग ही रह गए हैं। अंडमान द्वीप समूह की भाषा ग्रेट एंडमनीज, निकोबार द्वीप समूह की निकोबारी भाषा भी विलुप्त की ओर बढ़ रही है। सेंटिनलीज जो अंडमान निकोबार के उत्तरी सेंटिनल द्वीप में बोली जाती है, त्रिपुरा की है साइमार, और हिमाचल प्रदेश की माझी, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में बोलने जाने वाली तोड़ा, इसी तरह निहाली, दारमा, गांगते, सुमी, जाखरिंग, महासुई, ऐसी कई बोलियां हैं जिन्हें संजोकर रखने की कोशिश बहुत जरूरी है।
0: आज जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो जिन भाषाओं के तुम नाम ले रही हो ना आरती, सच में कुछ भाषाओं के नाम तो मैंने भी नहीं सुने हैं, ये जिक्र ही पहली बार हुआ है। और तब आज कहीं ना कहीं मेरे जहन में भी ये बात आ रही है कि ऐसी भाषाओं की जिन्हें हमें नाम भी नहीं पता, तो ये अगर कहीं विलुप्त हो जाएंगी तो इनका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से हमारे सुनने वाले भी इस बात

0: बात से बिल्कुल जरूर वाकिफ होंगे या इत्तेफाक रखते होंगे कि इनको संरक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ वर्ग विशेष होते हैं जिनकी पहचान है, कुछ क्षेत्र विशेष होते हैं जिनकी पहचान होती है ये। और देखिए हमारे जो श्रोता है वो इस बारे में क्या लिख रहे हैं, वो लिखते हैं कि विलुप्त होती भाषण और बोलियां अगर काम हो रहा है तो शब्दों को खोना नहीं है, बल्कि उनके साथ हमारी संस्कृति, लोक कथाएं, गीत परंपराएं, पुरानी पीढ़ियों का अनुभव ये भी धीरे धीरे खो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमें घर में अपनी मातृभाषा बोलनी चाहिए और बच्चों को लिखना पढ़ना भी सिखाना चाहिए, बच्चों को उसके शब्द, उसके लोकगीत, ये सभी चीजें सिखानी चाहिए। भाषा तभी जीवित रहती है जब उसे बोलने वाले गर्व से उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। ये बहुत सही बात है, कई बार हमें अपनी ही भाषा अगर बोलने में शर्म महसूस होती है या हमें लगता है कि हम सभ्य समाज का हिस्सा नहीं बन पाते हैं तो ये शर्मनाक बात होती है। अपनी भाषा को सम्मान हम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा।
1: बिल्कुल, और बोलियों में लोक जीवन की जो अद्भुत संवेदना छुपी होती है ना, वो और कहीं से नहीं मिल सकती। किसी क्षेत्र में बोले जाने वाली वहां की मिट्टी की खुशबू, मौसम का मिजाज और रिश्तों की आत्मीयता और लोक मानस की सहजता दिखाई पड़ती है, जो अगर हम भाषाओं को खत्म हो जाएंगे ये तो उनके साथ में जुड़ी हुई उनकी परंपराएं जो हैं जुड़ी हुई जो उनकी लोकगीत हैं, लोक संस्कृति है, वो भी सब खो जाएगी।
0: एक संदेश के माध्यम से हमारे श्रोता ने बताया है कि भाषाएं और बोलियों को सी डेक के GIST विभाग ने डिजिटल रूप से अच्छे से संजोया है। देश भर की विभिन्न भाषाओं और बोलियों को डिजिटल स्क्रिप्ट्स और डिजिटल टूल्स के जरिए बहुत आसान बनाया जा रहा है। और अब जब मेरी नजर घड़ी पर पड़ी तो ये एक समय हो चला है कि हम एक छोटा सा अंतराल लें।

0: आरती, हम बात कर रहे थे विलुप्त होती हुई भाषाओं और बोलियों के बारे में।
1: बिल्कुल, एक संदेश भी है इसी को लेकर। एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विलुप्त होती जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं वो या बोलियां जो आजकल बहुत कम बोली जा रही हैं, हम अपनी मातृभाषा को बहुत कम बोल रहे हैं, ज्यादातर हम इंग्लिश का ही उपयोग करते हैं या मतलब बाहर की भाषाओं का उपयोग करते हैं। आम बोलचाल में हम कहना चाहेंगे कि हमें अपनी मातृभाषा को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और उसमें पढ़ना लिखना आना चाहिए हमें, क्योंकि उसकी जो खूबसूरती है उसका पता हमें उसी से पढ़ सकता है।
0: देखो, जितना महत्व विदेशी भाषाओं का है या अगर हम कहीं बाहर काम के लिए जाते हैं तो सही है कि अंग्रेजी जो भाषा है उसका बहुत हमें लगता है कि ये आनी जरूरी है। किसी अन्य देश में जाते हैं तो ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह हमारे काम आती है, लेकिन जो हमारी मातृभाषाएं हैं या जो हमारी मिट्टी से जुड़ी बोली है उसका अपना अलग महत्व है।
1: और साथ ही हम जहां रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, उस जगह की भाषा को अपनाना तो बहुत जरूरी है। उस जगह की भाषा का भी हमें ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए।
0: और ऐसे ही कुछ गीत होते हैं भाषाओं से सजे हुए। फिलहाल जो हम गीत सुने, कोई लोकगीत नहीं है, लेकिन भाषाओं का बड़ा महत्व होता है, इसी के बारे में बात करेंगे। सुनते हैं ये गीत।

0: अच्छा, चल एक हमारी जो श्रोता हैं उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा एक बात लिखी है। वो लिखती हैं कि मतलब उस समय का जब समय था तो गांवों में विवाह समारोह में वृद्ध माताएं जो मीठे सुर में स्थानीय बोली में गीत गाती थीं तो चार चांद लग जाते थे। वो अब कहाँ है वो लोग, वो सुरीले गीत अब कहाँ है, वो जो हंसा देते थे कभी रुला देते थे, अब डीजे का कान फाड़ू संगीत है बस। यानी कि जो भाषाएं जो बोलियां होती थी ना, उन बोलियों में जो गीत संगीत होता था
1: हाँ
0: उसका एक अपना ही रस आता था।
1: बिल्कुल, उसमें भले ही कोई वाद्य यंत्र ना बज रहा हो लेकिन जब एक साथ सुर में समूह में महिलाएं या पुरुष उन लोक गीतों को गाते हैं, कई बार चौपाल पर बैठकर या कई बार काम करते हुए महिलाएं गाती हैं उन गीतों को, तो उनका एक रस एक आनंद अलग ही होता है। इसी तरह से अगर हम भोजन की भी बात करें तो कुछ बहुत लोकप्रिय भोजन होते हैं जो किसी प्रांत विशेष में बनाए जाते हैं, किसी जगह की खास पहचान होते हैं, और कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। भोजन हमारे लिए सिर्फ खाना नहीं है, भोजन नहीं है, इस बात का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि खाना हमारी जिंदगी के लिए जरूरत है, जिंदगी का मकसद लेकिन ये नहीं हो सकता। और बात केवल भोजन की नहीं, ये हमारी जीवन शैली की जो भी प्राथमिकताएं हैं उन पर भी विचार करने की बात है। हम बात कर रहे हैं कि मुझे क्या कहना है इस सेगमेंट की, जीने के लिए खाना या फिर खाने के लिए जीना, इस बारे में हम बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: और जीवन के लिए खाना का मतलब होता है कि भोजन हमारे जीवन को स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय रखने का साधन है। हम खाना खाते हैं ताकि शरीर को पोषण मिले, स्वस्थ रहें, ताकत मिले हमारे शरीर को, और बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकें, सारे काम कर सकें, घूम फिर सकें, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, जिंदगी को बहुत खुशहाली के साथ जी सकें, सारे काम करें जिसमें अपने सपने, रिश्ते, जिम्मेदारियां उन्हें भी अच्छे से निभा लें, और स्वाद के साथ संतुलन इनका बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। यानी खाना जीवन का हिस्सा है लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं है।
0: नहीं है, और समस्या तब शुरू होती है जब भोजन जो है वो हमारी खुशी, दिनचर्या और जीवन का केंद्र बन जाता है। जब हर समय हम यही सोचते रहते हैं कि आज क्या खाऊं, कहाँ अच्छा खाना मिलेगा, कुछ मीठा हो जाए, और स्वाद के लिए बार बार हम अपनी सेहत, जरूरत और संतुलन को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसी सोच रखने वाले धीरे धीरे जीवन के लिए खाने के बजाय खाने के लिए जीने लगते हैं, खाने को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। स्वादिष्ट खाना देखकर मन ललचा जाता है और हम ये भूल जाते हैं कि हमें कितना और क्या खाना चाहिए, फिर हमारा ध्यान स्वास्थ्य से ज्यादा स्वाद पर आ जाता है।
1: इसीलिए देखिए हमारे श्रोताओं ने भी बड़े अच्छे संदेश भेजे हैं इस बात पर। इस श्रोता का कहना है कि खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना, इस फर्क में सोच है, ये फर्क का सोच है। जो खाने के लिए जीता है उसके लिए पेट ही भगवान है।
0: हाँ।
1: और पैसा, समय, ऊर्जा सब स्वाद के पीछे लग जाती है, और सेहत, अनुशासन, लक्ष्य सब पीछे छूट जाते हैं। वहीं जीने के लिए खाने वाला इंसान ईंधन समझता है, खाने को ईंधन समझता है और संतुलित खाता है ताकि शरीर स्वस्थ रहे, दिमाग तेज हो, और वो अपने परिवार, काम, पढ़ाई और समाज के लिए कुछ बड़ा कर सके। और खाना जिंदगी का साधन है, साध्य नहीं है। अगर साधन ही साध्य बन जाएगा तो हम स्वाद के गुलाम बन जाते हैं, और अगर साधन को सही इस्तेमाल करें तो हम स्वस्थ रहकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत, बहुत अच्छी बात है,
0: बहुत सही तरीके से उन्होंने समझाया कि खाने के लिए जीना नहीं है बल्कि जीने के लिए खाना होता है। तो हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए। भोजन जीवन की जरूरत और खुशी दोनों है, लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। स्वाद का आनंद लें लेकिन भोजन की अति ना करें। अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए खाएं। जो आखिर खाना अच्छा वही है जो तन को ताकत और मन को संतोष दे। मतलब अगर कोई चीज आपको मन कर रहा है खाने का तो उसको थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हैं, थोड़ी मात्रा में लीजिए, जरूरत नहीं कि उसको बहुत ज्यादा आप खा लें।
1: बिल्कुल, ये संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, और कार्यक्रम में संतुलन बनाए रखने के लिए हम बीच बीच में बातों के साथ
0: गीत सुनते हैं।

0: आरती, तुम्हें पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब तन्हाई में होते हैं, यानी अकेलेपन में होते हैं, तो उस वक्त उन्हें कुछ सूझता नहीं सिर्फ खाने के सिवाय। और इस तरह से अकेलेपन की वजह से या कोई काम ना होने की वजह से खा कर भी वो बहुत सारे सेहत पर नुकसान या विपरीत असर ले लेते हैं।
1: कई लोग जब बहुत दुखी होते हैं तो भी खाते हैं, या बहुत खुश होते हैं तो भी खाते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा वजन पे भी असर पड़ता है।
0: तो खाने को अपनी जिंदगी का मकसद ना बनाए, क्योंकि ये बहुत सारी सेहत से जुड़ी समस्याएं आपके लिए लेकर आ सकता है। जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए।
1: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि लगातार जरूरत से ज्यादा खाना खाने से शरीर में कैलोरी बढ़ जाती है, इससे मोटापा और गंभीर बीमारियां जैसे कि बहुत सारी डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती हैं, या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारी हो सकती है, और पेट फूलना, असहज महसूस होना, जी मिचलाना या भारीपन, सुस्ती, थकान रहना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, भूख से थोड़ा कम खाएं, खाने को धीरे धीरे चबाकर खाएं, और फाइबर से भरपूर सब्जियां लें, और रोज हल्का व्यायाम या सैर जरूर करें।
0: हम जो बात कर रहे हैं इसका ये मतलब कतई नहीं आरती कि स्वादिष्ट खाना खाना ही नहीं चाहिए। खाना जीवन की खुशियों में से भी एक हम कह सकते हैं कि है। भोजन

0: केवल पेट भरने का साधन भी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में भोजन का संबंध प्यार, परिवार, उत्सव, भावनाएं, इन सब से भी है। परिवार के साथ एक साथ बैठकर खाना खाना, दोस्तों के साथ चाय पीना, त्योहारों पर मिठाई बनती है घरों में तो वो मिठाइयां खाना, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े, कुछ ये छोटे छोटे से सुख होते हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन इन सुखों को अगर हम अपनी जरूरत बनाकर इन्हीं में ही डूबे रहेंगे, नुकसान तब हो जाता है।
1: बिल्कुल, जब हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं।
0: बिल्कुल, तो अंतर इतना है कि भोजन का आनंद लें, भोजन को अपनी जिंदगी पर हावी कभी ना होने दें। इसीलिए ये बात जो कही गई है वो बिल्कुल सही सटीक बैठती है कि भोजन का आनंद जरूर लीजिए, लेकिन भोजन को अपने जीवन का मालिक मत बनने दीजिए।
1: बिल्कुल, और जीवन की सुंदरता या असली संतुलन वो है जिसमें हम स्वास्थ्य अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वाद का आनंद भी लें। और कभी कभार मनपसंद मिठाई खा लेना कोई गलत नहीं है, कभी दोस्तों के साथ बाहर खाना भी गलत नहीं है, लेकिन रोजमर्रा ऐसे भोजन चुनना ही बेहतर है जो शरीर को पोषण दे और मन को संतुष्टि भी दे।
0: हमारे श्रोता का कहना है कि भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन स्वास्थ्य उस आनंद को लंबे समय तक बनाए रखने की कुंजी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तरह तरह के व्यंजन, फास्ट फूड और बाहर का खाना हमारी आदतों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कभी कभार स्वाद के लिए खाना ठीक है, लेकिन यदि यही स्वाद हमारी सेहत पर हावी हो जाएगा तो परेशानी शुरू हो जाएगी। भोजन का आनंद लें, मगर भोजन को जीवन का केंद्र ना बनाएं। याद रखना है कि खाना जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता भी हैं वो जो कहते हैं कि जिंदगी को जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जिंदगी नहीं। खाना हमें ऊर्जा देता है, लेकिन असली स्वाद तो उन छोटी छोटी खुशियों में है जिन्हें हम जीते हैं। अपनों के साथ बैठना, हंसना, बातें करना और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, थाली भरने के साथ साथ दिल भी खुशियों से भरा रहे, शायद यही खूबसूरत जिंदगी है। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि कोई कोई खाने के इतने शौकीन होते हैं कि लगता है कि शायद ये खाने के लिए ही जीते हैं। बस जितना सही है उतना ही खाना चाहिए, स्वाद और लोभ में अधिक नहीं खाना चाहिए।
0: और इतना स्वस्थ हमें रहना है कि जीवन का हम आनंद ले सकें, सिर्फ खाने का नहीं ले। और इस बात को अगर हम एक पंक्ति में समझें आरती, तो खाना जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। जिंदगी खाने को बेहतर बनाने में अगर बीत जाएगी तो बहुत सारी मुश्किलें आ जाएंगी। और अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में इस गीत के साथ।

0: हाँ, तो अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स की, है ना, जो हमारे काम आ सके। हमारे जो कपड़े हैं बढ़िया बढ़िया जो हम पहनना चाहते हैं, बहुत हमारे पसंद के कपड़े हैं, वो जल्दी खराब ना हो, उसे बचाने के लिए वो कौन
1: बिल्कुल,
0: सी
1: उनकी
0: टिप्स
1: जो
0: है।
1: लाइफ है यानी कि उनकी जो जिंदगी है
0: उम्र
1: वो
0: दराज हो।
1: बिल्कुल, अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो कपड़ों की सेहत का ध्यान रखना
0: बिल्कुल
1: ये बहुत जरूरी है। हमारी सेहत के लिए हम अच्छी खुराक लेते हैं, लेकिन कपड़ों की सेहत के लिए कि उन्हें किस तरह के डिटर्जेंट में धोना चाहिए, तेज धूप में सुखाएं कि नहीं सुखाएं, रंग को कैसे सलामत रखें, ये सारी बातें शामिल होती है ना। तो
0: बिल्कुल
1: ये बड़े अच्छे अच्छे टिप्स हमारे श्रोताओं ने हम तक पहुंचाए हैं।
0: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि जिन कपड़ों का रंग निकलता है उसे अलग से धोना चाहिए, उन्हें या तो ड्राई क्लीन करवाइए या तुरंत भिगा के धोना चाहिए, बाकी कपड़ों से अलग रखना, और नाजुक कपड़ों को बहुत बार नहीं धोना, और बारिश के बाद कपड़ों को थोड़ी धूप लगाना, और जो कपड़े कभी भी पहनने में नहीं आ रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी नहीं आते हैं पहनने में, तो उसे किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए ताकि वो पहन सके, वरना उसे रखे रखे कपड़े, उसमें भी ऐसा होता है कई बार, कुछ बार जो बारिश के दिन होते हैं, हमने भी निकाले हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ फफूंद जैसी जम जाती है, कपड़े खराब फटने लगते हैं जल्दी,
1: हाँ, ये जो
0: तो
1: आपने कहा ना,
0: बहता
1: कई
0: है।
1: बार अलमारी में सहेज कर रख देते कि भाई हमारी बहुत पसंदीदा कपड़े ने बहुत खास मौका आने पर पहनेंगे, और कुछ सालों बाद जब निकालते हैं तो हाथ में लेते हैं वो कपड़े से चिर जाता है, फट जाता है, तो वो रखे रखे भी कपड़े खराब होते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: अगर आपके इतनी पसंद के कपड़े हैं तो आप किसी पसंद के इंसान को या किसी को जरूरतमंद को आप उन कपड़ों को दे दीजिए, जिसकी वो पहने, उनके काम आए।
1: बिल्कुल, एक संदेश में कहा गया है कि कपड़ों की उम्र हमारी देखभाल पर निर्भर करती है। उन्हें सही तरीके से धोना, धूप में बहुत देर तक ना सुखाना, मौसम के हिसाब से साफ करके रखना, और पहनने के बाद उसे थोड़ी देर हवा में सुखाना, अच्छी तरह से तह करके रखना, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कपड़ों को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रखती हैं।
0: बिल्कुल, और हमारे श्रोता जो है वो कहते हैं कि कपड़ों की उम्र भी थोड़ी हमारी देखभाल पर निर्भर करती है, जैसे कि उनको सही तरीके से धोना चाहिए, यानी कि अच्छे किसी साबुन में, डिटर्जेंट में धोएं, और धूप में बहुत देर तक ना सुखाएं, क्योंकि धूप के वजह से उनका रंग उड़ सकता है, और मौसम के हिसाब से उनको साफ रखना चाहिए, और पहनने के बाद उसे थोड़ी देर हवा में सुखाना चाहिए, अच्छी तरह से तह करके रखना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से कपड़े लंबे समय तक नए के नए बने रहते हैं।
1: तो और भी संदेश पढ़ेंगे, पहले गीत सुन लेते हैं।

0: देखो ना, बहुत अच्छे अच्छे संदेश आ रहे हैं
1: बिल्कुल।
0: यहाँ
1: एक
0: के।
1: हमारे जो साथी वो कहती हैं कि सर्दियों के दिन में जब हम गर्म कपड़े से गर्म पानी से कपड़े धोते थे तो मेरी नानी मना करती थी और बोलती थी गर्म पानी से कपड़ा धोने से कपड़े कमजोर हो जाते हैं। यानी सही बात है, उनके रेशे कमजोर हो जाते हैं जिसकी वजह से कपड़े जल्दी खराब भी होते हैं। और साथ ही एक और साथी जो कहती है कि हमेशा कपड़ों को उल्टा करके ठंडे पानी से धोना चाहिए और उनको सीधे धूप में ना डालकर शेड में सुखाना चाहिए ताकि कपड़े का रंग हल्का ना हो।
0: एक श्रोता का कहना है कि अच्छे डिटर्जेंट का उपयोग करें, हल्के रंग के कपड़ों को अलग से धोएं, कॉटन और सिल्क के अनुसार ही आयरन का तापमान भी आप बराबर रखिए, अलमारी में नमी ना हो इस बात का भी ध्यान रखें। और अब हम ध्यान रखते हैं कि समय कह रहा है, कार्यक्रम का अंतिम गीत हम चलते चलते सुन लेते हैं।

0: आज के सखी सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंजरी वर्मा, लेकर आई हूँ आपका हेलो फरमाइश कार्यक्रम। सुरों की महफिल सजी है, फरमाइशों का है इंतजार। आपके पसंद के गीतों से सजाएंगे आज का हेलो फरमाइश प्रोग्राम। दिल की धड़कन बनकर हर नगमा आपके पास आएगा, कभी यादों की खुशबू, कभी जिंदगी के सफर की होंगी बातें। हर गीत के संग दिल से दिल की मुलाकात होगी। लीजिए बज उठी है फोन की घंटी, चलिए सुनते हैं कि आज कौन होगा पहला कॉलर। हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैम नमस्कार, मैं राम गोपाल बोल रहा था भोपाल से।
0: नमस्कार राम गोपाल जी, आप भोपाल से बोल रहे हैं तो क्या हाल चाल है वहाँ के?
1: भोपाल के तो अभी बारिश हो रही, लेकिन इतनी तेज बारिश नहीं है, मतलब सामान्य से इस बार बहुत कम है
0: जी। और बताइए राम गोपाल जी कि आप क्या करते हैं?
1: अपना ये मकान वकान बनाने का, ऐसे ठेका वेका ये लेते हैं, मकान बनाते हैं, मिस्त्री का काम भी है, सभी कर लेते हैं, ठेका भी ले लेते हैं।
0: अच्छा, यानी कि आप घर बनाते हैं, बहुत खूबसूरत घर बनाते हैं यानी कि?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: बड़ा अच्छा लगा कि आप ये मेहनत वाला काम करते हैं। तो इस काम के बीच बीच में आप विविध भारती रेडियो स्टेशन सुनते रहते हैं?
1: जी अभी भी साइट चलती है, तो मैं तो साथ में अपने होम थिएटर वगैरह रखता हूँ, उससे कनेक्ट करके ऐप के माध्यम से पूरे दिन भर चलते रहते हैं।
0: तो आपको किस तरीके गाने अच्छे लगते हैं?
1: मुझे सब प्रकार के गाने अच्छे लगते हैं, जैसे 90 के दशक के जो गाने हैं ना, बहुत ही अच्छे लगते हैं वो।
0: क्या बात है, बहुत अच्छे दशक की आपने बात करी है। और विविध भारती रेडियो स्टेशन से जो भी प्रोग्राम प्रसारित होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं और आपको कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा पसंद आता है?
1: दिन में फेसबुक पे आते हैं ना प्रोग्राम, सुवाना सफर वगैरह करके बहुत प्रोग्राम भी सुनते हैं, और सुबह चित्त पर संगीत उस 90 के दशक के और नए गाने भी सुनने को मिलते हैं, और मन चाहेगी वो तो आप सुनाते हो तो अच्छे लगते हैं।
0: और ये बताइए कि भोपाल में हैं आप, तो भोपाल में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप घूमने के लिए वहाँ पर आप बता सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा लगता है मैम, तालाब वगैरह भी है यहाँ, भोजपुर मंदिर भी है थोड़ा पास में, और बहुत अच्छे अच्छे संग्रहालय बने हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए
0: जी। और ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना

0: नंदन वंदन अभिनंदन, आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के इस अंक में हार्दिक अभिनंदन है। मैं गीतिका ओनियाल आप सभी का स्वागत करती हूं और आपसे वादा करती हूं कि हर बार की तरह आज का हमारा ये कार्यक्रम आपके दिलों में एक नई उम्मीद जगाने वाला है, क्योंकि हमारे लिए कोई कहीं मुस्तैद है, कार्यरत है, जो अपनी जान को अपनी हथेलियों में लेकर चलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देश की सेवा में सर्वत्र अपना सर्वत्र न्योछावर किए आगे बढ़ रहा है, हर दिन हर रात। आपसे साझा करना चाहेंगे कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं शिव शंकर कुमार जी, जो इंस्पेक्टर हैं जनरल ड्यूटी सहस्त्र सीमा बल में, आजकल गैंगटॉक में कार्यरत हैं और इन्हें गैलेंट्री मेडल से भी सम्मानित किया गया है। और सबसे प्यारी और खूबसूरत बात आज के अंक की ये है कि ये सीधा गैंगटॉक से यहाँ पहुंचे हैं आकाशवाणी के स्टूडियोज में, आपको अपनी यात्रा से अवगत कराने के लिए, रूबरू कराने के लिए। हर सिपाही हर ऑफिसर की अपनी यात्रा होती है, लेकिन उस यात्रा का गंतव्य सिर्फ देश सेवा होती है। तो देश सेवा को समर्पित हमारे आज के मेहमान शिव शंकर कुमार जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। शिव शंकर कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार SSB की ओर से आप सभी श्रोताओं को जय हिंद कहना चाहूँगा। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से जुड़ने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं ऑल इंडिया रेडियो टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। SSB का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुरक्षा को बनाए रखना है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारे SSB के सभी कार्मिक दिन रात पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपना काम कर रहे हैं। SSB हमारी इंडो नेपाल बॉर्डर, इंडो भूटान बॉर्डर के साथ साथ इलेक्शन ड्यूटी, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी को भी बखूबी अंजाम दे रही है। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी टीम का।
0: जी इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी, आपने जिस तरह से व्याख्या की यहाँ पर SSB की, इससे ये साबित होता है कि आप देश के साथ साथ अपनी सेवाओं से, सेनाओं से कितना प्रेम करते हैं। और आज आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सहस्त्र सीमा बल का, उन तमाम सैनिकों का, उन तमाम अधिकारियों का जो कहीं ना कहीं अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने, आप कहते हैं ना कि अपने आत्म मनोबल या आत्मबल तो हमें हमारी सेवाएं सेनाएं देती हैं, पर हम किस तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं वो भी सेनाओं के माध्यम से काबिल-ए-तारीफ है। अगर आपके व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो नन्ना मन
1: जी,
0: लंबी उड़ान, छोटे छोटे पंख, आपका जो जीवन है, अगर खासतौर पर आपके बचपन की बात की जाए तो किस तरह के बच्चे थे आप? क्या शैतान थे? और पढ़ाई में कितना मन लगता था? कैसा माहौल था घर में?
1: बचपन तो मेरा बिहार में सीतामढ़ी, जो एक बाजपट्टी पड़दौरा गांव है, वहां बीता है मेरा। परिवार का माहौल बहुत खुशनुमा माहौल था और हमेशा इनकरेजिंग मिलता था काम करने के लिए। शरारती बच्चे तो थे ही, लेकिन हमारे परिवार से हमें मेहनत और अनुशासन के प्रति हमेशा सजग रहने को सिखाया गया है
0: जी।
1: और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने का भी एक हमारे पिताजी सिखाते थे कि पूरी ईमानदारी से कोई भी काम को करना है तो पूरी ईमानदारी से करना है, लगन के साथ करना है। तो वो हमारे अंदर हमेशा के लिए रह गया और आगे चल के हमारे जब भी हमारे प्रोफेशन लाइफ में भी वो काम किया है
0: जी। कहते हैं कि हमारा जो परिवेश है, हमारा जो परिवार है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे विकास में। आज हम जो कुछ भी हैं अपने परिवार की वजह से, और जो भी संस्कार आपको प्राप्त हुए वो देश सेवा में निहित है, नजर आ रहे हैं। और आज जब आप अपनी वर्दी पहने यहाँ FM रेनबो के स्टूडियोज, आकाशवाणी के स्टूडियोज में बैठे हैं, तो आपके माता पिता जिस वक्त आपको सुन रहे होंगे, घर परिवार वाले सुन रहे होंगे, वो इस बात की मिसाल दे रहे होंगे कि हाँ, हमारे बच्चे ने अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए जो बेड़ा उठाया है, काबिले तारीफ है। तो शिव कुमार जी, आप शिव शंकर कुमार

0: जी आप हमें ये बताइए कि कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको देश सेवा में इस पथ पर चलना है और एसएसबी ज्वाइन करने का फैसला कैसे लिया?
1: मेरे लिए वर्दी हमेशा सम्मान और जिम्मेदारी की प्रतीक रहा है। मन में हमेशा से इच्छा थी कि फौज के प्रति, देश के प्रति कुछ करना है, ऐसा काम करे जो देश और समाज में अपना योगदान भी दे सके। इसी सोच को जब हमने ग्रेजुएशन पास किया तो सुरक्षा बल में जाने का फैसला किया। उसके बाद एसएससी की फॉर्म आई, उसमें मैंने पास करके और फिर एसएसबी को ज्वाइन किया है। एक एसएसबी एक ऐसा माध्यम रहा, एक ऐसा अवसर रहा जिसके देश सेवा के साथ साथ देश सेवा करने का पूर्ण मौका मिला
0: जी। और ये मौका आपके जीवन में एक सुखद अनुभूति लेकर आया, वर्दी पहनना, फिर देश सेवा में जितने भी ऑपरेशंस में आप कार्यरत रहे उनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये अनुभूति जरूर हुई होगी कि अगर मैं सेना ना ज्वाइन करता तो ये मौका मुझे कहाँ मिलता, कहाँ मैं अपने देश का परचम लहरा पाता। तो ये सौभाग्य की बात है कि सेनाओं ने आपको चुना और सशस्त्र सीमा बल आपको बल दे रहा है आज, और आप इस बल से देश सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो ये बताइए कि आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के उपरांत आपने एग्जाम क्लियर किया, क्या प्रक्रिया रही, कैसे पहुंचे और कितने अटेम्प्ट्स किए, कितने अटेम्प्ट्स में आपको यह हासिल हुआ, क्या कुछ और भी करने की सोच रहे थे साथ साथ या सिर्फ ये था कि फौज में ही जाना है?
1: थी, ये मेरी पहली अटेम्प्ट ही थी और मैंने 2012 में ये एसएसबी को ज्वाइन किया था और इसकी जो फॉर्म थी एसएससी के थ्रू आई और 2010 में इसका प्रोसेस शुरू हो गया था। पूरी भर्ती जो होती है वो फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, रिटेन होता है, इंटरव्यू होता है, सारी प्रक्रिया के चयन करने के बाद, पास करने के बाद मेरा चयन हुआ था। इसमें फिजिकल टफनेस के साथ साथ मेंटल टफनेस की भी परीक्षा होती है इसमें। अगर वो सारा चीज़ आप पास कर जा रहे हैं तो फिर आपका चयन हो जाता है। उस समय एक ही बात मन में था कि अगर मौका मिले तो मैं भी अपने इस काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ ये करूँगा
0: जी। तो वो कौन सा वर्ष था जब आपका चयन हुआ और चयन होने के बाद जब ये खबर आप अपने परिवार तक ले गए तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी?
1: ये 2012 की 2012 में हुआ है। 2012 में हमें एसएसबी ज्वाइन करने का मौका मिल गया था। परिवार के लिए तो ये बहुत खुशी और गर्व का विषय था, लेकिन एक छोटा सा वो भी था कि फौज में जा रहा है तो फौज में घर से दूर रहेगा। उनके मन में एक था कि घर से दूर रहेगा, लेकिन उनका हमेशा सपोर्ट रहा है कि हाँ चलो जो भी करना है अपने मन से ईमानदारी से करते रहना है, मुश्किल परिस्थितियों में भी ड्यूटी करना है तो उसके लिए भी परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। उन्होंने हमेशा साथ किया है, दिया है।
0: उसी साथ के चलते आप आज यहाँ तक पहुँच गए, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तक का सफर आपने पूरा किया, इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। ये भी बताएं कि जब आप घर परिवार के साथ साथ जब जिस जगह से आप संबंध रखते हैं, आपके नाते रिश्तेदार दोस्त, उन तक जब ये बात पहुंची कि हमारा दोस्त या हमारा परिवारजन अब एसएसबी ज्वाइन करने वाला है, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? क्या कभी किसी ने ऐसा कहा कि आप जैसा बनना चाहते हैं, हम भी एसएसबी ज्वाइन करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं देश की?
1: सभी के लिए ये, हमारे गांव वालों के लिए भी ये गर्व की बात था कि हमारे बीच का एक लड़का कोई जाकर फौज में भर्ती हो रहा है, वो सब के लिए गर्व की बात था। और एक तो आइडल बन ही जाता है गांव समाज के लिए कि हाँ कोई भी जाए तो वो उसके जैसा बनना है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मेरे जैसा ही बनना है, सब अपने अपने क्षेत्र में काम करे वो ज़्यादा जरूरी है
0: जी। पर ऐसा तो ज़रूर होता होगा कि जब आप अपने घर जाते होंगे तो आपके अपने, आपके दोस्त, आपके परिवारजन एक जमावड़ा सा लग जाता होगा और कहते होंगे सुनाओ ना कुछ किस्से कहानियां, क्या कुछ होता है एसएसबी में, जहां जिस बटालियन के साथ जाते हो क्या कुछ खास हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बहुत उत्सुकता रहती है कि हमारे जो देश के जो वीर हैं ना कैसी जिंदगी जीते हैं। हम आम जनमानस बस आपके किस्सों को दोहराते हैं, लेकिन जब आपकी जुबानी उनको सुनते हैं ना तो गर्व से सीना फूल जाता है। आज जिस कार्यक्रम के माध्यम से भी जितने लोग हमें सुन रहे हैं, संदेश आने हम तक पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मन में जिज्ञासा रहती है कि कैसा जीवन जीते हैं। ये तो जानते हैं कि मुस्तैद रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कोई जिंदगी ऐसी होती होगी जो हम नहीं जी पाते, और यही कारण है कि आज देश के युवा, भावी पीढ़ी फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ऐसा होता होगा आपके साथ?
1: ये होता है। फौज ऐसी संस्था है जो एक जॉब नहीं देती है, एक लाइफ देती है
0: जी।
1: ये पूरा जीवन देती है हमको। आप अगर

0: आप इसमें जीना चाहते हैं तो पूरी लाइफ जो है वो देती है। और किस्से कहानियाँ तो चलते रहते हैं, घर पे जाते हैं तो जो भी किस्से कहानियाँ वो चलते रहते हैं, सभी उत्सुक रहते हैं कि कुछ तो बताए खोज में कैसे चलता है, क्या होता है नहीं होता है, ये सब तो चलते रहता है। और ड्यूटी के टाइम में ड्यूटी, और ड्यूटी जब नहीं रहती है तो हम लोग भी रिलैक्स होके रहते हैं और
1: जी
0: काम करते हैं।
1: जी लेकिन लक्ष्य, जिस लक्ष्य के लिए, जिसकी प्राप्ति के लिए आपने मेहनत की, वो लक्ष्य आपको प्राप्त हुआ, और लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ जैसे ही आप अपना एग्जाम क्लियर किया, हर चरण में आप उत्तीर्ण हुए, पास हुए, उसके उपरांत तो ट्रेनिंग जो एक अहम हिस्सा रही,
0: जी
1: तो ट्रेनिंग का सफर कैसा रहा, कहाँ ट्रेनिंग हुई, और क्या आप ये मानते हैं कि इस ट्रेनिंग ने आपको पूर्ण रूप से तैयार कर दिया था सेवाएं देने के लिए?
0: मेरी पोस्टिंग सबसे पहले 2012 में हुई, जब मैं बेसिक ट्रेनिंग करने के लिए सीटीसी सलोनीबारी असम में है वहाँ गया। वहाँ से एक सिविलियन को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक फौज में आने के लिए, फौजी बनने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया 13 महीना का जो बेसिक ट्रेनिंग था उसमें। इससे ये होता है कि हमारा सिविल लाइफ और फौज के लाइफ थोड़ा डिफरेंस होता है, मतलब फौज में कैसे किससे बात करना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, सारा चीज़ को वो 13 महीने के अंदर में हमें हमारे इंस्ट्रक्टर लोग ने, हमारे जो भी अधिकारी लोग हैं उन्होंने हमें सिखाया, उसको पूरी तरह से मजबूत बनाया, फिजिकल टफनेस से लेके मेंटल टफनेस तक सभी चीज़ को हमने सिखाया गया उसी दौरान। उसके बाद हमारी पोस्टिंग आगे होती चली गई। उसके बाद मेरी पोस्टिंग सबसे पहले 53 बटालियन फालाकाटा में हुई, जो इंडो भूटान बॉर्डर को मैन करती है, वहाँ पे ड्यूटी करती है। उसके बाद 2018 में मेरी पोस्टिंग सीतामढ़ी 51वीं बयानी है, वहाँ पे जो इंडो नेपाल बॉर्डर को ड्यूटी करती है, मैन करती है, वहाँ पे हमारी ड्यूटी हो गई। वहाँ से होने के बाद हमें 2021 में ANO जो है एंटी नक्सल ऑपरेशंस है, वो 16वीं वाहिनी जमुई बिहार में हमारी पोस्टिंग हो गई, वहाँ पे हमने दी। और फिलहाल मैं SHQ गैंगटॉक में अपनी सेवाएं एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक ऑफिस ड्यूटी के रूप में दे रहा हूँ।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम यही कहेंगे कि ये सफर, ये कारवां यूं ही जारी है और जारी रहेगा। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बने हमारे शिव शंकर कुमार जी, और आज इंस्पेक्टर के रूप में हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो इनके सफर के बारे में और चर्चा करेंगे, और आप सभी श्रोता जो संदेश भेजना चाहते हैं, 9868107070 इस नंबर के माध्यम से आप संदेश भेजिए और अपनी भागीदारी निभाइए। इस बात का प्रतीक चिन्ह बनिए कि हम देशवासी अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। सेवाओं के माध्यम से हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो नित्य प्रति कार्यरत रहते हैं और जिनके लिए सिर्फ देश सेवा ही सर्वोपरि है, उनको सलाम करते हैं संदेश के माध्यम से।

0: लक्ष्य प्राप्ति किसे कहते हैं, ये तो हम अपने फौजियों से ही सीखते हैं। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति प्रेम ने हमेशा इन्हें लक्ष्य प्राप्त करना ही तो सिखाया है, और इस लक्ष्य प्राप्ति की वजह से हमारे देश भारत ने हमेशा परचम लहराया है, अपने फौजियों की वजह से और इनके देश प्रेम की वजह से। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार सहस्त्र सीमा बल से। और जैसा कि मैं साझा कर चुकी हूं कि आजकल ये गैंगटॉक में कार्यरत हैं और सीधे गैंगटॉक से यहाँ आकाशवाणी के स्टूडियो आए हैं, यही इनकी कर्तव्य निष्ठा है, यही देश प्रेम है। और सहस्त्र सीमा बल ने जैसे ही इन्हें कहा कि आपको जाना है और पहुँचना है, देखिए ये तुरंत कल चले और आज यहाँ पहुँच गए। आपसे ये जानना चाहते हैं हम शिव शंकर कुमार जी, एक लंबा सफर तय करता है एक फौजी, 2012 में आपकी नियुक्ति हुई, आप सब इंस्पेक्टर बने, फिर 2018 में इंस्पेक्टर बने, ये सफर कितना चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारियों से भरा हुआ था। पदोन्नति अपने आप में हमें सुखद अनुभूति कराती है, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां और जिम्मेदारी लेकर आती है।
1: ये सफर मेरे लिए बहुत सीखने वाला रहा है। 2012 में मैं सब इंस्पेक्टर नियुक्त हुआ था, उसके बाद एक प्रक्रिया है, अगर वैकेंसीज हो और आपका सर्विस रिकॉर्ड ठीक हो तो आपको एक डिपार्टमेंट आपको प्रमोशन देती ही देती है
0: जी।
1: उसके साथ जब 2018 में मुझे इंस्पेक्टर बनाया गया था, रैंक बढ़ने के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ती है
0: जी।
1: इस दौरान मैंने अपने जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखा, और जो हमारे सहपाठी है, कार्मिक है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि एक सिविलियन होकर आकर फौज में ट्रेनिंग के बाद अगर ऑन ग्राउंड जो ड्यूटी करता है उसको सीखने के लिए, जो पहले से जो भी काम कर रहे हैं उनसे सीखने को मिलता है, वो हमारे दिनचर्या में शामिल हो जाता है
0: जी। जी, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है और आपको जिंदगी को जीने लगते हैं और लगने लगता है हम इसी के लिए बने थे, और जिसके लिए बने थे आज उसके लिए कार्यरत है, आपकी रग रग में शामिल हो जाता है। शायद सेनाएं आपको इस तरह से तैयार करती हैं कि बस आपके रगों में, आपके खून में सिर्फ सेना है और देश प्रेम रह जाता है
1: जी।
0: अच्छा, हमें ये भी बताएं कि जब आप सेनाएं ज्वाइन करते हैं, जब आपने SSB ज्वाइन की, तो निश्चित

0: परीक्षण के अंतर्गत आपको फिर आगे पोस्टिंग्स मिली, लेकिन प्रशिक्षण का सिलसिला फौज में जाने के बाद कभी खत्म नहीं होता, वो तो बरकरार रहता है ना। तो क्या आपको लगता है कि जो भी ट्रेनिंग्स आपने बीच बीच में की या करते आ रहे हैं, इसने आपका निर्माण किया है, इसने आपको पूर्ण रूप से एक फौजी होना भी सिखाया है और कैसे चुनौतियों से लड़ा जाए ये भी बताया है?
1: प्रशिक्षण ही किसी को बेटर बनाती है। पहले हमने बेसिक ट्रेनिंग किया, उसके बाद समय समय पे ऑर्गेनाइजेशन हमको कोर्सेज कराती रहती है, इन प्रोफेशनल कोर्सेज हो और ट्रेनिंग भी हो वो कराती रहती है। जैसे आपको प्रमोशन भी मिलता है तब भी आपको कोर्सेज करने पड़ते, कोर्सेज क्वालिफाई करने पड़ते तब आपको प्रमोट किया जाता है। उसी तरह से हर कोर्स के लिए, हर ड्यूटी के लिए अलग अलग कोर्सेज है जो आपको प्रोफेशनली साउंड बनाने के लिए कराए जाते हैं। जिस प्रकार से कोई भी कोर्सेज हो, जंगल वारफेयर का कोर्सेज हो, जंगल में कैसे रहना है उसकी ट्रेनिंग कराना हो, जैसे बॉर्डर पे ड्यूटी करना है, इंडो नेपाल बॉर्डर को कैसे मैन करना, इंडो भूटान बॉर्डर को कैसे मैन करना, उसकी भी ट्रेनिंग, ये अनवरत जारी रहता है। और फौज मैंने पहले ही बताया एक लाइफ है, तो इसमें अनवरत जारी रहेगा कोर्सेज कराना, जिससे कि आप और टफ हो सके और अपने काम को अच्छे तरह से कर सके, इसीलिए ट्रेनिंग हमेशा जरूरी है
0: जी। और ना शब्द तो कभी होता ही नहीं आपकी डिक्शनरी में, क्योंकि सेनाएं आपको हमेशा यही सिखाती हैं,
1: ना तो है ही नहीं,
0: ना तो है ही नहीं, इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। बस जैसा कि हमने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति ही आपका अल्टीमेट गोल है, जिस काम को आपको दिया गया उसको आपको पूर्ण करना है, यही आपकी जिम्मेदारी है
1: और हम लोग उस जिम्मेदारी को पूरी तरह बखूबी निभाते भी है
0: जी, निभाते हैं। और एक बात व्यक्तिगत पूछना चाहूंगी, एक फौजी होने के नाते घर भी है, परिवार है, तमाम रिश्ते हैं और एक तरफ देश प्रेम है, तो इस कहते हैं कि एक फौजी के मन में कभी कोई जंग नहीं होती, उसके वक्त उस मतलब परिवार और देश को लेकर उसके मन में सिर्फ देश प्रेम होता है कि बस अब देश के लिए समर्पित है, माना कि घर है, परिवार है, भावनाएं हैं, तो इस चीज को आप किस तरह से अपने जीवन में समाहित करते हैं?
1: थोड़ा मुश्किल तो है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन परिवार का अगर सहयोग मिलते रहे तो ये सब आसान हो जाता है। परिवार और नौकरी के बीच में ये सामंजस्य बैठाना, अगर परिवार से साथ मिलता है तो ये एकदम आसान हो जाता है। सुरक्षा बल की नौकरी में कई बार परिवार के जो महत्वपूर्ण अवसर होते हैं उसमें भी हम लोग नहीं आ पाते हैं, तब भी एक परिवार का जो सहयोग होता है अगर वो मिलते रहता है तो सारा आसान हो जाता है
0: जी, सब कुछ आसान हो जाता है। घर परिवार से आपको ये कहा जाए कि जाओ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करो और जाओ अपने कर्तव्यों को पूर्ण करो, क्योंकि हमारा सम्मान तुम्हारे सम्मान में है, क्योंकि जब जब तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओगे तब तब हम गर्व से कहेंगे कि हमारा बेटा जो है देश प्रेम में है और देश के लिए कार्यरत है। तो यही तो जज्बा है जो हमें हर वक्त अपनी ओर आकर्षित करता है, और कितने ही युवा ये चाहते हैं कि हम फोर्सेस ज्वाइन करें और देश का नाम ऊंचा करें। तो मिट्टी के रखवालों को हमारी ओर से सलाम है।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। सशस्त्र सीमा बल से इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और इनकी यात्रा, इन्हीं की जुबानी सुनने में जो सुखद आनंद प्राप्त हो रहा है, ना जाने कितनों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बन रहा है। बहुत सारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, आप सभी के नाम हम जरूर लेंगे, लेकिन इससे पहले इनकी यात्रा जिसको हम सुनने के लिए इतने ललायत हैं, कहीं भी छूट न जाए। दिल चाहता है इनसे बार बार बहुत सारे प्रश्न किए जाएं। जितना हमें आपके बारे में पता लगा है कि आपको नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई बार तैनात किया गया है, आपको तैयार किया गया है, कभी महसूस होता है कि अगर आपको ये कार्यभार ना सौंपे गए होते तो आप जो आज हैं वो आज ना होते।
1: जी, ऐसे क्षेत्रों में सबसे जरूरी होता है हमेशा सतर्क रहना। हमारी अपनी ट्रेनिंग और जो हमारे ऑफिसर्स के निर्देशों के अनुसार हम लोग काम करते हैं, ड्यूटी के लिए हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। टीम के साथ साथ एक टीम के भावना के रूप में काम करते हैं, टीम का कम्युनिकेशन एक दूसरे के प्रति ठीक रहना चाहिए और एरिया के बारे में जानकारी होना चाहिए जहाँ पर हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, तो कोई भी काम आसान हो जाता है।
0: जी, कोई भी काम आसान हो जाता है, लेकिन आसानी से पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार करना होता है और आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, आपकी कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्यों का पालन करने की जो आप में गुण निहित हैं, इसकी वजह से ही आपको शायद ऑपरेशन जोश के लिए भी चयनित किया गया, जहाँ पर आपने अपनी टीम के साथ मिलकर दमखम स्थापित किया और उस, कहते हैं कि उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया।
1: जी, ये 8 जून की घटना है, 8 जून 2022 की घटना है। ये मेरे टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था। ये बिहार राज्य के जमुई ज़िले की घटना है, जिसमें हम एक ऐसे सफल ऑपरेशन के बारे में आज बात करेंगे जिसमें हमारी टीम ने एक हार्डकोर नक्सल को न्यूट्रलाइज किया था और उसमें भारी मात्रा में गोला बारूद और अन्य सामग्री भी बरामद किया गया था।
0: जी,
1: ये सफलता मेरी नहीं, पूरी टीम की सफलता है, जिसमें आपसी तालमेल हो, सही समय पे जो मिली सूचना को परिणाम था कि हमने ये ऑपरेशन सफल किया। उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन, उसके बाद पूरी तैयारी के साथ टीम ने कार्रवाई की और नक्सल को न्यूट्रलाइज किया था। इस तरह के ऑपरेशन किसी एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होती है, एक पूरी टीम होती है, पूरी टीम का योगदान होता है इसमें। आसूचना मिलने, प्राप्त करने से लेके ऑपरेशन को अंजाम देने तक एक सभी कार्मिकों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है और वो अपनी पूरी ईमानदारी और साहस के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया था। एसएसबी इस ऑपरेशन के बाद जमुई ज़िले में बहुत सारे नक्सलियों ने अपने आप इस ऑपरेशन के बाद खुद ब खुद सरेंडर किया सुरक्षा बलों के सामने आकर।
0: उनके मन में इतना डर
1: इनके मन में डर भर बन गया था और जस्ट एक सप्ताह के अंदर ही जो ये ऑपरेशन होने के बाद बहुत सारे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों और पुलिस के सामने आके खुद ब खुद सरेंडर कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि एसएसबी के महत्वपूर्ण योगदान के कारण जमुई ज़िला आज पूर्णतः नक्सल फ्री घोषित हो चुका है। इसमें एसएसबी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर अपनी टीम को भी, सभी साथी कार्मिकों को उनके साहस और मेहनत एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए बधाई देना चाहूँगा। सही समय पे सही कार्रवाई करना एक ऑपरेशन के लिए सबसे जरूरी होता है, जो हमारी टीम ने उसको किया।
0: जी, एक बात और पूछना चाहूंगी, जब इस तरह के ऑपरेशंस का आप हिस्सा बनते हैं, टीम का हिस्सा बनते हैं, तो निश्चित रूप से अपने सहकर्मियों से भी आप बहुत कुछ सीखते होंगे।
1: काफी कुछ सीखने को मिलता है। मैंने पहले भी बताया कि ये टीम को लेकर काम करने की पूरी टीम काम करती है, जिसमें हम लोग हमेशा कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो एक टीम के साथ काम करते हैं। इसमें किसी एक की जिम्मेवारी नहीं होती, सभी की अलग अलग जिम्मेवारियाँ बांटी हुई होती है और वो सभी मिलके इस काम को अंजाम देते हैं। एक सूचना मिलने से लेके ऑपरेशन करने तक सारी की जिम्मेदारियाँ अलग अलग होती है और जब ये ऑपरेशन सफल होता है तो वो सभी के लिए उतना ही गर्व का बात है जितना अगर मैं क्या कहूँ इसको, सभी के लिए गर्व की बात है।
0: हर मेंबर के लिए, जितने भी मेंबर्स हैं। अच्छा, हर मेंबर को उसका कार्यभार सौंप दिया जाता होगा और ये कहा जाता होगा कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करने पर जिस तरह से कमांड दिया जाएगा आपको उसी वक्त डिसीजन लेकर कि आपको उसको सुचारू करना है, आप उसी वक्त अपनी बुद्धि से, अपनी कहते हैं कि हमारी बुद्धि जो है हमें निर्णय लेने में मदद करती है, कमांडर आपका आपको निर्देश देता है, उसके बाद आप तैयार हो जाते हैं उस काम को करने।
1: ग्राउंड में आने के बाद सभी को ऑन ग्राउंड के हिसाब से ही काम करना पड़ता है, लेकिन पहले जो भी प्रशिक्षण मिला हुआ है उसको अपने निहित करते हुए और काम को आगे किया जाता है। हमेशा जो भी ऑपरेशन होता है तो सबसे पहले सभी का काम को बता दिया जाता है कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, और सभी अपने अपने काम को बखूबी करते हैं और उसके कारण हमें सफलता मिलती है।
0: बहुत खूब। अच्छा, यहाँ पर आकर आपको लगता होगा जब आप ऑपरेशंस का हिस्सा बनते हैं और जैसा कि हमने कहा कि आप बहुत से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आपने कार्य भी किया है, तो जो प्रशिक्षण आपने हासिल किए हैं, जो आपको प्रशिक्षण दिए हैं सशस्त्र सीमा बल ने, वो आपको लगता होगा कि वो आपके साथ बहुत अच्छा हुआ कि आपको वो ट्रेनिंग मिली, नतीजतन आप आज इतने सारे ऑपरेशंस का हिस्सा बन रहे हैं।
1: ट्रेनिंग सबसे जरूरी है, जितना टफ ट्रेनिंग होगा उतना फायदा मिलेगा ग्राउंड में काम करने के लिए और कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा काम करेगा। ट्रेनिंग सबसे जरूरी चीज़ है, टफ जितना ट्रेनिंग होगा उतना फायदा हमको ग्राउंड में काम करने के लिए मिलेगा।
0: जी, और कहते हैं कि कुछ विपत्ति जो है ना बताकर आती है लेकिन कुछ अनदेखी होती हैं, उसके लिए आपको सशस्त्र सीमा बल किस तरह से तैयार करता है?
1: हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करके रखता है। फौज ऐसा ही है कि जो कठिन परिस्थिति जब भी है तब भी एक फौजी खड़ा रहता है वहाँ पे, उसी के लिए फौज रहती ही है।
0: जी, जैसा कि हम अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आपको आपके ऑपरेशन जोश के लिए, जिसमें आपने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर उस नक्सली प्रभावित क्षेत्र को नेस्तनाबूद किया, और अगर हम गलत नहीं हैं तो जितने भी आर्म्स और एम्यूनेशन थे उनको भी आपने जब्त किया आखिर में, और आपको 2024 में गैलेंट्री पदक से भी नवाजा गया, वो अनुभूति किस तरह की थी? सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनना अपने आप में एक अलग अनुभूति, लेकिन सम्मान मिलना आपके कार्य के लिए वो उससे भी बड़ी बात, उस पर कैसा महसूस हुआ?
1: ये पल तो मेरे लिए गर्व और इमोशनल भी था। जब देश की सेवा करते हुए कोई सम्मान मिलता है तो बहुत खुशी भी होती है। इस सम्मान को केवल अपना सम्मान नहीं मानता हूँ, ये पूरी टीम का सम्मान है, और मेडल आगे अपनी जिम्मेदारी को और बेहतर तरीकों से करने की प्रेरणा देता है, और आगे हम लोग भी और मेहनत से और लगन के साथ कार्य करते रहेंगे।
0: जी बिल्कुल, आपने सही बात की कि जब मेडल प्राप्त होता है सुखद अनुभूति होती है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी

0: जिम्मेदारियां आप अपने ऊपर और लेते हैं और ये कहते हैं अपने आप से स्वयं से बात करते हैं और कहते हैं कि अगली बार इससे भी बेहतर कर दिखाएंगे, है ना, और जितनी भी जिम्मेदारियां मिलेंगी उनका भी निर्वाह करते हुए चलेंगे। मन में बात जरूर आती होगी,
1: हमेशा कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसके बाद में उसकी समीक्षा होती है कि इस ऑपरेशन को और कितने बेहतर किया जा सके, तो आगे आगे नेक्स्ट ऑपरेशन में उसको और उससे बेहतर किया जा सकता है और करते हैं हम लोग।
0: जी बहुत बढ़िया। अच्छा, गैलेंट्री पदक के अलावा भी आपको और कई सम्मान दिए हैं SSB ने, उनके बारे में भी हमें बताएं।
1: तो उनके अलावा बहुत सारे सम्मान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन मिलता है, जिसे हमारे DG महोदय के द्वारा भी DG सिल्वर डिस्क से नवाजा गया है। एंटी नक्सल ऑपरेशंस में अगर ड्यूटी कर रहे थे वहाँ भी रिवॉर्ड्स मिले हैं, कमेंडेशन भी मिले हैं। हर सम्मान एक खुशी देता है और साथ साथ एक जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है कि और इससे बेहतर करना है कुछ।
0: जी, इससे बेहतर करना है और देश की, चाहे फौज की बात की जाए तो चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की बात हो, चाहे वो बाहम सुरक्षा की बात हो, और हर फोर्स अपना अपना कार्य करता है। जो आंतरिक सुरक्षा के लिए कार्यरत है वो आंतरिक करते हैं, जो बाहन के लिए जिम्मेदार है वो बाहम सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, देश।
1: जी जी,
0: है ना, सिर्फ देश ही याद आता है और बस देश ही समझ में आता है, उसके अलावा कुछ और नहीं।
1: सबसे पहले देश है, देश के लिए कुछ भी करने के तैयार रहते हैं हम लोग।
0: जी बिल्कुल, आपने ठीक बात कही, देश के लिए तो मर मिटने तक के लिए तैयार रहते हैं। जब अपने घरों से निकलते हैं और फौज ज्वाइन करते हैं और फौज ज्वाइन करने के बाद तो जिस भी ऑपरेशन का हिस्सा बनते हैं तो कभी ये नहीं सोचते कि घर भी लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, और शायद यही आपकी जो कर्तव्य निष्ठा है, यही जो आपका प्रेम है देश के प्रति, हम देशवासियों को हमेशा ये प्रेरित करता है कि आप हमें जहां भी मिले हम आपको सलाम करें और कहें आप हैं तो हम हैं और आप नहीं तो हम नहीं।

0: और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, और संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ हैं सशस्त्र सीमा बल से इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार, जिनकी बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं दिल में खूक उठ रही होगी आपकी, और आप भी ये सोच रहे होंगे कि हम भी फोर्सेस ज्वाइन करें और देश के प्रति अपने सम्मान को, हर कोई व्यक्ति ना यही चाहता है कि देश के लिए काश हम कुछ कर पाएं, और सेना ज्वाइन करना हर किसी के दिल में हुक जरूर मारता है। आज हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी से, इनकी यात्रा हमने इनकी जुबानी सुनी। शिव शंकर कुमार जी, आपसे जानना चाहते हैं कि अलग अलग बटालियंस में आप तैनात रहे, आप अलग अलग बटालियंस का हिस्सा रहे, क्या कुछ कार्यभार आपको सौंपे गए और वो कार्यभार आपको कितने अच्छे लगे, वो तो आपकी मुस्कान से पता लग रहा है कि आपके लिए हर बटालियन दिल के करीब रही है और बहुत सारी यादें देखी गई है हर बटालियन, तो कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे अपनी बटालियंस के बारे में?
1: मेरे लिए हर वाहिनी अपने अलग अलग यादें हैं, हर वाहिनी की अलग अलग यादें हैं, वहाँ पे काम करने वाले साथी जो भी रहते हैं वो एक फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, हम अपना सारा सुख दुख जो भी है उसके इर्द गिर्द ही बुनते हैं, हम एक टीम की तरह एक टीम भावना के साथ काम करते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी जो भी कार्य किए गए हैं वो साथियों के साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल हमेशा याद रहते रहते हैं। मैंने पहले भी बताया कि हमने सभी बॉर्डर पर काम किया है, इंडो भूटान बॉर्डर सबसे पहले हमने किया, इंडो भूटान बॉर्डर का सीनेरियो अलग, फिर इंडो नेपाल बॉर्डर पे आया, इंडो नेपाल बॉर्डर का भी अलग ड्यूटी, उसके बाद हमने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में काम किया है 16 बटालियन में, जिससे हमें बहुत बड़ी सफलता भी मिली थी वहाँ पे। इसके बाद अभी हम पूरी तरह से ऑफिस ड्यूटी में है, गैंगटोक में पोस्टेड है, तो सारा काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है इसी ड्यूटी के दौरान।
0: जी, ये बहुत प्यारी बात होती है कि जब आपको अलग अलग ऑपरेशन साथ ही साथ अलग अलग तरह के कार्यभार संभालने का मौका मिलता है अपने कार्यकाल में, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। आप फोर्सेस को उतनी अच्छी तरह से जान पाते हैं कि हमारी जो फोर्सेस है क्या कुछ करती हैं, कैसे करती हैं, और यही शायद बहुत खूबसूरत बात होती है। अच्छा, ये बताइए कि हर बटालियन या हर जिस बटालियन में आप रहे हैं, तीन तीन साल के अंतराल के बाद आपकी पोस्टिंग बदली होगी, एक बटालियन छोड़ने के बाद, एक पोस्टिंग छोड़ने के बाद कितना दुख होता है?
1: ये काफ़ी दुख होता है, कभी लगता ही नहीं कि वहाँ से निकल के दूसरे जगह चले जाए। एक फैमिली बन जाती है, लगता है कि यहीं पे अपनी पूरी नौकरी कर ले, यहीं पे अपनी ड्यूटी कर ले, लेकिन एक प्रोसेस है और उसको हमको मानना पड़ता है। जब ऊपर से आदेश आ गया कि आपकी पोस्टिंग दूसरे जगह कर दी गई है, वो बिना हिचक के हम लोग अपना बैग पैक करते हैं और चल देते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए।
0: बात है, जिस तरह जो भी निर्देश दिया जाता है उसी के तहत आप अपने आप को मुस्तैद करते हैं, फिर नई जगह में पहुंचते हैं और फिर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब किसी टीम में रहते हैं तो आपसी प्रेम तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से आप जब उस यूनिट को, उस पोस्टिंग को छोड़ते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन वो तीन साल का समय कहते हैं कि बहुत आत्मीयता लेकर आता है, सारे सुख दुख एक दूसरे के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपनी यूनिट के सहकर्मियों के साथ आप साझा करते हैं। पार्टी वार्टी करते हैं?
1: पार्टियां होती रहती है।
0: अच्छा,
1: ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि फौज एक लाइफ देती है, आप उस लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए, ड्यूटी है और वो लाइफ भी देती है जो जिसके लिए हम लोग भर्ती होते हैं।
0: जी, अच्छा, आप कुछ देर पहले मुझसे कह रहे थे कि अगर आप यूनिट में ना भी हों, अपने घर गए हों और आपके घर में कोई खुशी का माहौल हो तो वो खुशी आपकी यूनिट में भी मना ली जाती है?
1: फौज में ये परंपरा भी है कि अगर घर में खुशी है तो फोन कर दो और यहाँ पे पार्टी पहले हो जाती है।
0: अरे वाह, क्या बात है। मतलब आपके जितने भी दोस्त है वहाँ पर अपने हिस्से की पार्टी वहाँ कर लेते हैं, आपकी खुशी में शामिल हो जाते हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं। जब आपके साथ है, यूनिट में है, तब भी एंजॉय कर रही हैं, तब भी मना रही हैं, एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रही हैं, और अगर दूर भी हैं बस बताने भर से वो आपकी खुशी में शामिल हो जाते हैं।
1: फौज की ड्यूटी 24 घंटे की ड्यूटी है, हमेशा सुख दुख उन्हीं के साथ बांट के रहना है, तो उनके लिए ही सारा चीज समर्पित रहता है, हम अपनी टीम के लिए ही हमेशा समर्पित रहता है।
0: अच्छा, ये बताइए कि जब घर आप जाते हैं तो घर से वापस जब अपनी यूनिट जाते होंगे तो माँ, घर परिवार वाले कुछ डब्बे खाने पीने का सामान देते होंगे? आपके साथ बंद कर जरूर जाता होगा।
1: वो सबके लिए होता है,
0: वो सबके लिए होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक महीने का सामान है तो वो एक महीने में खत्म होना है या वो उससे पहले खत्म हो जाता है।
1: नहीं, वो सबके लिए होता है, जो टीम है हमारी वो सबके लिए होता है।
0: हाँ हाँ हाँ, तो मुझे लगता है कि जाते साथ ही सब डब्बे खाली हो जाते होंगे।
1: जरूर जरूर।
0: और बड़ी चाह होती है, अरे घर से आए हो, ये बताओ क्या लेकर आए हो।
1: हमेशा रहती है चाहत, रहती है कि कुछ तो लेकर आया होगा।
0: अच्छा बताइए, वैसे तो आप बहुत ज्यादा अपने काम में व्यस्त रहते होंगे, लेकिन आपके साथ ऐसा कौन है जो साथ चलता है, जिसको आप ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कोई जिंदगी में है, जिससे बात कर रहे हैं, जो चल रहा है साथ, कोई है ऐसा?
1: एक टीम रहता है, वो हमेशा हमारे साथ चलती है।
0: और रेडियो?
1: रेडियो भी है। वो रेडियो एक लाइफ का हिस्सा है, वो हमेशा आपको चलते रहता है, साथ साथ चलते रहता है। दिन दिनचर्या में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो आपको बताते रहती है। हाँ, हमेशा
0: ऐसा महसूस होता है किसी की आवाज़ कानों तक पहुंच रही है, लेकिन आप व्यस्त हैं, अपने काम में मग्न हैं, लेकिन अपना साथी, वो साथी तो है ही, सहकर्मी तो है ही, लेकिन रेडियो भी साथ साथ है। अच्छा बताइए कि त्यौहार कैसे मनाते हैं आप, सारे त्यौहार मनाते हैं वहाँ?
1: अगर हम यूनिट में मौजूद है तो त्यौहार हमेशा मनता है और एकदम धूमधाम से सेलिब्रेट के साथ सभी चीज होते के साथ मनता है। अगर अगर घर पे नहीं है, अगर यूनिट में है, तो यूनिट में बहुत धूमधाम से त्यौहार मनता है, जिससे किसी को ये मलाल ना रहे कि मैं इस बार घर नहीं गया हूँ। हाँ। और बहुत धूमधाम से मनता है
0: जी। और खेलने का शौक कितना है आपको?
1: हम लोग उतने बड़े खिलाड़ी तो नहीं है, लेकिन खेलते हैं, सभी गेम खेलते हैं, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, सभी खेल में रुचि है और सब समय मिलता है, खेलते रहते हैं हम लोग।
0: खेल कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति और आपके विकास, आपके शारीरिक विकास में एक अहम भूमिका निभाता है, जो हमेशा आपको सजीव रखता है।
1: फौज की नौकरी करने के लिए सबसे जरूरी है फिटनेस, और अगर आप खेल अपने नियमित हिस्सा रखते हैं तो आपकी फिटनेस भी बनी रहती है।
0: जी बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और आपको इतने सारे दोस्तों ने सलाम भेजा है, जय हिंद सर लिखकर भेजा है, यहाँ पर दोस्त ने अपना नाम नहीं लिखा, माफी चाहूंगी।

0: उस नाम लिखते तो शायद आसान हो जाता मेरे लिए पढ़ना। संदेश टू सोल्जर्स का नियमित श्रोता हूँ। तिरुचिरापल्ली विजय कुमार ने आपको नमस्कार भेजा है और सेना नायक इंस्पेक्टर शिव शंकर जी को जय हिंद वंदे मातरम इन्होंने कहा है। इनकी राष्ट्र सेवा के लिए हमारा हृदयपूर्ण नमस्कार आप स्वीकार करें।
1: सभी को जय हिंद मेरा
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों संदेश भेजने के लिए। अच्छा यहाँ पर एक संदेश आया है, नाम इन्होंने नहीं लिखा पर ये कहा है कि अगर हम फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे हम जब डिग्निटी की बात होती है, साहस की बात होती है, समर्पण की बात होती है, ये आम जनमानस को भी हम कैसे प्रेरित करें कि वो भी अपने जीवन में आत्मसात करें, कैसे उस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को अपनी जिंदगियों में शामिल करें।
1: डिसिप्लिन अपने अंदर से आता है, डिसिप्लिन के लिए कहीं से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को अनुशासित रखिए, अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगी आगे।
0: और वैसे भी हमारे फौजी अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, जब भी हम इनकी गाथा सुनते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से जब आप घर घर तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन डिसिप्लिन सब हमें मिल जाता है। संदेश हमारे पास आया है यहाँ पे यश शिंदे का और इनको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। जय भारत वंदे मातरम इन्होंने लिख भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। जय हिंद लिख भेजा है मोनू सेठ ने और इन्होंने लिखा है मत देख लेना निगाह उठाकर मेरे वतन की तरफ वरना वक्त भी तुम्हारा होगा जगह भी तुम्हारी होगी बस तिरंगा हमारा होगा। बहुत खूब। अगला संदेश हम तक पहुंचा है यहाँ पर शबनम का बीके कॉलोनी से और बीके दत्त कॉलोनी से और ये कह रही है कि जब आपको प्रथम ड्यूटी मिली और ये इन्हीं का गांव है जहाँ आपको मिली और ये बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप गैंगटॉक से सीधा यहाँ आकाशवाणी स्टूडियोज पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर अदा कर रहे हैं सभी दोस्त। मंसूर का यहाँ पर संदेश आया जय हिंद। यहाँ पर पीयूष ने संदेश भेजा है। चेतन पटेरिया ने ग्वालियर से संदेश भेजा है। यहाँ पर समय कम है संदेश पूरे नहीं पढ़ पाऊंगी लेकिन हम शिवशंकर कुमार जी को आपके संदेशों से जरूर अवगत कराएंगे। संदेश भेजने वालों में हमारे पास बिजनौर से संदेश है और ये है चरण कुमार का और बहुत बहुत शुक्रिया दो संदेश भेजने का। शिव शंकर कुमार जी संदेश भेजा है इन्होंने। शिव पांडे लखनऊ से संदेश भेज रहे हैं। मोनिश इद्रिस ने बिलासपुर से संदेश भेजा है। संदेश भेजने वालों में बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, हम शुक्रिया देना चाहते हैं आपका। नितिश कुमार ने हमें संदेश भेजा है। देखिए आपसे प्रेम करने वालों की फहरिस्त बहुत बड़ी है और हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात को जानकर कि हमारी फौजियों से कितना प्रेम किया जाता है। अनिल कुमार का चंपावत उत्तराखंड से संदेश आया है। संदेश भेजने वालों में पंडित स्वार्षद संदेश भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। संदेश भेजने वालों में से एक क्लास 12 के स्टूडेंट भी हैं जो एनडीए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अजय अहिरवार ने संदेश हमें भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आप सभी का संदेश भेजने के लिए। और इंस्पेक्टर शिवशंकर कुमार जी जो SSP में कार्यरत हैं, आजकल गैंगटॉक में है, आपने जिस तरह से व्याख्या की और आप SSB का नाम ऊंचा कर रहे हैं, आप देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। संदेश भेजने वालों में और भी कई दोस्त हैं। KKS रायपुर छत्तीसगढ़ से संदेश आया है यहाँ पर दोस्त आपका नाम है KKS रायपुर CG इन्होंने लिखा है। क्या जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका महोदय। आप आम जनमानस में सैनिक जैसी कर्तव्य निष्ठा और श्रेष्ठ नागरिक बनने की प्रेरणा कैसे दी जा सकती है इस पर हमने भी बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अगर किसी का नाम मैं यहाँ पर नहीं ले पाई हूँ तो आप सभी से माफी चाहूंगी। अवधेश कुमार का औरंगाबाद बिहार से संदेश है। सुमन कर्माकर का सोनितपुर आसाम से संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश हम तक पहुंचे इसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं इंस्पेक्टर शिव कुमार जी का जो कार्यरत हैं गैंगटॉक में और सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज में आने के लिए और हमें SSB से जुड़ी हुई इतनी सारी बातों से अवगत कराने के लिए।
1: धन्यवाद सभी को। सभी को जय हिंद। मैं देश के युवाओं से भी इतना कहना चाहूँगा, अपने सपनों पर भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सभी जी जो भी देश के युवा है, देश के सेवा और सुरक्षा बल में आना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अपनी फिटनेस को और अनुशासन को बनाए रखिए, आप जरूर चयनित होइएगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सबके लिए कि अपने जिम्मेदार

0: और पूरी ईमानदारी के साथ काम करते रहिए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान की बात है। सभी को जय हिंद।
1: जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी, एसएसबी से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होने के लिए और इतनी सारी बातें साझा करने के लिए।

इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। कार्यक्रम युववाणी में मैं हूं आज आपके साथ आपकी रेडियो साथी रानी राजश्री। दोस्तों, कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम कुछ खास विषयों पर चर्चा तो करेंगे ही और साथ ही साथ हम आपको सुनवाएंगे कुछ गीतों को। तो चलिए चर्चा के साथ कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस विषय पर बात करते हैं, अक्षय ऊर्जा दिवस जो कि आज के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, आज जब दुनिया तेजी के साथ बदल रही है, हमारी ऊर्जा की जरूरतें भी लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे समय में अक्षय ऊर्जा हमारे लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आई है। दोस्तों, भारत में हर वर्ष 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को सौर, पवन, जल विद्युत और जैव ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के महत्व के प्रति जागरूक करना है।

दोस्तों, हमारे आसपास ऊर्जा के कई ऐसे स्रोत मौजूद हैं जो प्रकृति हमें बार बार उपलब्ध कराती है। सूरज की रोशनी, हवा और पानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इनका इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जाती है और पारंपरिक ईंधनों पर हमारी निर्भरता कम की जा सकती है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि अक्षय ऊर्जा पर्यावरण को अपेक्षाकृत कम नुकसान पहुंचाती है और प्रदूषण घटाने में हमारी मदद करती है। दोस्तों, आज भारत भी सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। गांव में सौर ऊर्जा से सिंचाई, घरों में बिजली और छोटे व्यवसायों को ऊर्जा उपलब्ध कराने की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है और किसानों की ऊर्जा संबंधी जरूरतें भी पूरी हो सकती है। दोस्तों, ग्रामीण भारत में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। गांव में उपलब्ध फसल अवशेष, गोबर, सूखी पत्तियां और जैविक कचरा बायोमास ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। युवा इनका सही उपयोग करके बायोमास संयंत्र और जैविक खाद तैयार करने जैसी पहल की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, इससे कचरे का बेहतर प्रबंधन होगा और रसोई गैस और रासायनिक खाद पर निर्भरता भी कम की जा सकती है। दोस्तों, इसके साथ ही गांव में युवा सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए लोगों को जागरूक हम कर सकते हैं। खेतों में सोलर पंप, घरों और सामुदायिक भवनों पर सोलर पैनल और सोलर स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: वेलकम बैक दोस्तों, कार्यक्रम

रेडियो वाणी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम में चलिए अब बात करते हैं राजीव गांधी जी के बारे में, क्योंकि आज है इनकी जयंती। दोस्तों, इनकी जयंती हमें सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री को याद करने का अवसर नहीं देती, बल्कि उस दौर को भी याद दिलाती है जब भारत तेजी से बदलती तकनीक और नई सोच की ओर बढ़ रहा था। राजीव गांधी जी का मानना था कि देश की तरक्की के लिए आधुनिक तकनीक, शिक्षा और युवाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। आज जब मोबाइल और इंटरनेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, तब उनकी दूरदृष्टि और भी प्रासंगिक लगती है। दोस्तों, राजीव गांधी जी ने देश के युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर देने पर जोर दिया। उन्होंने कंप्यूटर और संचार तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उस समय जो चीजें नई और मुश्किल लगती थीं, वही आज हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक हिस्सा है। ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर डिजिटल भुगतान और घर बैठे जानकारी हासिल करने तक तकनीक ने हमारी जिंदगी को काफी आसान बनाया है। लेकिन तकनीक का सही इस्तेमाल तभी है जब उसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आज के युवाओं के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि वे तकनीक को केवल मनोरंजन का साधन न बनाकर ज्ञान, रोजगार, नवाचार और समाज सेवा का माध्यम बनाएं। दोस्तों, राजीव गांधी जी की जयंती पर उन्हें याद करने का सबसे अच्छा तरीका हमारे लिए यही होगा कि हम आधुनिक भारत के निर्माण में अपनी भूमिका सच्ची ईमानदारी के साथ निभाएं, युवा नई सोच अपनाएं, शिक्षा को महत्व दें और तकनीक का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। यही एक ऐसे भारत की ओर कदम होगा जो आधुनिक भी हो और संवेदनशील भी।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: दोस्तों, विकसित भारत 2047 का सपना केवल सरकार की योजनाओं से पूरा नहीं होगा, इसमें युवाओं की सक्रिय भागीदारी सबसे जरूरी है। आज का युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है। हमें शिक्षा, कौशल, तकनीक, नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए नए अवसर पैदा करने होंगे। गांव से लेकर शहरों तक युवा डिजिटल तकनीक का सही उपयोग कर रोजगार और विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इसी क्रम में ये वार्ता सुनते हैं जिसका विषय है विकसित भारत 2047, युवाओं की भूमिका। वार्ताकार हैं अंशी सिंह।
5: नमस्कार, मैं अंशी सिंह। आज मैं आपके समक्ष विकसित भारत 2047, युवाओं की भूमिका विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत आज एक ऐसी ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है जहाँ उसके सामने अपार संभावनाएं हैं। वर्ष 2047 में जब देश अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब एक विकसित, आत्मनिर्भर, समृद्ध और विश्व में अग्रणी भारत की परिकल्पना की जा रही है। यह केवल सरकारों या नीतियों का लक्ष्य नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सामूहिक संकल्प है। इस संकल्प को साकार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देश की युवा शक्ति की होगी। भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है और यही युवा जनसंख्या उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा जब युवा जागरूक, शिक्षित, कुशल, जिम्मेदार और नवाचारी बनकर राष्ट्र निर्माण के सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। दोस्तों, आज का युग तेजी से बदलती तकनीकों, डिजिटल क्रांति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का युग है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, अंतरिक्ष विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी जैसी आधुनिक तकनीक दुनिया की दिशा तय कर रही है। ऐसे समय में युवाओं को केवल तकनीक के उपभोक्ता बनकर नहीं रहना है, बल्कि ऐसे निर्माता और नव प्रवर्तक भी बनना है। विकसित भारत का अर्थ केवल ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, आधुनिक शहर नहीं है, बल्कि ऐसा राष्ट्र है जहां ज्ञान, विज्ञान, नवाचार, मानवीय मूल्यों का संतुलित विकास हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं को नई तकनीकों के प्रति जागरूक होकर अपने कौशल को लगातार विकसित करना होगा। वर्तमान समय में स्टार्टअप और उद्यमिता युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोल रहे हैं। भारत विश्व का एक प्रमुख स्टार्टअप केंद्र बन चुका है। अनेक युवा नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन रहे हैं। विकसित भारत की दिशा में यह परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि युवा अपनी रचनात्मकता, वैज्ञानिक सोच और नवाचार की क्षमता का उपयोग करके नई समस्याओं का समाधान विकसित करें, तो वे न केवल आर्थिक विकास को गति देंगे बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकेंगे। आत्मनिर्भर भारत का आधार भी यही युवा उद्यमिता है। दोस्तों, शिक्षा किसी भी विकसित राष्ट्र की सबसे मजबूत नींव होती है। विकसित भारत 2047 के लिए आवश्यक है कि युवा केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित न रहे, बल्कि ज्ञान, कौशल और चरित्र का समन्वय विकसित करें। नई शिक्षा नीति भी इसी दिशा में बहुआयामी शिक्षा, कौशल विकास और व्यावहारिक ज्ञान पर बल देती है। आज के युवाओं को जीवन भर सीखने की प्रवृत्ति अपनानी होगी, क्योंकि बदलती दुनिया में ज्ञान और कौशल लगातार अपडेट होते रहते हैं। जो युवा सीखने और स्वयं को बदलने के लिए तैयार रहेंगे, वही भविष्य का नेतृत्व करेंगे। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक विकास भी सुनिश्चित हो। समाज में व्याप्त अशिक्षा, गरीबी, लैंगिक असमानता, नशाखोरी, भेदभाव और कुरीतियों को दूर करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। युवा यदि अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करने, सामाजिक जागरूकता फैलाने और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने का प्रयास करें, तो वे समाज अधिक समावेशी और प्रगतिशील बन सकता है। एक जागरूक युवा केवल अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचता, बल्कि समाज और राष्ट्र के हित को भी प्राथमिकता देता है। पर्यावरण संरक्षण भी विकसित भारत की यात्रा का महत्वपूर्ण पहलू है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जल संकट और जैव विविधता का क्षरण आज वैश्विक चुनौतियां बन चुकी हैं। यदि विकास पर्यावरणीय संतुलन को नष्ट करके किया जाए तो यह स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए युवाओं को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनना होगा। वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा बचत, प्लास्टिक के उपयोग में कमी और स्वच्छता जैसे छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। एक हरित और स्वच्छ भारत ही वास्तव में विकसित भारत कहलाएगा। डिजिटल युग में जागरूकता का महत्व और भी बढ़ गया है। सोशल मीडिया सूचना तक पहुंच को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ फेक न्यूज, साइबर अपराध और भ्रामक जानकारी जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं। युवाओं को डिजिटल एजुकेशन विकसित करनी होगी और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनना होगा। उन्हें किसी भी सूचना को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए तथा तकनीक का उपयोग समाज और राष्ट्र के हित में करना चाहिए। डिजिटल जागरूकता विकसित भारत की आधारशिला है। लोकतंत्र की मजबूती में भी युवाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत का लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब युवा अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी तैयार रहेंगे। मतदान, सामाजिक सहभागिता, जनहित के मुद्दों पर जागरूकता और संविधान के मूल्यों का सम्मान एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। विकसित भारत का निर्माण केवल आर्थिक विकास से नहीं, बल्कि मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं और जागरूक नागरिकों से भी होता है। स्वास्थ्य और फिटनेस भी राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। स्वस्थ युवा ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों की देखभाल आवश्यक है। योग, खेल, संतुलित आहार और सकारात्मक सोच युवाओं को ऊर्जावान और उत्पादक बनाते हैं। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी आवश्यक है, क्योंकि तनाव और प्रतिस्पर्धा के इस दौर में मानसिक संतुलन बनाए रखना सफलता की कुंजी है। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता भी महत्वपूर्ण है।

0: दोस्तों, अभी आप वार्ता सुन रहे थे विकसित भारत 2047 युवाओं की भूमिका। इस विषय पर वार्ताकार थी अंशी सिंह। दोस्तों, शांति की बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन शांति केवल भाषणों से बिल्कुल नहीं आती। इसकी शुरुआत हमारे अपने व्यवहार से होती है। हम अपने घर में, स्कूल में, काम की जगह और समाज में दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह छोटी छोटी बातें मिलकर बड़े बदलाव की नींव रखती है। अगर हम हर असहमति को झगड़े में बदलने की बजाय बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें तो शांति की दिशा में एक अहम कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, आज दुनिया कई तरह की चुनौतियों से गुजर रही है। कहीं संघर्ष है, कहीं हिंसा है, तो कहीं नफरत और गलत सूचनाएं लोगों के बीच दूरी बढ़ा रही है। ऐसे में शांति का संकल्प और भी जरूरी हो जाता है। खासकर हम युवाओं की भूमिका इसमें बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं युवा ही समाज की सोच और भविष्य को नई दिशा देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सोशल मीडिया में दोस्ती करना जितना आसान कर दिया है, उतना ही मुश्किल वास्तविक रिश्तों को समय देना भी बना दिया है। आज हमारी फोन की स्क्रीन पर सैकड़ों दोस्त, फॉलोअर्स और संपर्क हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब हमें सच में किसी की जरूरत होती है, तब इनमें से कितने लोग हमारे साथ खड़े होते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया की दोस्ती में बातचीत कुछ सेकंड में शुरू होती है। किसी की पोस्ट जब पसंद आई, कमेंट किया और फिर धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई। कई बार इससे अच्छे रिश्ते भी बनते हैं। दूर रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों से जुड़े रहना भी आसान हो गया है, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम आभासी दुनिया के रिश्तों को ही वास्तविक रिश्तों का विकल्प मानने लगते हैं। दोस्तों, इसीलिए सोशल मीडिया को छोड़ने की जरूरत नहीं है ऐसे में, बल्कि उसके इस्तेमाल का संतुलन के साथ आप प्रयोग करें। रिश्तों की असली खूबसूरती स्क्रीन पर दिखाई देने वाली तस्वीर में नहीं, बल्कि उस भरोसे में होती है जो मुश्किल समय में हमारे साथ खड़ी रहती है। सोशल मीडिया हमें लोगों से जोड़ सकता है, लेकिन रिश्तों को मजबूत बनाने का काम हमारा और आपका व्यवहार ही करता है।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: कार्यक्रम में चलते चलते APJ अब्दुल कलाम जी के इस विचार के साथ कि अपने कार्य में सफलता पाने के लिए आपको एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जी हाँ, लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा और ध्यान से काम करना बेहद जरूरी है। तो इन्हीं बातों के साथ कि आप सभी अपनों के साथ स्नेह के साथ, प्यार के साथ, मिठास के साथ रहेंगे, अपनी रेडियो साथी रानी राष्ट्रीय को कार्यक्रम से अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति आशीष वर्मा की।
1: हेलो, दिल की धड़कन, बीट का वाइब्रेशन,
2: आपकी चॉइस, हमारा डेडिकेशन।
1: कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
3: हेलो हेलो
4: हेलो,
2: आपके दिल की आवाज आपके रेडियो सेट पर।

0: कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम के साथ मैं आशीष वर्मा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपसे बातचीत का सिलसिला, जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर।
1: हेलो फरमाइश
0: जी, कार्यक्रम हेलो फरमाइश, अपना परिचय दें सर।
1: जी, मैं मुकेश गोस्वामी बोल रहा हूँ, उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से।
0: कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी सर, अभी सावन का पर्व चल रहा है तो मैं आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ सावन पर्व की।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, कामना करते हैं कि आपके भी जीवन में सावन जैसी हरियाली हो, खुशहाली की बरसात हो और मौसम जैसा सुहाना रहता है वैसे ही आपका जीवन भी खूबसूरत हो। क्या करते हैं सर?
1: जी मैं प्राइवेट काम करता हूँ, हमारे बगल में NTPC है सीपत, वहाँ विद्युत उत्पादन होता है, वहीं काम करता हूँ।
0: तो आपका क्या काम रहता है वहाँ पे?
1: जी वहाँ मशीन का देखरेख रहता है सर, काम तो ज्यादा नहीं रहता, मशीन का मेंटेनेंस देखना है, कितना वोल्टेज आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, इसको मेंटेनेंस करके बताना रहता है मेरा।
0: तो ये तो बहुत जिम्मेदारी का काम है फिर तो आपका भी।
1: जी मेरे को 2 साल हो गया सर।
0: अच्छा, तो
1: कार्यक्रम में मेरा पहली बार फोन लगा है, बहुत आनंद आ रहा है आपसे बात करके, फोनिंग कार्यक्रम मेरे को बहुत पसंद है ज्यादा।
0: बहुत बढ़िया, आपकी खुशी ही हमारी असली कमाई है। और आप काम जो कर रहे हैं इसके लिए, क्या आपने कोई डिप्लोमा कोर्स भी किया था, ITI वगैरह समथिंग?
1: जी इलेक्ट्रिकल में ITI किया हूँ सर।
0: अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है अपना काम करते हुए आपको?
1: जी बहुत आनंद आता है सर काम करके, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर और जिम्मेदारी को बखूबी निभाना पड़ता है हम लोगों को।
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया
1: सर। मैं वैसे कार्यक्रम आपका मोबाइल ऐप के माध्यम से सुनता हूँ सर
0: जी,
1: बहुत आनंद आता है कार्यक्रम सुन के, खासकर आप लोगों से बात करके और श्रोताओं का बात सुन के भी बहुत आनंद आता है।
0: बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही जुड़े रहिए, बातचीत का सिलसिला हमसे बनाए रखिए, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बताइए आज क्या पसंद है आपकी?
1: फिल्म का नाम है सिंदूर।
0: हाँ, पतझड़ सावन बसंत बहार
1: लगा ना। मैं अपने परिवारजनों का नाम लेना चाहता हूँ।
0: जी बिल्कुल, बता दे सर।
1: 2 बेटियां हैं, एक आशी गोस्वामी और एक सिवनिया गोस्वामी, और हमारी धर्म पत्नी है मधु गोस्वामी। जैसे हमको कार्यक्रम समय सुनने का समय मिलता है, हम लोग पूरे परिवार बैठ के सुनते हैं कार्यक्रम।
0: बहुत बढ़िया, अच्छा है सर, आप लोग हैं तभी तो आकाशवाणी भी है और ये कार्यक्रम भी है, आप सुनते हैं सराहते हैं और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आपके लिए बनाते रहें, पेश करते रहें और आप तक ये जो प्रस्तुतियां हैं उनको पहुंचाते रहें।
1: सर आपसे बात करके मन एकदम गदगद हो गया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए ठीक है, फिर आपकी पसंद वाला गीत सिंदूर फिल्म से जिसे आपने सुनना चाहा है, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में ये गीत है, सुनते हैं आपकी पसंद वाला ये गीत।

0: जी कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: जी मैं जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल बोल रहा हूँ।
0: जी कार्यक्रम में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं?
1: ठीक है भैया, आप अपना बताएं कैसे हैं आप?
0: बस बहुत बढ़िया। और गाजीपुर में कहाँ से बताया? जमानिया के पास
1: रेलवे स्टेशन है, स्टेशन बाजार है।
0: अच्छा अच्छा,
1: ठीक। सामने अपनी दुकान है।
0: किस चीज की?
1: जनरल स्टोर की दुकान है।
0: बहुत बढ़िया।
1: तो वही बैठ के आपका फेसबुक पर देख रहे थे तो नंबर दिखाई दिया।
0: हाँ।
1: तो हमने कहा कि जरा फोन लगा के ट्राई करें
0: और देखिए तो मिल गया।
1: लग गया
0: जी। बिल्कुल।
1: म्यूजिक गैलरी में हमेशा ईमेल करते रहते हैं, नाम भी शामिल होता है।
0: जी जी जी जी। अच्छा है सर, आप लोग जुड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम आपको?
1: अच्छा लगता है। जैसे वैसे मैं आकाशवाणी से 48 वर्षों से जुड़ा हूँ। ठीक है, LD पत्र के धन्यवाद होता है, उसमें अपने विचार भी भेजता हूँ, हर हफ्ते शामिल भी होता है वहाँ पर।
0: अच्छा है सर, आप समय निकालते हैं, अपने काम को भी करते हैं और इन आकाशवाणी के जो भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, फिर चाहे वो वाराणसी केंद्र का हो, ओबरा केंद्र का हो, या जिस भी केंद्र से आप जुड़े रहते हैं।
1: हाँ, जिस 22 केंद्रों से मतलब रोज जुड़ा हूँ। मतलब
0: बहुत बढ़िया।
1: मुझे इसमें गाना सुनवा दीजिएगा फिल्म स्वामी का,
0: का करूँ सजनी।
1: का करूँ सजनी, यशोदास की आवाज में। हाँ। ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: ये मुझे भी बहुत पसंद है ये गीत। इसमें उनका राजेश रोशन का म्यूजिक बहुत बढ़िया है, इंदीवर के बोल बहुत अच्छे हैं इसमें, और यशोदास की तो खैर आवाज ही खैर गजब की है, बहुत बढ़िया।
1: यशोदास की आवाज इतनी प्यारी लगती है।
0: बहुत प्यारी, बहुत प्यारी, सबसे यूनिक वॉयस है उनकी। और ये गीत जो आपने सुना है ये तो खैर बहुत ही बेहतरीन गीत है। ठीक है सर, आपकी पसंद वाला स्वामी फिल्म का ये गीत आपके रेडियो सेट पे भेज रहे हैं। सुनते रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी ओबरा से।

0: नमस्कार जी।
1: जी नमस्ते सर, अपना परिचय दें।
0: मैं राजन त्रिपाठी चुनार से बोल रहा हूँ।
1: राजन त्रिपाठी चुनार से हमें कॉल कर रहे हैं, क्या करते हैं राजन?
0: मेडिसिन शॉप की दुकान है।
1: अच्छा, मेडिकल स्टोर है आपका?
0: हाँ, मेडिकल स्टोर है।
1: बहुत अच्छी बात। कैसा चल रहा है आपका काम, ये बताइए।
0: ठीक चल रहा है।
1: काम से थोड़ा रिलैक्स होते होंगे या मेडिकल शॉप से हटते होंगे, तो आपकी अगर हॉबी की बात करें तो क्या करना अच्छा लगता है आपको?
0: हमको लगातार सीखने का मन करता है, क्या कोई नई चीज होता है सीखते रहते हैं।
1: AI को लेकर के आपका क्या विचार है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका इस समय हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: कमाल की चीज है।
1: क्या लगता है समाज के लिए कितना हितकारी है ये?
0: हर चीज का साइड इफेक्ट तो होता है, ये साइड इफेक्ट इसका भी है।
1: हाँ,
0: लेकिन ठीक है, इसका उपयोग जिस हिसाब से हो रहा है कुछ दिन में आप पहचान नहीं पाओगे क्या चीज सही है क्या चीज गलत है।
1: बिल्कुल। और सोशल मीडिया पे तो बहुत ही ज्यादा।
0: हाँ, सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा यूज है। सही दिशा में करेंगे तो आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। डायरेक्शन चेंज हो गया तो फिर बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट भी आएगा,
1: विनाशकारी भी होगा। बिल्कुल। अगर वो आपको फायदा भी दे रहा है तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी करेगा। और
0: हर चीज का दो पहलू होता है
1: जी,
0: विकास है तो उसमें विनाश भी छुपा रहता है।
1: बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ही गहन अध्ययन किया है और कम शब्दों में आपने अच्छी बात कही कि विकास के साथ साथ विनाश भी छुपा हुआ है, बस डिपेंड करता है कि हम उस चीज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक आपने सीखने सिखाने की बात कही तो बेहतर है कि अगर हम किसी चीज का इस्तेमाल अच्छी तरीके से सीख करके जान करके करें, अपना 100% दे सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं इस बारे में। राजन जी, आज क्या फरमाइश है, क्या सुनवा दें आपको?
0: गुलामी फिल्म का गाना सुना दीजिए।
1: जिहाल मस्की मुकंद रंजिश। चलिए ठीक है, आपकी पसंद का ये गीत हम आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं, सुनिए, जुड़िए जब भी आपको मौका मिले।

0: कार्यक्रम हेलो फरमाइश
1: नमस्कार सर जी।
0: जी नमस्ते, अपना परिचय दें।
1: बहुत दिन से मेरा फोन लगाया, मुझे बहुत खुशी हो रही है
0: जी। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप?
1: मैं महाराष्ट्र ग्राम कराड़ जिला सातारा के तुकाराम बजाज बोल रहा हूँ।
0: हाँ, आपसे तो हमारी काफी बातचीत हुई है पहले।
1: जी जी
0: कैसे हैं सुकाराम जी?
1: बहुत अच्छा है, आप कैसे सर जी?
0: बस बढ़िया, बदलता मौसम कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा है, मौसम सुहाना है।
0: और आपका काम कैसा चल रहा है अभी?
1: काम चल रहा है, थोड़ा काम रहता है बरसात के दिन में।
0: चलिए ठीक है, कभी कभी रेस्ट भी मिलना चाहिए ना, थोड़ा आराम भी मिलना चाहिए। और ये मौसम, ये जो सावन का मौसम है, इसको भी इंजॉय करिए तब तक। और क्या, काम तो खैर चलता ही रहेगा जिंदगी भर।
1: जी जी मानते हैं सर। उधर कैसा है बारिश?
0: हम लोग की तरफ यहाँ पे, यहाँ तो अभी फिलहाल 3 दिन से बारिश हो रही है।
1: हमारे इधर खुल गई बारिश,
0: हाँ
1: 5-6 दिन हो गए।
0: नहीं, आज जब हमें आप कॉल कर रहे हैं, आज दिन मंगलवार है और संडे से यानी रविवार से अच्छी बारिश हमारे यहाँ हो रही है। ये पूरा पहाड़ी एरिया है और जहाँ आपने कॉल किया है ओबरा नगरी, इसे हम लोग ऊर्जा नगरी के नाम से भी जानते हैं।
1: हाँ, बोलते हैं ना
0: जी, सोनभद्र ऊर्जा की नगरी भी बोलते हैं इसको। बहुत ही अच्छा पहाड़ी क्षेत्र है और खास तौर से इस मौसम में, बारिश के मौसम में, तो यहाँ की जो खूबसूरती है वो देखते बनती है। और तो बताइए, आज क्या पसंद है, क्या सुनवा दें आपको?
1: राजा और अंग बसंती
0: गया, मस्ताना मौसम आ गया। हाँ, अंग बसंती यानी सावन के मौसम में बसंत याद आ रहा है आपको? चलिए ठीक है सर।
1: मित्रों का नाम डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: बता दें, मित्रों का नाम बता दें जिनको आप डेडिकेट करना चाहते हैं ये गीत।
1: सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: शुक्रिया।
1: हमारे मित्र आर्यन पाटिल जी, PSIRS जी, श्रीकांत भंडारे जी, विजय पाटिल तारुकर जी, रमेश जाधव जी, उदय काळे जी, रामचंद्र कोरडे जी, सुनील शिंदे जी, संतोष शिंदे जी।
0: चलिए बहुत बढ़िया, तो ठीक है, आपको और जिन दोस्तों को आपने ये गाना डेडिकेट किया है सबको सुनवाते हैं आपकी पसंद वाला राजा और रंग फिल्म का ये गीत।

0: तो श्रोताओं, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में ये था आपसे बातचीत का आज का सफर, जिसे आपके लिए पेश किया आशीष वर्मा ने। गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति थी आशीष वर्मा की और प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा।

102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में यानी कि शाम के 6 बजे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ है हम प्रमोद कुमार सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास आ उद्यमशीलता विभाग और समाज कल्याण विभाग के कार्ययोजनन के समीक्षा कई हैं। एगो रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग की कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार आईटीआई का पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण विकसित करने के साथ ही अप्रेंटिस तथा ऑन जॉब प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाए ताकि प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास को रोजगार के साथ वैश्विक अवसरों से भी जोड़ने की आवश्यकता है। श्री योगी ने कहा कि आईटीआई और उद्योगों के बीच निरंतर संवाद की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर नियमित रोजगार मेलों का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री ने आज ही समाज कल्याण विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के सुव्यवस्थित संचालन के लिए व्यापक बदलाव पर जोर दिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र लेकिन अब तक वंचित वृद्धजनों के आवेदनों का सत्यापन कराते हुए यथाशीघ्र उन्हें पेंशन से लाभान्वित कराया जाए। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों का बैठकी आज नई दिल्ली में भइल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जापान का रक्षा मंत्री शिंजिरो काइजुमू के सा अध्यक्षता में भइल बैठकी में समुद्री सुरक्षा के मजबूत कैले, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी के बढ़ावा देवे और रणनीतिक भरोसा बढ़ौले पर चर्चा भइल। दोनों मंत्री लोग समुद्री सुरक्षा सहयोग के समझौता ज्ञापन पर दस्तखत कई हैं। श्री सिंह कहले कि एशिया का दुई गो प्रमुख लोकतंत्र भइले के नाते भारत और जापान पे शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित कैले का बढ़हन जिम्मेदारी हो। श्री राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष नृपेन मिश्रा आज अयोध्या में बतौले कि मंदिर परिसर में ज्यादातर निर्माण कार्य 30 सितंबर ले पूरा हो जाये। वहां के जानकारी देली कि एक बाद खासी तौर से ऑडिटोरियम और संग्रहालय का कार्य चलत रही। श्री मिश्रा कहले कि संग्रहालय का निर्माण सबसे बड़हन चुनौती हो। यहां 20 गैलरी बनावल जाई जैमे आधुनिक इमर्सिव टेक्नोलॉजी के जरिया से श्रद्धालुओं के मंदिर परिसर और भगवान राम के जिंदगी से जुड़ल प्रसंगन के दिव्य एहसास करावल जाई। गैलरी नंबर 7 में मंदिर परिसर के कई गो मंदिरन आ निर्माण का वर्चुअल दर्शन करौले का योजना हो। गैलरी नंबर 17 में भगवान राम के वन गैले आ नदियन से जुड़ल प्रसंगन के आधुनिक तकनीक से दिखावल जाई। झांसी का 140 साल पुरान परीक्षा बांध के अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली चुकल हो। सिंचाई आ जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग ICID ऐतिहासिक बांध के विश्व धरोहर सिंचाई संरचना WHS के रूप में मान्यता देले हो। एगो रिपोर्ट।
2: सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अनिल गर्ग ने बताया कि 14 अक्टूबर को फ्रांस के मार्सिले में आयोजित होने वाले 26वें ICID अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और 77वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक के दौरान परीक्षा बांध को WHIS पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। झांसी में बेतवा नदी स्थित परीक्षा बांध ने 140 वर्षों से बुंदेलखंड की सिंचाई प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बेतवा नहर प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है जो बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि के लिए पानी की आपूर्ति करती है। परीक्षा बांध लगभग 1174 मीटर लंबा और नदी तल से लगभग 16.8 मीटर ऊपर स्थित है। सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक के बरखा का सिलसिला जारी हो। मौसम विभाग अगला 3 दिन ले प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी

102.7 पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार हैं विदुषी गिरजा देवी। शाम 6:10 पर कार्यक्रम होगा ग्राम जगत। शाम 6:50 पर कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। श्रोताओं, सुगम संगीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:45 पर, रात्रि 8:30 पर और रात्रि 8 बजे। कार्यक्रम सबरस हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:31 पर। भूले बिस्तरे गीत ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे रात्रि 9:15 पर और कार्यक्रम रसधारा आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की।

0: श्रोताओं, खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार कमला कुमारी, पुत्री बंगाली कुमारी, निवासी राय कॉलोनी, बीचपुर, जनपद सोनभद्र, जो दिनांक 4 जून 2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है: उम्र 22 वर्ष लगभग, लंबाई 5 फीट, हुलिया गोरा रंग, लंबा चेहरा, एक हरा बदन, पहनावा है पिंक कलर का सलवार सूट पहनी है। श्रोताओं, एक और सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार नेहा पत्नी अजय कुमार, निवासी ग्राम देवराड़, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र, जो दिनांक 23/6/2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है: उम्र 25 वर्ष, लंबाई 5 फीट 2 इंच, हुलिया सांवला रंग, लंबा चेहरा, इखरा बदन, पहनावा नारंगी रंग की साड़ी और चप्पल। श्रोताओं, इन दोनों के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। FM 102.7 पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम। गौरी भौजी आपके भी राम राम।
1: बता सा बहन आपके भी राम राम। आज बहुत दिन बाद अपनी बैठक में हम लोग एक साथ सही समय से जुट गए नहीं जा।
0: बिल्कुल। और आज के कार्यक्रम का थाती लेके मने जानकारी भैल मन फेर है, मौसम है, बाजार भाव सब कुछ
1: बिल्कुल
0: बाकी देखा। सबसे पहले ना गांव जवार के हाल समाचार मिलने के बाद ही हम सब कुछ सुनी ला जा और गुनी ला जा। तो बतावे कुछ अपन हाल चाल।
1: तो देखा बता सा बहन अपन तक गाँव गिराए टोला मोहल्ला सब कुछ और मंगल बा। लेकिन इस समय जो रह की बारिश होत बा तो जब होत बा तो ऐसा झोड़िया के होत बा कि जौन जीव जंतु हन विषैला सब निकल के रेंगे लगा था।
0: और जब घाम होता तो ऐसा होत बा कि लगा कि जेठ के दोपहरिया फेल हो जाए।
1: मारे बचे की जरूरत बा कि छहाए की जरूरत बा इतना तेज धूप बा।
0: बिल्कुल गौरी भौजी। लेकिन देखा अगर हम लोग अपने स्वास्थ्य के ध्यान न रखल जाये तो बहुत सारा काम प्रभावित हुई और मिलजुल करके काम करेला तो देखा हर काम तैयार हो जाला। और देखा अपन भारत देश का तो पहचान ही है बा गौरी भौजी, एकता अखंडता और सद्भावना का।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और देखें आज का तारीख मने 20 अगस्त के प्रतिवर्ष मनावल जाला सद्भावना दिवस, जो उनकी राजीव गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य में मनावल जाला। और आज देखा उनकर 82वीं जयंती है। और गौरी फौजी देखें राजीव गांधी जी का जन्म जो है कि 20 अगस्त सन 1944 के भैर रहल। और राजीव गांधी जी 1984 में प्रधानमंत्री बनले, मतलब कि देखें 1989 तक प्रधानमंत्री बनल रहना।
1: हाँ हाँ।
0: 40 साल का आयु में सबसे युवा प्रधानमंत्री अपन राजीव गांधी जी रहना। और देखा यो कहल चाहब कि सद्भावना दिवस के महत्व और उद्देश्य के बारे में बात अगर करल जाए तो देखा भारत में रहे वाला सब धर्म लोगन के बीच राष्ट्रीय एकता, शांति, सहानुभूति और सांप्रदायिक सद्भाव के बढ़ावा देवे खातिर मनावल जला।
1: बिल्कुल बिल्कुल। बता सा बहन अपने अंदर प्रेम सौहार्द का भावना और एक दूसरे के प्रति भाईचारा वाला भावना अगर है तो अलग अलग जाति और भाषा के बीच भी शांति, राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव इस सब देखा जो है बनल रहे।
0: बिल्कुल। उद्देश्य भी
1: मंशा भी है
0: कि विभिन्न धर्म और संस्कृति के बीच जो है कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव के प्रोत्साहित करल जाए,
1: जैसे सब लोग आपस में मिल के जुल के रहें।
0: बिल्कुल। और देखा सही बात है गौरी भौजी की अगर कल जाला ना कि जैसे मिलजुल के रहले पर केहू भी केहू के नुकसान नहीं पहुंचा सके, अगर वहीं अगर अकेले हऊ तो देखा कई तरह के समस्या झेले के पड़ जाला। तो ऐसे कहल जाला कि एकता में बड़ी शक्ति है। और जब इनकरी आज का दिवस सद्भावना के रूप में मनावल जा रहा बा तो कहीं ना कहीं देखा अपन पंचायती भी एक तरह से कहल जाए कि वो मिसाल है कि देखा अपने पंचायती में घरे तीन लोगन भी जुटे नी, मनसेदू लोगन भी जुटे ना।
1: हाँ, हाँ,
0: और चर्चा होला देखा तमाम तरह का, जैसे शिक्षा से जुड़ल बा, मनोरंजन बा और योजना बा, तमाम तरह के जानकारी देवल सीखल जाला।
1: जैसे बहन जैसे मान ले कि दिवस याद दिलावेला कि जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के भेदभाव से ऊपर उठ के हमके एक भारत, श्रेष्ठ भारत का निर्माण करे के है।
0: बिल्कुल। और देखा जब ऐसा सोच रही गौरी भौजी तो कोनो भी परेशानी, कोनो भी बाधा अपने देश के विकास में रोड़ा नहीं बन सकेला। तो ये मंशा देखा हम लोगों के हमेशा बनल रहे के चाहिए। और मंशा इहो रहे के चाहिए कि देखा बरसात के मौसम में थोड़ा सा हम लोगों के अपने स्वास्थ्य के साथ साथ बहुत सारी चीज बने, जैसे कि लोग बरसात में मौसम थोड़ा बढ़िया हो जाला तो लोग घूमे फिरे जाए के बड़ा मन बनावे ले। तो देखा घूमे फिरे के हम लोगन जोन भी आसपास के जगह बा वहां घूम फिर ले ले। लेकिन जहां नदी नाला बा या फिर जहां पानी के स्तर जल के बढ़ रहा बा तो वहां जाए से बचे के चाहिए, वहां फोटो खिंचवावे से बचे के चाहिए आसपास। ऐसे का होला कि देखा जाने अनजाने कभी दुर्घटना हो जाला भाई, देखा जान के तो विपत्ति आवेला नहीं, बाधा आवेला नहीं,
1: सरक जाए आ ज्यादा करके बता सब बचवन उत्पाती होलन
0: जो युवा लोगन हुआ।
1: हाँ,
0: तो देखा जो अपन प्रधानमंत्री जी रहना युवा ही रहना लेकिन ऐसा काम कर गए कि देखा उनके ना रहले पे भी उनकर दिन के याद कर रहा बा, आदमी कृतित्व के याद कर रहा बा। तो हम लोगन के ऐसा काम करे के चाहिए कि मतलब हम लोगन के समाज में ना ऊंचा होके परिवार के जोन बाकी नाव रोशन होके।
1: देखे राजीव गांधी द्वारा कई गए शांति प्रयास पर सब लोग देखे गर्व करेला।
0: बिल्कुल।
1: राजीव गांधी जी न केवल भारतीय जमीन पर सांप्रदायिक सद्भाव के बहाल करे के कोशिश कैले बल्कि अन्य देश में भी शांति और व्यवस्था बहाल करे के प्रयास कैले।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो देखे हम लोगन ना बड़ा काम सही लेकिन छोटे स्तर से ही हम लोगन अपने आप के अच्छा काम करे खातिर आगे बढ़ा सकेला और धीरे धीरे करके
1: व्यवस्था और सामंजस्य लावे में उनका दृष्टि देखे भारत के विश्व में अग्रणी बनावे के रहल।
0: बिल्कुल। तो देखे हम तो कहा कि जिंदा रहल और जीवित रहे में बहुत अंतर बा, जीवित है हम लोगन तो अच्छा काम करल जाए और जिंदा रहे के खातिर अपन स्वास्थ्य के ध्यान देहल जाए और मौसम के देखते हुए थोड़ा सा घूमल फिरल और उसे बचे के कोशिश करल जाए।
1: या
0: और
1: फिर
0: देखे जाने अनजाने
1: अगर कहीं जाते हैं तो सावधानी रखा जाए।
0: देखा बिल्कुल हाँ, जाने अनजाने कहीं गलती भी हो जाला और ऐसा गलती हो जाला कि जीवन भर के पछताए के होला। गोरी भौजी तो ऐसा ना होके कभी, लेकिन फिर भी देखा हम लोग सचेत करे के खातिर, जागरूक करे के खातिर अपने पंचेती में जानकारी शामिल भी कैले है जा। जैसे कि डूबने से मृत्यु होने पर मुआवजा प्रक्रिया और बचाव के का उपाय करल जाए, तो ये जानकारी रखे के चाहिए। तो देखिए ये विषय पर अरुण कुमार यादव जो उनके जिला आपदा विशेषज्ञ हो, उनसे सुश्री द्विवेदी जी के बातचीत बा, एक सुनल जाई। तो हम तो कहते कि बारी बारी से जानकारी और मन फेर के लोगन के बतावल जाए, ताकि लोगन के अंदर जिज्ञासा बनल रहे कि आगे का होके वाला बा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये जानकारी कहतू तो सुनल जाए,
1: सुनल जाए
0: एकदम।
2: साथियों, गर्मी का मौसम हो, नदी तालाबों में नहाने का आनंद हो, या फिर मौसम मानसून के दौरान नदियों का बढ़ता जलस्तर, प्रायः डूबने की दुखद खबरें सामने आती ही रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने पानी में डूबने से होने वाली मौत को भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखा है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जिला मुख्यालय आपदा प्रबंधन से आपदा विशेषज्ञ श्री अरुण कुमार यादव जी आए हैं। अरुण जी नमस्कार।
3: जी नमस्कार।
2: अरुण जी, हम बात करते हैं पानी में डूबकर होने वाली मौतों के बारे में। प्रायः देखा जाता है कि त्योहारों, स्नान पर्वों या फिर बारिश के दिनों में बच्चे, युवा नदी पोखरों में उतर जाते हैं और हादसे के शिकार हो जाते हैं। आपदा प्रबंधन इस हादसों को किस नजरिए से देखता है?
3: देखिए, डूबने वाली घटनाएं तो निश्चित तौर पर बहुत गंभीर हैं, और ये डूबने की घटनाएं ज्यादातर, जैसा आपने बताया कि किसी त्योहार पर्व, स्नान, ऐसे भी समय पे और गर्मियों के मौसम में जब लोग जलाशयों की ओर बढ़ते हैं तभी होती हैं, और इसमें कुछ सावधानियां बरतने से इन सभी घटनाओं को कम किया जा सकता है।
2: बिल्कुल।
3: और यही लोगों से अपील रहेगी कि जब भी जलाशयों की ओर जाएं तो इन सावधानियों को बरतें कि अपनी क्षमता के अनुसार ही नदी के अंदर जाएं, तैरने नहीं आता है तो नदी के किनारों पे स्नान करें।
2: युवाओं में बढ़ती रुचि नदी तालाब में नहाने का,
3: जी,
2: इस कारण किसी की पानी में डूबने से मौत हो जाती है, तो प्रशासन द्वारा क्या मुआवजा राशि दी जाती है, इसकी क्या प्रक्रिया है?
3: जी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डूबने की घटनाओं को अधिसूचित आपदाओं में रखा गया है। इससे डूबने से होने वाली मौत पे 4 लाख रुपए की हेतुक सहायता दी जाती है, और इस सहायता को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम डूबने की घटनाएं जब हो जाती हैं तो उनका पोस्टमार्टम कराना अनिवार्य है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पुष्टि होना जरूरी है कि इनकी मृत्यु डूबने से हुई है, और इसमें आत्महत्या और हत्या का प्रकरण नहीं होना चाहिए। इस बात पे पुलिस द्वारा रिपोर्ट लगाई जाती है, फिर वो आवेदन करके जिला मुख्यालय पे भेजा जाता है, फिर उनका अहतुक सहायता भुगतान किया जाता है।
2: जी जी, यह तो हुई मृत्यु की स्थिति किस वजह से हुई, साथ ही राहत राशि की बात। लेकिन अगर किसी को पानी से बाहर निकाला गया, डूब रहा है वो, उसे बाहर निकाला गया, तो अस्पताल पहुंचने से पहले हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि उसकी जान बचाई जा सके?
3: अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो और किसी के सहयोग से तत्काल प्रभाव से उसे बाहर निकाल लिया गया है तो निश्चित तौर पे उसे तत्काल अस्पताल ले जाना चाहिए। अगर लगता है कि इस व्यक्ति के पेट में अधिक पानी चला गया है, थोड़ा सा उसको एक करवट लेते हुए कुछ बेसिक जो जानकार व्यक्ति हैं वही उसका उपचार करें, नहीं तो तत्काल प्रभाव से अस्पताल ले जाएं उनको।
2: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये तो हुआ नदी पोखरों में होने वाली दुर्घटना और जैसा आपने बताया हत्या आत्महत्या वाला। अब थोड़ा हट के हम बात करते हैं। अक्सर देखा जाता है ना कि खदानों में, गड्ढों में या किसी निर्माण स्थल पर जहाँ कुछ बन रहा है वहाँ भी पानी भर जाता है, और यहाँ भी हादसे होते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी प्रशासन मुआवजा देता है या इसके लिए किसकी जवाबदेही तय होती है?
3: जी देखिए, इस सभी बातों को सुनने से इसमें दो प्रकरण स्पष्ट होते हैं।
2: जी,
3: एक तो डूबने से जनहानि हुई, और दूसरा कि वो जो गड्ढे बने जिसमें पानी लगे उसमें किसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होती है। तो डूबने की घटनाएं चूंकि राज्य सरकार से अधिसूचित आपदा की श्रेणी में आता है तो उनको मुआवजा तो दिया जाएगा, उसके बाद प्रशासन अपने स्तर से जांच करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई अपने स्तर से करेगी।
2: मतलब जिनका खदान था या जिनके द्वारा वो गड्ढा था।
3: जी जी
2: जी, ये तो ये बड़ी अच्छी बात हुई है। फिर भी यदि कोई हादसा बड़ी नदी, गहरे बांध ऐसे में हो जाए तो त्वरित रेस्क्यू मतलब बचाव कार्य के लिए आम नागरिक कैसे संपर्क करे? क्या इसके लिए कोई आपके तरफ से संपर्क सूत्र है? क्या हमारे यहाँ जिला स्तर पर SDRF या स्थानीय गोताखोरों की टीम भी तैनात है?
3: जी देखिए, जैसे कि आपके प्रश्न में पहला प्रश्न ये था कि कोई इस तरह का हेल्पलाइन नंबर
2: जी,
3: तो अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो तत्काल प्रभाव से 112 पे संपर्क करके सूचित कर दें। और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कंट्रोल रूम संचालित होता है जो 24/7 है एक्टिव, उसका नंबर है 0544-29-76-45। इस नंबर पर संपर्क करके वो तत्काल सूचना दे सकते हैं। हाँ, सूचना देने वाले व्यक्ति को घटनास्थल और कितने लोग फंसे होने, डूबे होने या जो भी घटना है उसके रूप में स्पष्ट जानकारी देते हुए 112 या कंट्रोल रूम के नंबर पे 0544-29-76-45 अथवा टोल फ्री नंबर 1077 पे तत्काल सूचित कर सकते हैं। और रही बात जनपद में स्थापित SDRF NDRF टीमों की बात, तो SDRF NDRF टीमें सभी जनपदों में स्थापित नहीं है, लेकिन त्वरित रिस्पांस के लिए अपने नज़दीकी जिले से टीमों को बुला लिया जाता है। और स्थानीय स्तर पे लगभग सभी तहसीलों में कुछ गोताखोर इस तरह के लोग चिन्हित होते हैं, कुछ नाविक चिन्हित होते हैं कि इस तरह की कोई घटना होती है तो तत्काल उनकी मदद से रिस्पांस किया जाता है, तब तक टीमें पहुंच जाती हैं।
2: जी जी जी, उपचार और बचाव बहुत ज़रूरी है। पर अरुण जी, आजकल आपने एक चीज़ देखी है कि आज के युवा युवतियाँ भी कुछ ऐसी तरह से अपने को जान को जोखिम में डाल रहे हैं, जैसे किसी बांध पे पहुंच गए, वहाँ रील बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, बड़ी तेजी से इसका प्रचलन भी है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई हादसा होता है तो उनके अभिभावकों के लिए प्रशासन की क्या हिदायत और नियम है?
3: निश्चित तौर पर देखिए, अक्सर सुनने में आता है कि पर्यटन स्थलों पे सेल्फी लेते समय, रील बनाते समय पैर फिसलने से या किसी भी प्रकार से लोग डूबने की घटनाएं सामने आती हैं। निश्चित तौर पर हमें ये सोचने का विषय है, स्वयं पे विचार करने का विषय है कि हम कभी भी किसी क्षणिक आनंद के लिए जो है अपने जीवन को जोखिम में न डालें। आप किसी भी पर्यटन स्थल पे या नदी, तालाब, पोखरे, झील कहीं भी जाएं, झरने के पास जाएं, तो इतनी सावधानी बरतते हुए अपनी फ़ोटो वगैरह लें जिससे कि आपके जन की हानि ना हो, आपके परिवार के लोगों को इस तरह का नुकसान ना उठाना पड़े जो जीवन भर के लिए कष्टदायी हो जाए। मैं सभी ऐसे अभिभावकों से आग्रह करूंगा कि वो अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ों को प्रेरित करने के लिए उनको सिखाएं, समझाएं कि वो कभी भी ऐसे स्थानों पे जाएं तो अपने जान की परवाह करते हुए ही अपनी प्रसन्नता, खुशी को अपनाएं।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि हर अभिभावक भी यही चाहता है कि जब मौसम खतरनाक है या खतरनाक झरने, बांध, ऐसी जगहों पे आप जा रहे हो तो एक दूरी बना के रखो। पर अरुण जी, चलते चलते हम एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखना चाहते हैं कि क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं या कोई ऐसी कमियां भी हैं जिनकी वजह से, मतलब पानी में डूबा हुआ कोई व्यक्ति है, उस वह परिवार इस मुआवजे से वंचित होता है, वो इसके दायरे में नहीं आता है?
3: इसके दायरे में नहीं आने का कारण आत्महत्या और हत्या का प्रकरण, और जानकारी देने के बाद भी अगर कोई परिवार पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं हो रहा है
2: जी,
3: कि हम अपने परिवारजन का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं
2: जी,
3: तो चूंकि उसमें प्राथमिकी दस्तावेज में इस बात से पोस्टमार्टम में पुष्टि होना अनिवार्य है कि उस व्यक्ति की डूबने से ही मृत्यु हुई है, उसमें किसी भी प्रकार का हत्या आत्महत्या का प्रकरण नहीं है, अगर इन तीनों मामले में अगर वो कोई बाध्य नहीं होगा तो उनको मुआवजा राशि जरूर मिलेगी।
2: जी बिल्कुल। अरुण जी देखिए, आपने इतने अच्छे तरीके से इस डूबने वाली घटना को लोगों के सामने रखा कि मुआवजे के साथ साथ स्वयं का बचाव कैसे हो
3: जी,
2: इस पर भी लोग जागरूक होंगे। और कहते हैं ना कि सतर्कता ही हमारी सुरक्षा है। पानी का आनंद लें लेकिन अपनी जान को जोखिम में ना डालें। तो अरुण जी आपने बहुत अच्छी बात की, बड़ा अच्छा समय दिया। निश्चित रूप से हमारे श्रोता इसका लाभ उठाएंगे और इसके लिए आप

0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
5: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
6: हेलो,
4: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
5: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
4: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
5: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
4: ओनली ऑन AIR ओबरा।
7: तो गौरी भौजी, देखें अभी हम लोग संदेश सुनत रही जा, और उससे पहले जो जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी के सुनत रही जा, विषय रहला डूबने से मृत्यु होने पर मुआवजा प्रक्रिया और बचाव के उपाय। ए विषय पर देखा अरुण कुमार यादव, जो उनकी जिला आपदा विशेषज्ञ रलन है, उनसे सुश्री द्विवेदी जी के बातचीत रहला। निश्चित तौर पे देखा ये बात के हम लोगन के हमेशा अपने गठिया के रखे के जरूरत बा, और लोगन के जागरूक करे के जरूरत बा। कहल जाला ना कि इलाज से बेहतर बचाव, तो पहले से सावधानी रखल जाए और पहले से सतर्क रहल जाए कि ऐसा काम ही ना करे कि दिन देखे के पड़े। तो वही देखा, जानकारी तो अच्छा लगल और सब लोगों ने जरूर अमल में रखी है, और देहल जाए अपने, हाँ, अरुण कुमार यादव जी के देहल जाए। तो भाई देखे मन मनसान के खातिर जोन हुआ ना, अपन सीताराम साहू भैया हुआ तो कजरी माहौल जिसन बा सावन के महीना में, तो कजरी सुनल बनेला, तो सुनल जाए।

0: गौरी भौजी
1: नारा नर कान्हा नर से बने नारी।
0: नारी रे गुइया, बिल्कुल और सही बात भाई। वो समय के कथा रहल जब अपन राधा अपने सखियन के साथे वृंदावन में जो मधुबन में डांस नृत्य करे खातिर के पहुंचले
1: गए
0: था।
1: रहे, और जब चूड़ी पहनावे जाए तो खास करके कान्हा जो है नर से नारी बने,
0: नारी के रूप धारण करके, ताकि अपने सखियन का भी थोड़ा सा स्पर्श कर ले, वो लोगों से हंसी ठुटोली कर ले, हंसी मजाक कर ले,
1: उनके बीच बने रहे के
0: बनल
1: कामना
0: रहे के एक कारण रहल,
1: कामना।
0: कामना भी मंशा रहल, तो इतना बढ़िया मन फेर भैल। और देखे जब मन फेर बढ़िया हो जाला तो मन भी फरहर हो जाला,
1: बिल्कुल।
0: और ओकरे बाद लगेला कि हम लोगन के कुछ और अपने काम में मन लगावे के चाहे, काम भी मन से होला। तो देखे हम लोगन कोशिश करेला कि जौन भी अपन खेती बाड़ी के काम बा ओके हम लोगन ऐसा करल जाए कि स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़े और पर्यावरण भी अच्छा प्रभाव पड़े।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका हम संकेत समझ ले लिया कि आज आप जो है गौ आधारित प्राकृतिक खेती के बारे में बात कर रही थी, बता सब बहन। तो देखिए गौ आधारित प्राकृतिक खेती जो है एक ऐसा कृषि पद्धति है जिसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक का बिल्कुल उपयोग ना होला, आप तो जानते हैं।
0: बिल्कुल।
1: आई देसी गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़ और बेसन जैसन स्थानीय संसाधन से तैयार जीवामृत और घन जीवामृत पर निर्भर करेला,
0: बिल्कुल
1: जिससे मिट्टी का उपजाऊ शक्ति बढ़ेला और खेती का लागत लगभग समाप्त ही हो जाला।
0: बिल्कुल सही कहलू है। और देखा जैव कीटनाशक होके चाहे जैविक खाद होके, देखा ये हम लोगन के तो पुरातन से चलल आ रहल बा, लेकिन आज आधुनिक दौर में हम लोगन रासायनिक खाद के अंधाधुन प्रयोग करके जौन बा कि अपने माटी के भी बीमार करती और फसल भी जौन बा कि उसे प्रभावित होला और उसे अपन स्वास्थ्य प्रभावित होला।
1: हाँ।
0: तो देखा आज जौन जानकारी बा कि जैव कीटनाशक बनावे और प्रयोग करे के विधि का बा, एके बारे में सुशील कुमार यादव जो उनके जगत नारायण भैया भोला भैया बातचीत कैले हुआ ना, हम कहते हैं कि न देरी करल जाए
1: सुनल
0: और
1: जाए।
0: जानकारी सुनल और गुनल जाए।
1: हाँ।
2: श्रोताओं, सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी ब्लॉक के केवाल गांव से श्री सुशील यादव जी आज स्टूडियो में आए हैं। इस समय तरह तरह के साग सब्जियों के उत्पादन करने के लिए कीटनाशक की आवश्यकता होती है, जो रासायनिक कीटनाशक हर तरह के फसल से लगाया फल सब्जी और मृदा में भी हानिकारक होते हैं। हम लोग जैव कीटनाशक तैयार करने के काम करते हैं, इस पर बहुत सारे विचार भी चल रहे हैं जो कि आप करते हैं। तो सुशील यादव जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी।
2: जैव कीटनाशक के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे,
3: जी।
2: तो इसका शुरुआत हम लोग कहाँ से करें और कितना लाभकारी है? जी
3: देखिए, पहले तो आज के समय में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि जैव आधारित खेती भी, और जैव आधारित खेती जब हम करेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। तो जैव आधारित खेती करेंगे तो उसमें रसायन का प्रयोग अगर करते हैं तो बहुत नुकसान करता है। आजकल के समय में बहुत अधिक कीटों का भी प्रकोप होता है
2: जी,
3: और हो ही रहा है। बिना कीट नियंत्रण के कोई भी खेती आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप जैव खेती करते हैं तो जैव कीटनाशक का भी बनाना या प्रयोग करना जरूरी है। तो उसमें जैव कीटनाशक बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, जो कि किसान अपने घर से सब कुछ बनाकर तैयार कर सकता है। जैसे कि ज़्यादातर जो हम प्रयोग करते हैं उसमें नीम की पत्ती लहसुन को मिला करके पीस करके इसका पेस्ट बनाते हैं, और पेस्ट बना करके इसको बॉयल कर देते हैं,
2: जी।
3: और बॉयल करने के बाद ठंडा हो जाता है, और फिर इसको 2 लीटर पानी में मिला करके रख देते हैं। आप 2 लीटर पानी में जो मिलाए हैं उसको एक टंकी के लिए 1 लीटर पानी डाल करके, और जैसे ऐसा नहीं कि साग सब्जी में कोई कीट लग रहा है तभी प्रयोग करें,
2: जी
3: उसके पहले भी आपको मैंने उसके रोकथाम के लिए भी इस कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका कि कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है।
2: जी।
3: और जैसे इसी कीटनाशक में 200 ग्राम अगर आप नीम का पत्ती है और 100 ग्राम ये लहसुन है, और 50 ग्राम अगर हल्दी आप डाल देते हैं, तो कीटनाशक के साथ साथ ये ग्रोथ प्रमोटर का भी काम कर देता है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा।
3: हल्दी जो है ये बहुत ही पौधों के लिए उपयोगी है, तो ये इसको मिला करके अगर डालते हैं तो ग्रोथ प्रमोटर भी, पौधा स्वस्थ भी रहता है।
2: जी जी
3: और भी हैं, जैसे मान लीजिए देशी गाय का गोमूत्र है, नीम है, और नीम की पत्ती और देसी गाय के गोमूत्र को मिला करके उसको एक हफ्ता तक रख दीजिए, उसमें छाछ भी डाल दीजिए।
2: अच्छा,
3: मट्ठा
2: जी।
3: और उसको जब एक हफ्ता रखेंगे तो जैसे एक लीटर मान लीजिए गोमूत्र हो गया, और उसको दो लीटर पानी और एक लीटर छाछ भी मिला करके रख दीजिए इसको
2: जी।
3: और एक हफ्ता रखने के बाद इसमें से आधा लीटर
2: जी
3: 15 लीटर की टंकी में मन छान करके आधा लीटर मिला के जब डालेंगे तो दोनों फायदा करेगा, पौधा का ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो जाएगा और उसमें कोई भी कीट का प्रकोप नहीं रहेगा
2: जी। जी,
3: ये
2: जी,
3: सबसे ज़्यादा कारगर है क्योंकि गोमूत्र बहुत ही पौधे के लिए बहुत जरूरी है।
2: यानी कि सबसे पहले तो हम लोग गौपालन करें
3: जी, गौपालन
2: तभी ये जो
3: गौपालन में भी गौपालन करें न कि पशुपालन
2: जी जी जी।
3: गौपालन में आपका देशी गाय का ही गौपालन कहा
2: जी जी जी, जी, जी।
3: और बाकी जो जर्सी और ये सब करते हैं तो पशुपालन हो
2: जी जी जी जी। तो मतलब इसका कारगर इसी के जो देसी गाय हैं
3: जी,
2: उसके चाहे मूत्र कहें या गोबर कहें,
3: हाँ गोबर
2: कारगर है।
3: एक चीज और मैं बताता हूँ आपको कि लगभग मैं अभी तो 12 महीना गोभी की खेती करने लगा हूँ
2: जी, जी जी
3: शुरू किया था। अभी गर्मी में भी बहुत अच्छा गोभी था, इस समय भी गोभी लगा हुआ है। तो जैसे लोग बोलते हैं कि ये जो गोबर है कच्चा गोबर डालने से नुकसान करता है, जबकि अगर आप कच्चा गोबर कोई पौधा लगाए 3-4 दिन बाद उस गोबर को घोल करके पानी में थोड़ा गाढ़ा और उसको ड्रिंचिंग कर देंगे पौधे के जड़ के नीचे तो पौधा दिन और रात ग्रोथ करता है। जबकि पौधा जब आप लगाते हैं तो केवल रात में अंधेरे में ही पौधा ग्रोथ करता है, और जब उसके जड़ के नीचे आप गोबर का वो डाल देते हैं घोल करके तो पौधे को लगता है कि अभी भी रात ही है, तो वो ग्रोथ डबल हो जाता है। इसको मैं प्रैक्टिकल कई 2-3 साल से कर रहा हूँ और अभी भी मैं खेत में किया हुआ
2: जी जी
3: और करता ही रहता हूँ।
2: तो इसमें हम लोग अभी कीटनाशक के बात कर रहे थे, तो बहुत किसान भाई लोग पंच लोग जो है कि ये नहीं जान पाते हैं कि हम इसका छिड़काव कब करें। कभी तो होता है कि जैसे जो छिड़काव किए तो पता चला कि बारिश हो गई
3: जी, बारिश अगर हो गई
2: जी
3: तो फिर दोबारा छिड़काव कर देना है आपको। ये नहीं सोचना है कि मैं तो छीट चुका हूँ। बारिश अगर 1 घंटे के अंदर में बारिश हो जाती है तब तो दोबारा।
2: अच्छा।
3: और 1 घंटे के बाद, और कोशिश ये रहे कि ज्यादातर शाम को ही छिड़काव करें
2: जी,
3: या
2: जी,
3: सुबह में एकदम करें।
2: अच्छा,
3: सुबह में मैंने 7-8 बजे, हाँ, और शाम वाला ज्यादा कारगर है।
2: अच्छा अच्छा,
3: क्योंकि शाम को फिर वो पौधा ग्रोथ करने लगता है और हर चीज उसको जब मिलता है और कीट भी उस पर आ जाते हैं तो वो भागते। इसमें जैव कीटनाशक का प्रयोग करने से कीट मरते नहीं, वो आसपास आते ही नहीं, जो एक बार भग गया वो फिर दोबारा उधर दिखाई नहीं देगा।
2: जी जी जी। अच्छा, उसमें कुछ लोग मठा अस्त्र के बात करते हैं जो है कि बनाने के लिए
3: जी,
2: उसका कैसे हम लोग प्रयोग करें बनाए?
3: नहीं, ये जो अभी मैं बोला ना कि जैसे गोमूत्र और ये मठा का भी
2: जी जी जी,
3: तो ये आप अगर पौधा के ग्रोथ के लिए कर रहे हैं तो मठा लेकर के 2 लीटर मठा में 50 ग्राम गुड़ लेकर
2: जी,
3: और उसको रख दीजिए एक हफ्ता के लिए।
2: और
3: उसमें से 0.5 लीटर पानी को, अरे वो जो रखे हैं
2: जी,
3: छान करके 15 लीटर की पानी की टंकी में स्प्रे कर दीजिए, 2 दिन में एकदम बिल्कुल काला दिखने लगेगा पौधा।
2: अच्छा, इस समय जो लता वर्गीय सब्जियां हैं
3: जी,
2: जैसे लौकी हो गए, कोहड़ा हो गए, नेनुआ हो गए, तरोई हो गया, ये सब पे जो है कि एक लाल लाल कीड़ा लगते हैं
3: जी,
2: उसके लिए कौन सा जैव कीटनाशक ज्यादा कारगर?
3: उसके लिए देखिए, ये जो नीम वाला जो मैं बताया, नीम की पत्ती लहसुन वाला, ये ज्यादा कारगर है।
2: अच्छा अच्छा।
3: उसमें देखिए, बाकी तो आप केमिकल छींटते हैं तो वो कीट मरा हुआ दिखाई देगा वहां पे, लेकिन इसको डालने के बाद वो आसपास दिखाई ही नहीं देगा,
2: दिखाई ही नहीं देगा, भाग जाएगा।
3: और दूसरी चीज कि जैसे केमिकल का अगर हम प्रयोग करते हैं तो लगने के बाद रोग डालते हैं, लेकिन ये जो जैव कीटनाशक है इसको आप एक रूटीन में डाल सकते हैं
2: जी।
3: जैसे पौधा मान लीजिए लगा है तो 7 से 10 दिन के अंदर में एक बार आप प्रयोग कर दीजिए, कोई रोग नहीं लगेगा।
2: अच्छा अच्छा
3: जी।
2: और पौधा ग्रोथ भी करेगा।
3: और जैसे मिर्च उर्च में जो

0: रोग लगते हैं,
1: गुर्चा वगैरह,
0: गुर्चा वगैरह, तो इसके लिए ये जो मट्ठा है, छाछ है, इसमें तांबे का कोई बर्तन हो उसको एक डाल दीजिए।
1: अच्छा, वो छाछ में,
0: छाछ में,
1: हाँ,
0: एकदम बिल्कुल उसको ऊपर में उसके एकदम नीला नीला टाइप से आ जाएगा,
1: काई टाइप का,
0: हाँ काई टाइप का आ जाएगा। और इसको जब छिड़काव करेंगे मिर्च में, तो मिर्च का ग्रोथ भी होगा, फलन भी ज्यादा आएगा, और ये रोग भी नहीं लगेगा,
1: गुर्चा रोग खत्म,
0: गुर्चा भी नहीं लगेगा।
1: जी जी
0: अभी भी मेरे पास मिर्च है और मैं इसको प्रयोग करता हूँ।
1: अच्छा, इसका पहले छिड़काव कर दें, मतलब
0: पहले
1: लगने से पहले
0: करते रहें, करते रहें,
1: ऐसे ये ना कहें कि रोग लगेगा तो करेंगे,
0: हफ्ता में 10 दिन में, हफ्ते में 10 दिन में इसका प्रयोग करते रहें।
1: जी जी जी जी, तो ये तो बहुत बढ़िया बातचीत चल रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यही था कि जो है कि हम लोग रोग लगने के बाद दवा के छिड़काव करते हैं, तो रोग लगने के बाद कितना संभावनाएं हैं कि ठीक हो जाएंगे रोग?
0: देखिए क्या है ना कि रोग लगने के बाद जब आप करते हैं
1: जी,
0: तो पहली बात तो रोग लग चुका रहता है तो कई दिनों बाद आपको पता चलता है।
1: जी जी जी
0: ठीक ना,
1: हाँ,
0: जैसे मान लीजिए 5 दिन का रोग लगा हुआ है
1: जी,
0: तो 5वें दिन आपको पता चला।
1: जी
0: अब इतना एक्टिव आप नहीं है कि तुरंत छीट देंगे, एक आध दो दिन सोचते रहेंगे, तब तक उसमें और रोग लग जाएगा। फिर रोग लग चुका 5-7 दिन का, फिर आप दवा छिड़काव किए, और जब दवा छिड़काव किए तो उसको ठीक होने में 10 दिन लग जाएगा। तो 5 दिन ये और 10 दिन वो, ये 15 दिन उसको गैप मिल गया,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: मतलब 15 दिन वो माइनस में चला जाता है, इसके बाद तब वो चालू होता है। तो इससे अच्छा यही है कि प्रिकॉशन के तौर में हफ्ते 10 दिन में आप एक बार उसका प्रयोग करते
1: रोग लगने से पहले,
0: रोग
1: बचाओ,
0: लगने से
1: बिल्कुल।
0: पहले उपचार।
1: तो रेडियो के माध्यम से आपको बहुत श्रोता लोग सुन रहे हैं,
0: जी
1: चलते चलाते उनको और क्या कुछ सरेखना चाहेंगे कि ये जो जैविक कीटनाशक और जो है कि रासायनिक कीटनाशक में और का अंतर है, कैसे रासायनिक हमें नुकसान पहुंचाता है, जैविक कैसे फायदा पहुंचाता है? जी
0: देखिए, पहली बात तो आर्थिक ही नुकसान पहुंचा देता है ये जो रासायनिक है। इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ आ रही हैं कि आप एक एक टंकी 500-700 रुपए का बनता है,
1: जी,
0: और ये जो मैं बता रहा हूँ, मैं समझता हूँ ये 50 का भी नहीं पड़ेगा आपको।
1: जी, जी जी
0: और दूसरा चीज कि अभी किसान क्या है कि उसको लगता है, बहुत से किसानों को लगता है कि इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा दें, उसमें अगर दुकान वाला 30 ml लिख के दे रहा है तो उसको 50 ml डाल देगा कि जल्दी मेरा ठीक हुआ, लेकिन वो ठीक जल्दी नहीं करता है, वो नुकसान करता है। जैसे कोई फल लगा हुआ पौधा है उस पर डाल देंगे तो उस फल के ऊपर भी उसका बहुत नुकसान करेगा वो।
1: जी जी
0: और ये जो दवाई है अपना जो जैव वाला है, इसका कोई नुकसान नहीं,
1: कोई नुकसान नहीं है, फायदा तो करेगा ही करेगा, नुकसान।
0: और मैं ये कहना चाहूँगा किसानों से कि धीरे धीरे करके, आज देखिए आदमी बहुत बीमार पड़ रहे हैं,
1: जी
0: डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो डॉक्टर बोलते हैं कि अब डॉक्टर एकदम बोलने लगे हैं कि भाई थोड़ा गोबर ओवर आधारित खेती करो,
1: जी,
0: और
1: जी,
0: आपको
1: जी।
0: स्वाद में भी बहुत अंतर आएगा, देखने में उतना नहीं दिखेगा कि बहुत सुंदर है,
1: जी,
0: लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगेगा,
1: स्वादिष्ट लगेगा। हाँ,
0: और दूसरी चीज कि एक पशु से ही 10 बीघे की खेती की जा सकती है।
1: क्या बात,
0: एक पशु से 10 बीघे की खेती की जा सकती है। कोई भी जैसे धान है या गेहूं है, जो भी है, उसमें आप कच्चा गोबर जहां पानी गिर रहा है वहां डाल दीजिए और पूरे में फैल जाएगा।
1: जी जी,
0: 10 किलो गोबर 1 बीघा के लिए काफी है।
1: तो श्रोताओं, देखें, ये सुशील यादव जी थे जो आप सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी बला के केवाल से स्टूडियो में आए हुए थे, इतना अच्छा जानकारी दिए कि हम लोग कीट लगे इससे पहले जैव कीटनाशक के यदि प्रयोग करें तो हम लोग का फसल भी सुरक्षित, भूमि भी सुरक्षित, और अच्छा पौष्टिक फल साग सब्जी भी उत्पादन होंगे। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए सुशील यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के भी, और बिल्कुल जानकारी अच्छा मिलल, और सही बात है कि इलाज से बेहतर बचाव, जैसा कि हम लोगों पहले ही चर्चा कर लीजिए, और जानकारी में भी मिल गई सुने के, जैव कीटनाशक बनावे और ओकर प्रयोग करे के विधि, ये पर सुशील कुमार यादव जो उनकी प्रगतिशील कृषक रहला ना, उनसे जगत नारायण के बातचीत रहला। निश्चित तौर से देख, जौन भी नौधा किसान भैया बहन लोगन हुआ, तो देखा उनके खातिर ये और भी अच्छा, मतलब कारगर सिद्ध हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद बा,
3: और जैसे हम लोग कह जला बता सब बहन की एक खेत पे दूसरा
2: बाजार में होके के चाहिए, और ओकरे साथ साथ मौसम का भी ध्यान रखल जरूरी होला, वही के अनुसार अपन खेती बारी भी आगे बढ़ेला।
3: हाँ।
2: तो देखिए, अगर बात करल जाए आज के तापमान का, तो न्यूनतम तापमान आज के रहला 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहला। तो देखिए, उतार चढ़ाव तो लगले रहेला, वही हिसाब से अपन खेती बारी रहेला। तो जैसे

0: क्या बात कह ली है, बाजार भाव तो कहाँ की पाती हाथ लगल बा जान लेल जाए।
1: बता सब ही नहीं, पूर्णवासी चौहान भैया भेज लेम, मधुपुर के बाजार भाव कुंतल में है। तो हम बता दें कि
0: बिल्कुल
1: लाल आलू है 1200 रुपये कुंतल, सफ़ेद आलू है 1000 रुपया, प्याज है 4000 रुपये कुंतल, टमाटर है 3200 रुपया, बोरा है 1500 रुपया, कोहरा है 2000 रुपया, अरुई है 3000 रुपया, बंडा है 3200 रुपया कुंतल, और लंबा बैगन है 1000, गोल बैगन है 2200 रुपया। दोनों के स्वाद में फर्क रहेला।
0: बिल्कुल
1: लंबा बैगन एली 1000 रुपया कुंतल है कि मन पतला पतला रेसा देखी ना अपनी के ला
0: बिल्कुल। और कलौंजी खातिन बड़ा मशहूर होला,
1: मशहूर बा, लेकिन गोलका बैगनवा में तो और बढ़िया बा, मिठास
0: भाई
1: रहला।
0: चोखा खातिन के वो अलगे भाई, अपन अपन अलग महत्व बा। जैसे अब गौरी भौजी
1: हाँ
0: का अपन अलग महत्व बा, बता सके अपन अलग महत्व
1: बिल्कुल
0: बा।
1: बिल्कुल, कौनो कलौजी खा कौनो को चोखा खा, मतलब
0: हाँ
1: कि
0: बिल्कुल
1: और मौसम तो है ही वो खाए लायक।
0: बिल्कुल
1: तो परवल है 6500 रुपया कुंतल, लौकी है 1000 रुपया, करेला है 3500 रुपया, भिंडी है 600 रुपया कुंतल, नेनुआ है 1800 रुपया कुंतल, कुंदरू है 1700 रुपया, तरोई है 2200 रुपया, मूली है 2000 रुपया, लहसुन है 10000 रुपया कुंतल, पालक है 1500 रुपया, धनिया है 8000 रुपया,
0: अच्छा
1: असूरन है 4000 रुपया, और देसी जो खेक्सा है वो है 17000 रुपया
0: 17,000 रुपया,
1: कुंतल, 170
0: मने
1: रुपया
0: महंगा
1: किलो,
0: इतना बढ़िया बा कि अपन किसान भैया लोगन खेक्सा के अगर खेती करी है तो आगे और फायदा हो
1: एक सौ
0: सकेला।
1: सत्तर रुपया किलो मिले।
0: बिल्कुल, तो भैया लोगन देखा गठियाला कि अगले बार से अपन खेक्सा के तैयारी करा।
1: और मकई है 1000 रुपया, पपीता है 2000 रुपया, गाजर है 3000 रुपया, शिमला मिर्च है 7000 रुपया, चुकंदर है 2500 रुपया, करौदा है 5000 रुपया, फूल गोभी है 2800 रुपया सैकड़ा, पात गोभी है 2600 रुपया सैकड़ा, नींबू है 200 रुपया सैकड़ा।
0: बिल्कुल, तो देखें ये अपन मधुपुर मंडी के बाजार भाव रहा। पुनवासी चौहान भैया की भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखें बाजारे में जब भाव पहुंचेला तो देखें कई तरह का, जैसे रासायनिक खाद से भी उपजावल साग सब्जी रहेला और जैविक खाद से भी उपजावल रहेला। तो ये देखा आँख के परख के जरूरत बाटे कि हम लोगों के कौन ऐसा साग सब्जी लेबे की जरूरत बा जो उनकी स्वास्थ्य के साथ साथ अपन पर्यावरण के भी फायदेमंद साबित होके।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और
0: तो देखा
1: सेहतमंद रहे साग सब्जी।
0: सेहतमंद रहे तो एकरे खातिन देखा अपन आंख के भी स्वस्थ रखल बहुत जरूरी बा। और आंख तो अनमोल है, कुदरत का ऐसा उपहार है जैसे हम लोग सृष्टि ये दुनिया के देखत ही
1: देख
0: जा।
1: सकत हैं
0: और
1: जा,
0: रंग बिरंग त्योहार और जौन भी प्रकृति के खूबसूरती बा ओके आंख से निरीख करके
1: निहार
0: हम लोगन
1: सकत हैं जा,
0: और संतुष्टि महसूस करी ला जा।
1: बिल्कुल। और आंख के रक्षा सुरक्षा के लिए विटामिन ए खाए के चाहिए,
0: बिल्कुल गाजर
1: विटामिन ए
0: खाए के
1: कहाँ कहाँ
0: चाहिए।
1: मिला था बतावे।
0: देखे भाई देखा गाजर है, पपीता, ये सब चीज देखे। वैसे तो कुल साग सब्जी हम लोगन समय समय पर लेते रहे के चाहिए,
1: हाँ
0: एकर ध्यान रहल जाए और बराबर स्वस्थ रहल जाए। यही मंशा के साथ आज के पंचायती समेटे के भी बखत हो रहल बा। अगली पंचायती में नए जानकारी नए मन फिर के साथ फिर जुटल जाई। आज चलल जाए गौरी भौजी,
1: हाँ
0: तो चले के
1: सब पंचन के
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में यानी कि शाम के 6:50 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी।
1: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: पंचो जय हिंद।
1: रामजीत भैया,
0: हाँ रेनू बहनी,
1: भैया देखो मौसम कितना बढ़िया है, चारों कती सब हरे हरे दिखाई पड़ रहा है, और
0: बिल्कुल
1: जैसी देखो वैसी मन खुश हो जाते हैं भैया।
0: बिल्कुल।

0: अपन प्रकृति ऐसा चीज है कि जहिका देख के मन अपने आप खिलखिलाएगा, हंसे लागत।
1: बिल्कुल भैया, और ई हरेरी भरेरी ऐसन बनी रहे, इके खातिर हमका हमेशा प्रकृति के नजदीक रहे पड़ी।
0: बिल्कुल बहनी, और एक ताय जरूरी है कि हम पंच प्रकृति के नुकसान न करी, बल्कि जौन चीजें प्राकृतिक हैं वन्हें अधिक से अधिक बढ़ावा दी।
1: बिल्कुल भैया, प्राकृतिक खेती के मतलब ही यह है कि जो है हम पंचे प्रकृति से मिली भई चीजें उमा इस्तेमाल करी,
0: बिल्कुल
1: कोनू तिना के रसायन केर इस्तेमाल नहीं करी, बल्कि प्रकृति से मिली भई जैसे गोबर की खाद है, केचुआ केरी खाद है, ई तिना की खादन के उपयोग करे है। इससे सबसे बढ़िया बात भैया ये है कि हमारी माटी का भी स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहत है।
0: बिल्कुल, यही साथे साथे बहनी अपनी खेती पाती में जौन आसपास चीजें हो रही हैं, हम पंचन का वहुक जाने चाहिए, और यही बदे हम पंच सुनित है आज की खबरें।
2: उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश और युवाओं और महिलाओं उद्यमियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन से किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार सृजन करने और कृषि आधारित उद्योगों को नई गति मिल रही है। 19 अगस्त तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त 16 नए प्रस्तावों पर मूल्यांकन समिति ने विचार कर पात्र प्रस्तावों को SLEC के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति की। इनमें आटा दलिया, मैक्रोनी पास्ता, कुटू प्रोसेसिंग, रेडी टू ईट, डेयरी मिल्क प्रोसेसिंग, पेठा, हींग, आलू फ्लेक्स और कैटल पोल्ट्री फील्ड जैसी इकाइयां शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं का आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की ओर बढ़ता रुझान और महिला उद्यमियों की बढ़ती भागीदारी प्रदेश में उद्यमिता और रोजगार के लिए सकारात्मक संकेत है। उन्होंने कहा कि कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार से किसानों की आय, रोजगार और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।
0: रेणु बहनी,
1: हाँ रामजीत भैया,
0: देखो अपने खेती पाती में बहुत पंच ऐसे हैं जो सब्जियों के उत्पादन करते हैं। मूल कऊ दाए का होता है कि सब्जी में उतना जो उत्पादन होए चाहिए उतना ना हो पावत, कौनो न कौनो कमी बनी रहा था।
1: बिल्कुल भैया, तो यही बदे आज की बात माँ हम लेके आए हैं विषय, सब्जियों में पोटेशियम, जिंक और बोरान कमी के लक्षण और उपचार। इसके बारे में बता रहे हैं डॉक्टर काशीनाथ तिवारी भैया।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय जो सब्जियां आपके खेत में हैं, उनमें कई पोषक तत्वों की कमी के लक्षण फसल पर दिखाई देते हैं। इन पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर केएन तिवारी साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो सब्जियां खेत में हैं उनमें कई विकार दिख रहे हैं, इनके पीछे क्या कारण हो सकता है?
4: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज सब्जी में जो पोषक तत्वों की कमी की समस्या आ रही है, किसान आम तौर पर सब्जियों में भी यूरिया और DAP का प्रयोग करता है, और जिन तत्वों का नाम लिया, पोटाश है, बोरान है, जिंक है, इनका प्रयोग जब कमी के लक्षण दिखाई दें या कोई समस्या होती है तो उसको बीमारी वो समझ करके लोगों की सलाह लेता है, और उसका सही उपचार न होने की वजह से वो नुकसान उठाता है और फसल भी ठीक नहीं हो पाती है। रही बात पोटाश की, तो आम तौर पर किसान यूरिया और DAP इसका प्रयोग करता है। पोटाश का प्रयोग न करने से पोटाश की कमी के लक्षण जो है बहुतायत सब्जियों में देखे जा रहे हैं। अगर पोटाश की कमी है तो जो पुरानी पत्तियां हैं नीचे की, उनके किनारे पीले पड़ने शुरू होते हैं और इसके बाद में वो पीलापन झुलस जैसा जाता है।
3: और नई पत्तियां सही हैं?
4: नई पत्तियां बिल्कुल सही हैं। ये जो है हमेशा पोटाश का कमी का लक्षण जो है पुरानी पत्तियों पर आता है
3: जी।
4: अब इसके उपचार के लिए क्या करें? पोटाश का बखूबी जो है खड़ी फसल में यूरिया के साथ टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं।
3: डॉक्टर साहब, जैसा आपने पोटाश की कमी के लक्षण बताया, तो किसान भाई इसके लिए क्या करें?
4: हाँ, नेचुरल पोटाश जो आया है, जो गन्ने के सीरे से बनाया जा रहा है, उसमें 14% जो है पोटाश होता है। अगर उसका प्रयोग किसान भाई करें तो निश्चित रूप से उससे भी पोटाश की कमी दूर हो सकती है। लेकिन इसमें जब 14% पोटाश है और म्यूरेट ऑफ पोटाश में 60% है, तो इसका मतलब कि जितना म्यूरेट ऑफ पोटाश से पोटाश देते थे उसकी 4 गुनी मात्रा डालनी पड़ेगी, तब तो इसका काम दिखाई देगा।
3: तो ये जो नेचुरल पोटाश है,

0: इसका बेसल डोज दिया जाए।
1: इसका बेसल डोज दिया जाए।
0: खड़ी फसल में
1: हाँ, नहीं तो अगर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं और बेसल डोज नहीं दे पाए हैं
0: जी
1: तो यूरिया के साथ मिलाकर इसकी टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। सल्फर की भी कमी है
0: जी
1: सब्जियों में, तो पोटेशियम सल्फेट जो है जिसको 0050 कहते हैं,
0: यानी जल विलेय उर्वरक,
1: जल विलेय उर्वरक है, इसमें पोटास भी है, गंधक भी है, तो इसका पानी छिड़काव घोल बना करके कर दें।
0: 0050 NPK,
1: हाँ, इसकी मात्रा ये होगी कि 1 लीटर पानी में 10 ग्राम,
0: यानी एक टंकी में 150 ग्राम।
1: हाँ, 15 लीटर की जो टंकी है उसमें 150 ग्राम मिला करके पानी में छिड़काव कर दें। 1 एकड़ में 6 टंकी लगती है तो उसी हिसाब से इसकी मात्रा हो जाएगी, 1 किलो में हो जाएगा।
0: डॉक्टर साहब, जहां सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन कर रहे हैं किसान भाई बहन, तो वहां वो कैसे जाने, कैसे पहचाने कि बोरान पोषक तत्व की कमी के लक्षण है?
1: देखिए, बोरान की कमी आम तौर पर सब्जी और फल वाले फसलों में देखी जा रही है। अगर बोरान की कमी है तो ऊपर की पत्तियों पर ये लक्षण दिखाई देंगे,
0: नई पत्तियों पर
1: नई पत्तियां जो है वो कटोरी नुमा बन जाती हैं,
0: जी,
1: और फल जो हैं, सारी फसलों में फल जो है टेढ़े होने लगते हैं।
0: सब्जियां फल जो भी है,
1: अब इस समय आप मंडी में सब्जी खरीदने जाइए तो भिंडी भी टेढ़ी हो गई, खीरा भी टेढ़ा हो गया, तो ये सारे फल जो तरोई टेढ़ी हो जा रही है हंसिया की तरह, लौकी टेढ़ी हो रही है, तो ये बोरान की कमी की वजह से ऊपर की पत्तियां कटोरी नुमा हो जाती हैं, फूल भी जो बनते हैं कम बनते हैं, फल नहीं टिकते हैं, और जो टिकते हैं तो इस तरह की समस्या फलों का आकार जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है।
0: तो जहां बोरान पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखते हैं या नहीं भी दिखते हैं, सब्जियों का व्यवसायिक उत्पादन कर रहे हैं किसान भाई बहन, तो शुरू से क्या करें?
1: शुरू में देखिए, बोरान, अगर बोरेक्स जो है मिट्टी में अगर प्रयोग करना है तो 14.5% वाला है,
0: जी,
1: उसका 5 किलो अगर डाल दें 1 एकड़ में,
0: प्रति एकड़ 5 किलो,
1: 5 किलो, तो बोरान की कमी की समस्या कुछ हद तक खत्म हो सकती है।
0: डॉक्टर साहब, क्या इन पोषक तत्वों की अधिकता भी नुकसानदेह है?
1: बिल्कुल नुकसानदेह है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इनकी उपयुक्त मात्रा, अधिक मात्रा और विषाक्त मात्रा, इनकी जो लाइन है बहुत बारीक है,
0: जी,
1: अगर आवश्यकता से अधिक पड़ेगा तो निश्चित रूप से फसल को नुकसान होगा, और जब बहुत अधिक पड़ जाता है किसान इतना उत्साही हो जाता है कि इसको डाल दें और जरा सा सुधार हुआ तो दूसरे छिड़काव में वो मात्रा दूनी करना चाहता है,
0: ऐसी गलती ना हो।
1: ऐसी स्थिति में बिल्कुल विषाक्तता की समस्या उत्पन्न हो सकती है, फायदे के बजाय रुपए का नुकसान होगा, दूसरा उसकी फसल भी खराब हो जाएगी।
0: डॉक्टर साहब, जहां सब्जियां हैं वहां जिंक पोषक तत्व तो भी महत्वपूर्ण है।
1: हाँ, देखिए, जिंक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कमी तो मुख्य रूप से इस समय बोरान की दिखाई दे रही है।
0: जी,
1: उसका कारण क्या है? जिंक के महत्व के बारे में किसान समझ गया है, तो जो अन्य फसलों में भी वो जिंक डालता रहता है,
0: धान गेहूं में लगाता है,
1: धान गेहूं में लगातार डाल रहा, आलू में डाल रहा है।
0: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे सब्जियों में पोटेशियम, बोरान और जिंक प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 7505103059, 750 510 30 59, 750 510 30 59।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का सब्जियों में पोटेशियम, बोरान और जिंक प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब,
1: जो किसान भाई यूरिया और डीएपी आधारित खेती आम तौर पर कर रहे हैं तो केवल 2 पोषक तत्व दे रहे हैं और मिट्टी से अन्य पोषक तत्वों का भी दोहन हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, तो हमारा तो ये कहना है कि संतुलित फसल पोषण सुनिश्चित करें, उसके लिए यूरिया डीएपी के साथ पोटेशियम, बोरान, जिंक और गंधक की भी समस्या हो रही है, तो इन सारे पोषक तत्वों का एक संतुलन बना करके प्रयोग करें तो निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ेगी और प्रति रुपए खर्च पर किसान को ज्यादा आर्थिक लाभ होगा।
0: यानी किसान भाई बहन जहां भी सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन कर रहे हैं वहां इन पोषक तत्वों पर विशेष ध्यान दें, पोटेशियम, बोरान और जिंक, साथ में सल्फर की भी कमी के लक्षण न दिखें और उनका सही प्रबंधन करें। डॉक्टर के.एन. तिवारी साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और आपने किसान भाइयों बहनों

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: रेनु बहनी।
4: हाँ रामजीत भैया।
3: देखो जानकारी के बाद तो बहुत हो गए, अब कुछ गीत गवनाई की बात हो जाए।
4: बिल्कुल भैया हो जाए तो और सुन लीन जाए एक नक्टा। और देखो इका स्वर्दीन है अनुराधा बहनी और बोल है इके दिन का की हो करार।

0: बढ़िया तरह आगे बढ़ावत है और वही का हम पंच जानित है आज के किसान माँ।
1: तो भैया आज के किसान मैया है देखो हाईटेक नर्सरी और सब्जी उत्पादन पर बतावे के लिए अनुष्का जायसवाल बहनी, तो आओ इनका सुना जाए।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, लखनऊ जनपद के मोहनलालगंज ब्लॉक के हरिखेड़ा गांव की महिला किसान अनुष्का जायसवाल बहन स्वागत है कार्यक्रम में। अनुष्का जायसवाल बहन ये बताएं हाईटेक खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
3: धन्यवाद। 3.5 साल पहले करीबन मैंने अपना सबसे पहला सेटअप एक लगाया पॉली हाउस का। इसमें मेरे परिवार ने काफी मुझे सपोर्ट किया। मुझे ये था कि मुझे ट्रेडिशनल खेती नहीं करनी थी, मुझे जो करना था कुछ टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करते हुए करना था। फिर मैंने इसमें एक बेसिक ट्रेनिंग ली खेती की, नोएडा में एक इंस्टीट्यूट है, वहां से मैंने हाइड्रोपोनिक्स और प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन इसमें मैंने अपना एक ट्रेनिंग लिया, तो मुझे गवर्नमेंट से भी सब्सिडी मिली इसमें। मेरा पहला सेटअप तो जो था वो थी खीरे। उसके बाद मैंने उसमें लाल पीला शिमला मिर्च भी कई बार किया है। तो अब 3.5 साल होते होते हाँ हम लोग ने अपना पहले शुरुआत 1 एकड़ से की थी, बट हम 6 एकड़ में काम कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए लाल पीली शिमला मिर्च हो गई, इंग्लिश क्यूकम्बर जो हमारा बिना बीज का सीडलेस क्यूकम्बर जिसको हम बोलते हैं वो मैंने किया
2: यानी
3: हुआ है,
2: बीज रहित खीरा।
3: बीज रहित खीरा बेमौसम जितना भी है ये हम बेमौसम ही करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम मार्केट से पहले इसको निकालें या ऐसे टाइम पे निकालें जहाँ पे हमें रेट का फायदा मिल सके। सिंस संरक्षित खेती है तो उससे हमें ये फायदा रहता है कि अंदर का मौसम हमारे लिए थोड़ा कंट्रोल में रहता है, बारिश नहीं पड़ सकती, तो इससे हम अपना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उसको कंट्रोल कर लेते हैं, हमारी क्रॉप और अच्छे से चल जाती है। जहाँ ठंड में लोगों की फसलें रुक जाती हैं है ना, वहाँ हमारी क्रॉप में उस टाइम प्रोडक्शन निकल रहा होता है, हम उसको मार्केट में दे सकते हैं।
2: अच्छा,
3: ओपन में भी मैंने ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल मेथड से किया कि फ्लड इरिगेशन या एकदम से हम लोग ट्यूबवेल से पानी देते जाते हैं एंड ऐसे कर रहे हैं। हम लोग ने उसमें भी गवर्नमेंट की सहायता से हमने ड्रिप इरिगेशन लगवाया, मल्चिंग करते हैं, बेड बनाते हैं, क्रॉप कवर भी देते हैं विंटर्स में। ऐसा नहीं कि खुले में पड़ी रहती है हमारी क्रॉप।
2: यानी क्या लो टनल?
3: लो टनल में हम लोग अपनी और क्रॉपे करते हैं जिससे उस पर पाला नहीं पड़ता। हमने 1.5 एकड़ पॉली हाउस लगाया है और बाकी हमने आधे से थोड़ा सा कम एकड़ हमने उसमें हाइड्रोपोनिक्स का भी एक सेटअप लिया है। उसके बाद एक हमने हाईटेक नर्सरी का एक सेटअप बनाया है। तो हमारे 3 सेटअप हो चुके हैं ये, और हमारा एक ओपन में भी सेटअप चलता है जो हमारा 3 एकड़ का है।
2: तो खुले में कितनी खेती आप कर रही हैं?
3: हमारा 3.5 एकड़ खुले में है, जो हमारा प्रोटेक्टेड में होता है जैसे पॉली हाउस में वो हमारा 2 एकड़ तक है पूरा।
2: खुले में कौन कौन सी सब्जियां उगा रही हैं?
3: खुले में हम लोग ग्रीन कैप्सिकम, हरी शिमला मिर्च कहते हैं, हरी शिमला मिर्च हम लोग कर रहे हैं, जुकिनी करा है मैंने, जुकिनी मैं करती हूँ पीली और हरी दोनों। और उसके बाद हम लोगों ने जितने भी सलाद पत्ती हो गया, चाइनीज कैबेज, रेड कैबेज, फिर उसके बाद हमारा पॉक चॉय करके एक एक वो होता है सलाद पत्ती होता है, एक हमारा ग्रीन लेटस हो गया, रेड लेटस हो गया,
2: यानी जो भी
3: जितना भी विदेशी सब्जियां हैं हम लोग ने सब की हुई है।
2: तो इसकी शुरुआत कब करती हैं, कैसे करती हैं?
3: इसकी शुरुआत अब हम लोग की अगस्त से शुरू हो जाती है। तो जैसे हम इसकी पहले पौध रेडी करेंगे, पौध रेडी करके फिर हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं।
2: तो पौध आप पॉली हाउस में तैयार कर रही हूँ?
3: जी, मैंने वही बताया मेरा नर्सरी का भी सेटअप है, तो मैं अपनी नर्सरी खुद ही रेडी कर लेती हूँ और मैं कमर्शियली भी कर रही हूँ नर्सरी का सेटअप, तो लोगों की भी नर्सरी रेडी करती हूँ प्लांट।
2: यानी हाईटेक नर्सरी भी चल रही है आपकी?
3: जी जी, साथ में हाईटेक नर्सरी भी चल रही है।
2: और हाइड्रोपोनिक्स में क्या कर रही हैं आप?
3: हाइड्रोपोनिक्स में भी हम लोग लीफी वेजिटेबल करते हैं, जैसे कि ये
2: पत्तेदार
3: सब्जी। पत्तेदार में हम लोग जितना भी ऑफ सीजन करते हैं, तो आप ये मान के चलिए इस टाइम कभी भी आप देखेंगे कि पॉक चॉय हो गया या फिर लेटस हो गया या जो भी है आपका, ये सब केल हो गया, केल है हमारा, रॉकेट है,
2: ये सब
3: पार्सले है,
2: बेजल,
3: ये सब खुले में नहीं हो सकता। ये
2: और
3: सिर्फ
2: पॉली हाउस में आप कर रही हैं?
3: जी, पॉली हाउसेज में हम लोग कर रहे हैं और ये भी
2: में।
3: पानी में ग्रो करते हैं हम लोग। तो
2: हाइड्रोपोनिक्स
3: का मतलब ही है कि हम बिना सॉइल के कल्टीवेशन कर रहे हैं उसमें। उससे क्या होता है कि हमारे सॉइल बॉर्न जितनी भी डिजीजेज है वो कभी आती नहीं है, वो हमारा बिल्कुल पेस्टिसाइड फ्री है ना, फंगिसाइड फ्री हमारा क्रॉप बनता है।
2: तो हाइड्रोपोनिक्स में भूख और प्यास कैसे मिटाती हैं?
3: उसकी भूख और प्यास हमारा जितना भी ग्रोइंग होता है वो पानी में होता है, वो भी आरओ वाटर में। तो हम लोग आरओ वाटर में न्यूट्रिशन देते हैं, उसी में ही वो प्लांट की जड़ें बढ़ती जाती हैं और वो ग्रो होता जाता है लीफी।
2: तो कितना दिन समय लगता है जो सब्जियां आप तैयार कर रही हैं पत्तेदार?
3: हम लोग को बस 45 से 50 दिन लगता है और हमारी एक एक रेडी हो जाती है, मतलब की साइकिल रेडी हो जाती है।
2: और शिमला मिर्च आपने कहा कि रंगीन शिमला मिर्च आप पॉली हाउस में पैदा करती हैं, लाल पीली और हरी, और खुले में हरी शिमला मिर्च पैदा करती हैं, तो उसकी तैयारी हो चुकी है?
3: जी जी जी, लाल पीला शिमला मिर्च हमारा लग चुका है, अब हरा हमारा पहले हफ्ते सितंबर में लगता है।
2: कौन कौन सी बारीकी करती हैं आप पॉली हाउस में और खुले में?
3: मेन चीज तो हमारी ये है कि हम सबसे ज्यादा अपनी क्रॉप पे ध्यान देते हैं कि कभी भी कोई दिक्कत अगर हमें लगती है कि कहीं कुछ आ रही है तो हमें शुरू में ही एक दो पौधों में ही पता चल जाए हर

0: दिन अगर हमारे अंदर पॉली हाउस में लग रहे हैं 10,500-11,000 पौधे, तो हम लोग हर दिन मेंटेन करते हैं कि हम हर दिन उन सारे के सारे पौधों को चेक करें कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है उसमें, उसका न्यूट्रिशन सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डेली जो हमें न्यूट्रिशन उसमें देना है, जो हमें फर्टिलाइजर देना है वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा अगर जैसे इस टाइम ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है मौसम में, तो हम लोग का ये कोशिश रहता है कि हम उसको फैंस वैंस चला के उसकी ह्यूमिडिटी कम कर पाए।
1: तो जो पैदा करती हैं आप उसको बेचती कहाँ हैं?
0: जी मेरा मार्केट में ही जाता है, जितना भी मेरा दिन का 1,000 किलो भी प्रोडक्शन रहता है, तो हम लोग होलसेल में भी हम लोग देते हैं ना, तो रिटेल एंड होलसेल दोनों करते हैं।
1: यानी भाव अच्छा मिल जाता है?
0: हाँ जी सर, भाव अच्छा मिल जाता है, मार्केट से अच्छा निकल जाता है मेरा।
1: 6 एकड़ की खेती, लगभग 2 एकड़ में पॉली हाउस
0: जी
1: और बेमौसम सब्जियों का उत्पादन, पूरे
0: जी
1: साल में कितनी लागत गिरती है, कितना उत्पादन ले लेती हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
0: सर, लगभग ये मान के चलिए कि लागत तो लग जाती है, अगर 1 एकड़ की बात करें पॉली हाउस में, तो करीबन 8 से 10 लाख रुपए की लागत लग जाती है, क्योंकि इसके बीज बहुत महंगे होते हैं, लाल पीले शिमला मिर्च के, वही ओपन में इतनी नहीं लगती, ओपन में बीज सस्ते होते हैं।
1: जो 3.5 साल का आपका हाईटेक खेती का तजुर्बा है, हाईटेक नर्सरी का है, हाइड्रोपोनिक्स का है, संरक्षित खेती का है, खुले में सब्जी उत्पादन का है बेमौसम, तो उसके आधार पर जो और किसान भाई बहन हैं, जो युवा हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी अपने अनुभव से?
0: जिस भी चीज की खेती कर रहे हैं उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तो आपको मुनाफा जरूर होगा। मुझे तो ये भी लगता है कि अगर आप पढ़ लिख के जा रहे हैं एंड युवा लोग जा रहे हैं, अगर हम खेती में कहें, तो उससे भी बहुत चेंज आ सकता है खेती में। किसान को एक बेचारा सा मत बना के, एक गरीब किसान या मिट्टी में हमेशा वो काम ही करते रहता है, या उसको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, हमेशा नुकसान में है, कर्ज में है, ऐसा नहीं है। अगर सही नॉलेज दे पाए हम किसान को, सिर्फ धान गेहूं में करके किसान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, आपको थोड़ा सा आगे सब्जियों में भी ले जाना पड़ेगा, फ्रूट्स में भी ले जाना पड़ेगा, फल में भी ले जाना पड़ेगा। काफी सारी ऐसी नई नई चीजों की खेतियां हो रही हैं जिसमें हमें मुनाफा अच्छा मिलता है, तो हम उसमें अगर उनको थोड़ा सा एजुकेट करेंगे, उनको थोड़ा नॉलेज देंगे, तो जरूर आगे बढ़ सकते हैं उसमें।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी मेरा मोबाइल नंबर होगा 9717913902, 9717913902, 9717913902।
1: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहती हैं आप?
0: मैं मानती हूँ कि अगर औरतें या लड़कियां ये करती है ना, तो वो बहुत और बेहतर कर लेती हैं, मुझे ये ऐसा लगता है। मेरे यहाँ करीबन 25-30 औरतें आती हैं हर दिन, सारे के सारे काम वही करती हैं, मोस्टली 3-4 आदमी रखे हमने बस, बाकी सारा फार्म औरतें चलाती हैं हमारा, है ना। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि वही है जो कर पा रही है, एंड वो जिस बारीकी से और जिस ध्यान से काम करती है, वो एक शायद पुरुष नहीं कर पाता है खेती में।
1: अनुष्का जायसवाल बहन, आज आप कार्यक्रम में आई और 3.5 साल पहले खेती से जुड़ी और आज एक मुकाम पर हैं। आपके पास 6 एकड़ की खेती है जिसमें 2 एकड़ पाली हाउस है, जिसमें आप बेमौसम सब्जियों का हाईटेक उत्पादन कर रही हैं और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: अपने खेती पाती में मौसम के जो जानकारी है वो बड़ी महत्वपूर्ण होता है, अगर उस समय पर मिल जाए तो बहुत जो नुकसान है वो बच जाता है। भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार 20 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक कुछ स्थानन पर गरज चमक के साथ बौछार पड़े के संभावना है, साथ ही साथ कुछ स्थानन पर भारी बारिश के चेतावनी है।
7: तो भैया ये तो रहे मौसम के हाल, इससे जो है अपनी खेती पाती में यहाँ बहुत काम जो है सहज हो जाते है।
6: बिल्कुल।
7: और भैया अब हमार कार्यक्रम कस लागत है, इके खातिर हमारे पंच भैया बहनी हमका जो है पाती लिख सकत है, तो जल्दी से नोट करें हमार पता। कार्यक्रम किसानवाड़ी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाड़ी, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ। पिन कोड है 226001।
6: यही के साथ है जे पंच हम पंचन का ईमेल करे चाहत है वही लिखे हमार ईमेल farmandhome@gmail.com।
7: तो भैया हमारे पता नोट कर लेन है सब पंच भैया बहनी, और हमका आशा है कि वे हमका ये कार्यक्रम के प्रति अपन सुझाव जरूर दे हैं।
6: बिल्कुल। और अब अपने बैठकी का समय हो चला है तो पंचन से लीन जाए आज्ञा। जय हिंद, जै हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। मिर्जापुर में मकान ढहने से 3 लोगों की मौत। प्रयागराज में रामबाग स्टेशन पर जलभराव के चलते ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग की कार्य योजना की समीक्षा। कहा, रोजगार के साथ वैश्विक अवसरों से भी जोड़ा जाए कौशल विकास। भारत दौरे पर आए जापानी प्रतिनिधि मंडल ने आज आगरा में किया ताजमहल का दीदार। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि दौरे से मिलेगी जापान और उत्तर प्रदेश के संबंधों को नई ऊंचाई। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा बैठक में हुए शामिल। कहा, 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का निर्माण कार्य। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। वहीं मिर्जापुर के मरिहान तहसील क्षेत्र में बारिश के बीच 2 कच्चे मकान ढहने से 3 लोगों की मौत हो

0: गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। चित्रकूट में बारिश के चलते आज 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहे। प्रयागराज में बीते दो दिनों में बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया। वहीं बारिश के चलते प्रयागराज रामबाग स्टेशन पर पानी भर जाने के कारण ट्रेनों के परिचालन पर प्रभाव पड़ा है, जिसके चलते एक पैसेंजर और तीन मेमो गाड़ी को झूसी स्टेशन से चलाया जा रहा है, जबकि प्रयागराज से हावड़ा के बीच चलने वाली विभूति एक्सप्रेस को प्रयागराज रामबाग के प्लेटफॉर्म 5 से चलाया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO सुमित कुमार ने बताया कि पानी निकालने का कार्य जारी है, स्थिति के सामान्य होते ही ट्रेनों का संचालन रामबाग से दोबारा शुरू हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग को तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं।
1: अभी बस कुछ लो लाइन एरियाज बचे हुए हैं, हमारी टीम पूरी लगी हुई है, पंप सारे क्रियाशील हैं और हमें लगता है कि अगले कुछ घंटे में ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी और इसके जब पानी पूरा निकल जाएगा तो
0: मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और बलिया में गंगा नदी, बाराबंकी, अयोध्या और तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रदेश में बाढ़ और जलभराव की स्थिति के बीच सरकार ने प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया है। अयोध्या में 283 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत किट वितरित की गई, साथ ही लोगों को नदियों और जलाशयों के आसपास सावधानी बरतने और प्रशासन की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग की कार्य योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि ITI को अधिक से अधिक उद्योगों से जोड़ा जाए। उन्होंने उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण विकसित करने के साथ ही अप्रेंटिसशिप और ऑन जॉब प्रशिक्षण को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास को रोजगार के साथ वैश्विक अवसरों से भी जोड़ा जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि ITI और उद्योगों के बीच निरंतर संवाद की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर नियमित रोजगार मेलों का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री ने सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्वेशन, इंक्यूबेशन और ट्रेनिंग केंद्रों की प्रगति की समीक्षा करते हुए गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और बरेली केंद्रों का संचालन शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों को आधुनिक तकनीक और उद्योग आधारित प्रशिक्षण के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री ने अनुदेशकों की उपलब्धता को प्रशिक्षण की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए चयन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जीरो पॉवर्टी अभियान से जुड़े परिवारों के बच्चों और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में सुव्यवस्थित संचालन के लिए व्यापक बदलाव की जरूरत बताई है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विद्यालयों से जुड़ी सुस्पष्ट नियमावली तैयार करने, शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और एक सोसाइटी के गठन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए आवेदन पोर्टल तत्काल खोला जाए और 2 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति की धनराशि अंतरित कर दी जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: लखनऊ में आज समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की उपस्थिति में विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में शिक्षकों और अन्य आवश्यक स्टाफ की उपलब्धता, विद्यार्थियों को मिल रही सुविधा और प्रबंधन व्यवस्था की जानकारी ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र वृद्धजनों के आवेदनों का सत्यापन कराते हुए यथाशीघ्र उन्हें पेंशन से लाभान्वित कराया जाए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराने, साथ ही योजना की पहुंच और प्रभावशीलता को और बढ़ाने पर जोर दिया। योजना प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 163 केंद्रों के माध्यम से संचालित है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का

0: ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। भारत दौरे पर आए जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी सहित करीब 240 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज आगरा में ताजमहल का दीदार किया। इस मौके पर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी उपस्थित थे। प्रतिनिधिमंडल ने ताजमहल की स्थापत्य कला और खूबसूरती को करीब से देखा। ताज दीदार के दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने डायना बेंच पर फोटो सेशन भी कराया। श्री जयवीर सिंह ने कहा कि जापान और उत्तर प्रदेश के उद्योग सांस्कृतिक धरोहरों तकनीक सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के नजदीक आकर उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे।
1: आज हमारे जापान से महामहिम राज्यपाल जी, वहाँ के कमांडर साहब, उनका पूरा परिवार आज उत्तर प्रदेश की सार्थक यात्रा पे आया हुआ है। आज ताज के दीदार किए हैं, आपके सामने उन्होंने अभिव्यक्ति देकर के इसकी प्रशंसा करने का काम किया है। और हमारे गवर्नर साहब का मानना है कि उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश की जमीन उपजाऊ है, उर्वरक है और एक मित्रवत संबंधों को लेकर आगे बढ़ेगी।
0: उत्तर प्रदेश दौरे पर आया जापानी प्रतिनिधिमंडल कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रतिनिधिमंडल की भेंटवार्ता प्रस्तावित है। इन मुलाकातों के जरिए दोनों पक्षों के बीच आपसी संबंधों, निवेश और सहयोग की संभावनाओं को लेकर उच्च स्तरीय संवाद होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन मिश्रा आज अयोध्या में समिति की बैठक में शामिल हुए। इससे पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर के अंदर निर्माण कार्य 30 सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन द्वारा संभाला जा रहा ऑडिटोरियम और म्यूजियम का निर्माण कार्य जारी रहेगा और इसके मार्च 2027 तक पूरा होने की योजना है।
2: इमर्सिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 7 नंबर गैलरी में मंदिर का दिव्य दर्शन वहां पर पूर्ण कराया जाएगा। इसी प्रकार गैलरी नंबर 17 है, जो अपने में चुनौती है, इसलिए है कि वहां भगवान राम जी जो नदियों से यात्रा की उन्होंने वन गमन में, तो उन नदियों को और उन नदियों पे उन्होंने किस प्रकार का संदेश दिया, इसको भी प्रयास किया जाएगा।
0: आकाशवाणी लखनऊ का एफएम केंद्र एफएम रेनबो आज अपना 26वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन वर्ष 2000 में एफएम रेनबो का प्रसारण शुरू हुआ था। इस अवसर पर आज शाम को आकाशवाणी केंद्र पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में श्रोताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। इसके साथ ही विभिन्न मनोरंजन प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। मिर्जापुर में मकान ढहने से 3 लोगों की मौत। प्रयागराज में रामबाग स्टेशन पर जलभराव के चलते ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग की कार्य योजना की समीक्षा। कहा रोजगार के साथ वैश्विक अवसरों से भी जोड़ा जाए कौशल विकास। भारत दौरे पर आए जापानी प्रतिनिधि मंडल ने आज आगरा में किया ताजमहल का दीदार। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि दौरे से मिलेगी जापान और उत्तर प्रदेश के संबंधों को नई ऊंचाई। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन मिश्रा समिति की बैठक में हुए शामिल। कहा 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का निर्माण कार्य। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का उभरा केंद्र है। शाम के 7:31 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का पहला गीत आइए आपको सुनवाते हैं आकांक्षा शर्मा और यासिर देसाई की आवाजों में। फिल्म का नाम है शादी में जरूर आना। गीत और संगीत अर्कू का।

गीत और संगीत अर्को कथा शादी में जरूर आना। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे आकांक्षा शर्मा और यासिर देसाई को। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं, जिसे गाया है अरिजीत सिंह और जॉय बरुआ ने। फिल्म का नाम है एजेंट विनोद। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं और संगीत है प्रीतम का।

आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस FM 102.7 पर। कार्यक्रम का अगला गीत केके की आवाज में, फिल्म का नाम है द ट्रेन। सईद कादरी के बोल हैं और संगीत है मिथुन का।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
3: हर लेन देन अब है आसान।

धुरंधर इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अरमान खान और अरिजीत सिंह को। शाश्वत सचदेव के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा था इरशाद कामिल ने। FM 102.7 पर आकाशवाणी मुंबई से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। मेरे ब्रदर की दुल्हन, आइए इस फिल्म में सुनते हैं नेहा भसीन को। इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत है सोहेल सेन का।

मेरे ब्रदर की दुल्हन इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे नेहा भसीन को। इरशाद कामिल के बोल थे और संगीत था सोहेल सेन का। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम सरप्रस अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.7 पर। रात्रि के 8 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं अदनान सामी को।

शब्द रचना गुलजार के थे और आप सुन रहे थे जगजीत सिंह को, और इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

पठान। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे शिल्पा राव, कैरलिसा मोंटेरियो और विशाल शेखर को। इस गीत को लिखा था कुमार ने और संगीत दिया था विशाल शेखर ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं मीत ब्रदर्स और मोनाली ठाकुर की आवाज में। फिल्म का नाम है बागी। इस गीत को लिखा है कुमार ने और संगीत है मीत ब्रदर्स।

जवान इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे शिल्पा राव और अरिजीत सिंह को। इस गीत को लिखा था कुमार ने और संगीत था अनिरुद्ध रविचंद्र का। और इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.7 पर। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सुनते हैं चंदन दास को।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

शब्द रचना इब्राहिम अश्क के थे और आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह को। और इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में यानी कि रात्रि के 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी समाचार और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
2: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। 2 याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि 3री याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा तीन स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं तीन स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित आठ मुद्दों में से पांच मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदंबर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है।
4: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दो तरीके अपनाए गए हैं, मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
5: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: श्री कोइज़ुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है और हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
6: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एंड इसके लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है पानी उसी को फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने का टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं और जो बसेस चलते हैं एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर निकलता है।
0: भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन ICT है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाती संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अलेबाल्डो डे ला एस्प्रियला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने की 35वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुअर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी छेत्री, आकाशवाणी समाचार, कश्यंग।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
8: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 पर बंद हुआ।
0: एमिस्टल फेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। और दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet decides to set up a bench of Jammu and Kashmir High Court at Ladakh, announces Home Minister Amit Shah. Supreme Court forms 5-member panel to investigate violence during student protest across the country. Jharkhand High Court stays state government's decision to cancel 11th to 13th JPSC and food safety officer examinations. Government allows duty-free imports of 10 lakh tons of raw sugar until 31st of October. Centre unveils Delhi Master Plan 2047 to transform national capital into inclusive and world-class city. Bangladesh Nationalist Party leader Mirza Fakhrul Islam Alamgir elected as country's 23rd president. And in hockey, Indian women's team qualifies for second round after a goalless draw with England in Pool D match of World Cup in the Netherlands. And now the news in detail. Union Cabinet has approved the establishment of a bench of the High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh. Union Home Minister Amit Shah today announced this, sharing a social media post. Mr. Shah said that the decision will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required to avail themselves of the legal services they are entitled to. He added that government is fully committed to the all-round development of Ladakh and to ensure constitutional safeguards. The Supreme Court has constituted a 5-member high-powered inquiry committee headed by former top court judge Justice R. Subhash Reddy to independently examine allegations of violence during the student demonstrations held

0: नक्श लियालपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था जयदेव वर्मा ने। तुम्हारे लिए इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को।
1: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
3: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
4: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
5: हेलो,
3: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
4: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
3: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
4: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
3: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: साथ साथ कार्यक्रम का अगला गीत इस फिल्म से चित्रा सिंह की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत है कुलदीप सिंह का।

चित्तचोर इस फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त होता है। FM 102.7 पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

102.7 मिलोसाथ पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 9:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म याराना से किशोर कुमार की आवाज में। अनजान के बोल हैं और संगीत है राजेश रोशन का।

102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 9:45 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। शब्द रचना जमीर काजमी के है और आइए सुनते हैं पंकज उधास को।

बोल जमीर काजमी के थे और आप सुन रहे थे पंकज उदास को। आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। अब आइए सुनते हैं अभिजीत को, शब्द रचना नुसरत बद्र के हैं।

FM 102.7 पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण कार्यक्रम है सुगम संगीत। अब आइए सुनते हैं, शब्द रचना गुलजार के हैं और सुनते हैं साधना सरगम को।

शब्द रचना गुलजार के थे और आप सुन रहे थे साधना सरगम को, और इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 10 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रसधारा। मृत्यु दंड, आइए इस फिल्म में सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण को। शब्द रचना जावेद अख्तर के हैं और संगीत है आनंद मिलिंद का।

आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे कार्यक्रम रसधारा। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनाते फिल्म सर से अलका याग्निक की आवाज में। कपिल शिवाई के बोल हैं और संगीत है अनु मलिक का।

फिल्म सर के इस गीत को अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अंदाज से अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज में। बोल हैं समीर के और संगीत यह नदीम श्रवण ने।

अंदाज़ इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो को। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीत था नदीम श्रवण का।

मुकदमा इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे विनोद राठौर और साधना सरगम को। इस गीत को लिखा था माया गोविंद ने और संगीत था बप्पी लहरी का। इसी के साथ कार्यक्रम रसधारा अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी आज की कलाकार हैं विदुषी गिरजा देवी। आइए सुनते हैं इनके स्वर में ठुमरी।

आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार हैं विदुषी गिरजा देवी। आइए सुनते हैं इनके स्वर में भजन।

कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत विदुषी गिरजा देवी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे भजन, और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में यानी कि रात्रि के 11 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य स्थानों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नवीं कक्षा के छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ 3री उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में ये निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। एम्स्टर्डम में एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड के मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। ग्रुप डी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, जबकि चीन और इंग्लैंड के साथ 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।